0: मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज और एफएम 102 और एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 9वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 30 जून 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है और श्रोताओं अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।

0: हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम अर्चना।

सुबह की पहली किरण जब धरती को स्पर्श करती है तो मन भी एक नई ऊर्जा से भर उठता है। आइए इस पावन बेला में भक्ति के सुरों के साथ अपने दिन की शुरुआत प्रभु के स्मरण से करें।

जब सुबह सुबह का वातावरण भजन से गूंजता है तो मन की थकान अपने आप दूर होने लगती है। आइए अगले भजन के साथ अपने भीतर श्रद्धा और सकारात्मकता का दीपक जलाएं।

श्रोताओं, इस भजन के साथ कार्यक्रम अर्चना अब यहीं पर संपन्न करते हैं। आज इस कार्यक्रम में आपने स्वर सुने हरिओम शरण ए हरिहरन और रविंद्र जैन और साथियों के। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। लीजिए आप सुनिए श्री रामचरितमानस की संगीतमय प्रसारण।

एक दिन अवध नरेश महाराज दशरथ दर्पण में अपनी छवि देखते हुए राजमुकुट को व्यवस्थित कर रहे थे कि कनपटी पर के बाल सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा ये संदेश दे रहा हो कि हे राजन, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद देकर अपने जन्म और जीवन को सार्थक करने का समय आ गया है। महाराज ने अपनी अभिलाषा कुलगुरु वशिष्ठ मुनि को जा सुनाई। उनकी मंगल कामना तथा आनंददायी वाणी सुनकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र ही इस मंगल कार्य के लिए आवश्यक प्रबंध कीजिए। श्री राम के अभिषेक के लिए शुभ दिन देखने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। ये संवाद सुनकर मंत्री सुमंत्र तथा राजप्रसाद के सेवकगण ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे को जल मिल गया हो। महाराज का आदेश पाकर मुनिवर वशिष्ठ द्वारा बताई गई सामग्री का प्रबंध किया गया। सभी तीर्थों की जल, औषधि, मूल, फल फूल, चंवर, मृगछाला, नाना प्रकार के वस्त्र, मणियां तथा अन्य वस्तुओं की व्यवस्था की जाने लगी।

अभी आप आनंद ले रहे थे श्री रामचरितमानस गान का। मुख्य स्वर था रविन्द्र साठे का और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का। ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। लीजिए अब सुनिए चिंतन में घनश्याम वर्मा से लघु वार्ता। विषय है

0: लक्ष्य।
1: नदी के प्रवाह की भांति समय आगे सरकता ही जाता है, हमारा जीवन भी समय की तेज रफ्तार के साथ बहता जा रहा है। सुबह से शाम ऐसे ही ढल जाती है और जीवन बीत जाता है। आज तक हमने सोचा ही नहीं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। थोड़ा विराम लेकर शांत चित्त होकर गहराई से चिंतन करें कि हमारी जीवन दृष्टि क्या है और जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, समाधान निकल आएगा। व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण सूत्र है जीवन उद्देश्यपूर्ण बने। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य एवं लक्ष्य बार बार बदलता रहता है, वे जीवन निर्माण कर ही नहीं सकते। जीवन का मकसद एक ही होना चाहिए और वो भी काफी ऊंचा और महान होना चाहिए। उपनिषद के एक छोटे सूत्र में कहा गया है, पुरुष तुम ऊपर उठो,

0: कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, थोड़ा विराम लेकर शांत चित्त होकर गहराई से चिंतन करें कि हमारी जीवन दृष्टि क्या है और जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, समाधान निकल आएगा। व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण सूत्र है जीवन उद्देश्य पूर्ण बने। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य एवं लक्ष्य बार बार बदलता रहता है, वे जीवन निर्माण कर ही नहीं सकते। जीवन का मकसद एक ही होना चाहिए और वो भी काफी ऊंचा और महान होना चाहिए। उपनिषद के एक छोटे सूत्र में कहा गया है, पुरुष तुम ऊपर उठो, कभी नीचे मत गिरो। लक्ष्य ऊंचा होगा तो गति भी ऊंचाई की ओर होगी। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमें हमारी परिणाम धारा को, विचारों के प्रवाह को हमेशा अग्नि शिखा की भांति ऊर्ध्वगामी रखना चाहिए। अग्नि को कभी भी कहीं से भी जलाओ, उसकी शिखा यानी लौ हमेशा ऊपर की ओर ही उठेगी। पानी को कहीं भी गिराओ, उसका स्वभाव सदैव नीचे की ओर ही बहना है। अतः निम्नता की ओर प्रवाहित अपने विचारों की धारा को भी ऊंचाई की ओर मोड़ने का प्रयास करें। जी हाँ, जब भी आप ऐसा करके देखेंगे तो आपको विशुद्ध आनंद और सात्विक सुख की अनुभूति होगी। यह जिंदगी केवल सुख सुविधाओं के पीछे पागल बनकर भागने या खराब करने के लिए नहीं है। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, इंटरनेट आदि आपकी प्रगति में सहायक व साधक हो सकते हैं, साध्य नहीं। इन्हें साध्य मानने की भूल कभी मत करो। जो आज का इंसान कर रहा है, जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। अपनी जिंदगी के उस दूरगामी और ऊंचे लक्ष्य को हमेशा याद रखो और उसी पर अपनी दृष्टि टिकाए रखो। यदि आपने इन छोटी मोटी सुविधाओं को ही जीवन का सार मान लिया तो अपने जीवन विपुल वैभव को तुम कौड़ियों में गंवा बैठोगे। देश की युवा शक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन के विपुल वैभव और अकूत खजाने को पहचाने जो उसे विरासत में मिला है। मनुष्य शरीर के साथ मिली दैवीय शक्तियों का वास्तविक और सही उपयोग तभी होगा जब आप ऐसा ऊंचा लक्ष्य बनाएंगे जिसे पाकर इस मानव शरीर का मिलना सार्थक हो जाएगा। लक्ष्य महान, सिद्धि महान। यदि सारे आधुनिक संसाधन आपको मिल भी गए फिर भी जिंदगी में कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई तो इन संसाधनों के जुटाने के लिए आपने जो दौड़ धूप की उसका क्या अर्थ सिद्ध हुआ? जब आपने जिंदगी का लक्ष्य ऊंचा बनाया ही नहीं तो कहीं पहुंचने का प्रश्न ही कहां होगा। लक्ष्य जितना महान होगा तो साधना भी महान होगी और सिद्धि भी महान ही होगी। खेल में जैसे प्रथम पुरस्कार एक ही होता है, वैसे ही हमारे हृदय सिंहासन पर एक ही लक्ष्य स्थिर होना चाहिए। पहले जीवन का लक्ष्य बनाओ कि हमें अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाना है। जीवन का लक्ष्य हमेशा उम्दा और श्रेष्ठ रखो। हो सकता है शुरुआत में आप अकेले ही हो, किसी अन्य का साथ न भी हो, पर इससे हताश होकर कदम पीछे हटाने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखो, साहस का दीप प्रज्वलित करो। सिद्धि कायरों को नहीं मिलती, वह तो हमेशा वीरों को माला पहनाती है। गंगा की धारा समुद्र में मिल जाने के बाद भी दूर तक सागर के पानी को मीठा ही बनाए रखती है। यदि आप में शक्ति है, साहस है, धैर्य है और शौर्य है तो निकल पड़ो अपनी सिद्धि यात्रा हेतु। साथी एक नहीं अनेक मिल जाएंगे। वैरागी को वैरागी मिल जाएंगे, वैज्ञानिक को वैज्ञानिक और दार्शनिक को दार्शनिक मिल ही जाएंगे। जहां तमन्ना होती है वहां शिकायत नहीं होती। पूछ पूछ कर चलोगे तो कोई साथ नहीं देगा। हिम्मत करके निकल पड़ो। लोग पीछे पीछे चल पड़ेंगे, दुनिया आपके लिए उपहार लिए खड़ी मिलेगी। किसी शायर ने कहा है, आईना देखा तो क्या कमाल किया, बनो खुद आईना कि दुनिया चेहरा देखे। जी हाँ, आप अपना लक्ष्य ऊंचा और महान रखें, विचार और चिंतन सकारात्मक एवं ऊंचा ही रखें, इच्छाएं भी ऊंची ही रखें और उन्हीं के अनुरूप अपने प्रयास को गतिमान बनाए रखें तो निश्चित मानिए आपको लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य ही होगी।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन में लक्ष्य विषय पर विचार। आलेख था घनश्याम वर्मा का और वाचन स्वर राजेश महावर का।

0: श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। आपने ट्यून किया है एफ एम 102 और एफ एम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर के साथ साथ आप हमें दूर दराज सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप के जरिए। आइए कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आपको देते हैं संक्षिप्त जानकारी हमारे आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। इस सभा में सुबह 8:15 पर सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। आज का विषय रहेगा बच्चों और किशोरों में बढ़ते मोटापे की समस्या और डॉक्टर अविनाश बंसल हमारे स्टूडियो में इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहेंगे। सुबह 7:00 कार्यक्रम नमस्कार कोटा लेकर हाजिर होंगे और फिल्म संगीत आप सुनेंगे 7:30 से। सुबह 8:00 समाचार प्रभात आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से और 9:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से आप सुनेंगे और 9:10 पर पुनः हाजिर होंगे लेकर आपके लिए फिल्म संगीत। और बहनों का कार्यक्रम घर आंगन प्रसारित किया जाएगा 9:30 से। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, ये दो विषय रहेंगे चर्चा के। और बहनों के लिए होगी एक लघु नाटिका परिवार की शान बालिका, ये रहेगी लघु नाटिका का शीर्षक। जानकारी का विषय रहेगा मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। उमंग NCERT द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम दोपहर 12:00 आप सुन सकेंगे। उसके बाद श्रोता लगातार जुड़े रहेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों के साथ। हमारे केंद्र से शाम 5:00 युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का संवाद रहेगा ओवर थिंकिंग से बचें। साथ ही मेरी प्रेरणा सेगमेंट में भारत रत्न डॉ CNR राव के बारे में जानकारी दी जाएगी। विज्ञान धारा क्या होते हैं क्षुद्र ग्रह, इस विषय पर जानकारी होगी। नॉलेज कॉर्नर में बात होगी दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि पर और रोजगार सूचनाएं भी आपको दी जाएंगी। और श्रोता सुन सकेंगे शाम 7:00 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित ICC महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य द किया ओवल क्रिकेट स्टेडियम लंदन में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की कमेंट्री का सीधा प्रसारण। और सभा के अंत में रात 11:00 हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। तो श्रोताओं ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने ह्यः 26,000 द्वितीय रक्षा अलंकरण समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्य पुरस्काराः रक्षा सैन्यबलानां केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षकबलानां केन्द्र शासित आरक्षकाणां कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्रबलानां केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षिबलानां अन्य सुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणां असाधारण शौर्य कार्यान् उद्दिश्य प्रदीयन्ते। राष्ट्रपति

उम्मीदों का संदेश दिया, हर नई सुबह ने जीवन को नया परिवेश दिया। सुबह की हवा ने कानों में बस इतना कहा, चलो फिर से शुरू करें, अभी सब कुछ बाकी है यहाँ। जी हाँ, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है नमस्कार कोटा। और आज इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी साथी सीमा। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

साथियों, सुबह केवल समय का बदलना नहीं होता, ये सोच, ऊर्जा और शुरुआत का नया अध्याय होती है। जब पहली किरण धरती को छूती है तो मानो प्रकृति ये कहती है कि हर दिन अपने आप एक नया अवसर लेकर आता है। तो आज शिकायतों से नहीं, संभावनाओं से शुरुआत कीजिए, अपने विचारों को उजाला दीजिए और अपने प्रयासों को दिशा दीजिए, अपने दिन को अर्थ दीजिए, क्योंकि जो लोग सुबह को उद्देश्य के साथ अपनाते हैं वही दिन को सफलता में बदलते हैं। जी हाँ, और इसी बात के साथ आज का विचार भी आपसे साझा करते हैं। आज का विचार है कि क्रोध यानी गुस्सा तेज हवा की तरह है, कुछ देर बाद ये ठंडा भी हो जाता है, लेकिन जब तक कई शाखाएं कई पत्ते टूट जाते हैं जिन्हें दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। गुस्सा अकेला नहीं आता, लेकिन जाते वक्त वो अपने साथ हमारे अच्छे रिश्ते और हमारी थोड़ी सी बुद्धि भी ले जाता है। तो क्रोध गुस्से के समय किया गया फैसला और खुशी के समय दिया गया वचन दोनों ही बाद में पछतावा का कारण बन सकते हैं। तो ना तो गुस्सा करें और ना ही ज्यादा उतावले पने में या ज्यादा खुशी में कोई ऐसा वचन दे दें जो कि आप आगे चल के निभा नहीं पाए। तो बस इन दोनों बातों पर संयम रखें और सुनते रहे आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। और अब कार्यक्रम नमस्कार कोटा में आपके लिए खूबसूरत गीत।

तो साथियों, इस खूबसूरत गीत के बाद अब प्रोग्राम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इतिहास के पन्नों की। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में जीवन का सार मिलता है और जो उनसे सीख ले उसे जीने का आधार मिलता है। इतिहास और हमारे जीने की कला, इस विषय पर थोड़ी सी बात करते हैं श्रोताओं। कहा जाता है कि इतिहास सिर्फ बीते हुए समय का लेखा जोखा नहीं होता बल्कि आने वाले समय का मार्गदर्शन भी होता है। इसलिए हमें ये नहीं सिखाता कि कौन जीता और कौन हारा, इतिहास हमें ये नहीं सिखाता कि कौन जीता और कौन हारा, बल्कि ये सिखाता है कि किसने परिस्थितियों से क्या सीखा और जीवन को किस दृष्टि से जिया। हम जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो पाते हैं कि हर युग में चुनौतियां थी, संघर्ष थे और परिवर्तन थे, जो कि आज भी हैं। लेकिन जिन्होंने धैर्य, विवेक और साहस को अपनाया, वही समय की कसौटी पर खरे उतरे। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जीने की कला केवल सुख में मुस्कुराना नहीं बल्कि कठिन समय में स्वयं को संभालना भी है। हमारा इतिहास हमें बताता है कि परिवर्तन जीवन का नियम है और परिवर्तन बदलाव जरूर लाता है। इसलिए हर परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जैसे इतिहास अपने अनुभवों को संजोकर आगे बढ़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बीती गलतियों को बोझ नहीं सीख बनाएं और अच्छे पलों को प्रेरणा। तो एक बार फिर से उन्हीं पंक्तियों को दोहराती हूँ जो इस चर्चा की शुरुआत में हमने कही थी। इतिहास के पन्नों में जीवन का सार मिलता है, जो उनसे सीख ले उसे जीने का आधार मिलता है। तो आइए इतिहास को केवल पढ़े नहीं, उसे समझें और उसके अनुभवों को अपने जीवन को जीने की कला में उतारें।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: जी हाँ श्रोताओं, ये है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल और आप इस वक्त सुन रहे हैं

है कार्यक्रम नमस्कार कोटा। बात करते हैं मौसम की और मौसम के तहत तापमान। अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ बिजली बंद से संबंधित जानकारी आपको देना चाहेंगे। आज कई स्थानों पर बिजली बंद रहेगी, कहां कहां और कब कब रहेगी आपको बताते हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक नया खेड़ा गांव, नया खेड़ा बाड़ी और मीलखांत धाम, विमल गंगा फॉर्म हाउस और आसपास का क्षेत्र, यहां बिजली बंद रहेगी सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। और शाम 4 बजे से 6 बजे तक चंद्रा विला, चंद्रा होम्स, जेबीआर एनक्लेव, सोगरिया रोड और सोगरिया रेलवे फाटक के आसपास के क्षेत्र में बिजली बंद रहेगी। समय एक बार फिर से आपको बताते हैं, शाम 4 बजे से 6 बजे तक।

0: श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार कोटा एफएम 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल मोबाइल ऐप के साथ साथ आप हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रोग्राम नमस्कार कोटा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं व्यक्ति विशेष की, विशेष व्यक्तित्व की। स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी एक भारतीय राजनीतिक नेता थे। उन्हें ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। नौरोजी एक प्रख्यात भारतीय विद्वान, व्यवसायी और राजनीतिज्ञ थे। इनके आदर्शों और विचारों से प्रभावित होकर देशवासियों ने उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा भी दी। दादा भाई का जन्म 4 सितंबर सन 1825 को मुंबई में हुआ था और आज उनकी पुण्यतिथि है। जी हाँ, 30 जून सन 1917 को देश ने एक बहुगुणी नेता को खो दिया। इन्होंने अपने समय में वर्ष 1861 में लंदन जोरोस्ट्रियन एसोसिएशन की स्थापना की और वर्ष 1865 में उन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, साथ ही साथ उसके अध्यक्ष बने और सन 1907 तक इस पद पर उन्होंने कार्य किया। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों का विरोध किया और बताया कि किस प्रकार भारत की संपत्ति लगातार हमारे देश से बाहर जा रही है। इस विचार को उन्होंने ड्रेन थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किया, यानी धन निकासी सिद्धांत के रूप में। वे भारतीयों के अधिकारों और स्वशासन के समर्थक थे। वर्ष 1886 और 1893 और 1906 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। वे ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीयों में शामिल थे। उनका निधन 30 जून यानी आज ही के दिन सन 1917 को हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक जागरूकता में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। दादा भाई नौरोजी को हमारा शत-शत नमन, हमारा वंदन।
1: आवाजें जो बरसों से हमारे जीवन के हर रंग में रच बस गई है।

0: ले सनम।
1: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

और श्रोताओं, अब बात करते हैं एक और विषय की, हमारी संसदीय प्रणाली की। जी हाँ, भारत की संसदीय प्रणाली वो शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। श्रोताओं, हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। देश का संवैधानिक प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होता है, जबकि सरकार का वास्तविक संचालन भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है। संसदीय प्रणाली जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है, सरकार को जवाबदेह बनाती है और लोकतंत्र को मजबूत करती है। भारत की संसदीय प्रणाली का आधार भारत का संविधान लागू होना है, जो 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। और संसद का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्था का उद्देश्य जनता की भागीदारी, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना है। भारत की संसदीय प्रणाली देश की विविधता और प्रतिनिधित्व देने और लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लेने का महत्वपूर्ण माध्यम मानी जाती है और हर साल 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 2018 में की गई थी।

और श्रोताओं, अब कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है, तो इस कार्यक्रम में आज एक और जानकारी देने का विषय है और वो है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस हर वर्ष 30 जून यानी आज के दिन मनाया जाता है। दिवस का उद्देश्य लोगों को क्षुद्र ग्रहों के बारे में जागरूक करना और पृथ्वी पर उनके संभावित प्रभावों की जानकारी देना है। ये दिन वर्ष 1908 में तुंगुस्का घटना की स्मृति में मनाया जाता है, जब एक विशाल विस्फोट ने साइबेरिया के बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2016 में इस दिवस को आधिकारिक मान्यता दी ताकि अंतरिक्ष से जुड़े खतरों के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह दिवस वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष सुरक्षा और भविष्य में संभावित क्षुद्र ग्रह टकरावों से बचाव के प्रयासों को भी प्रोत्साहित करता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार कोटा आप सुन रहे हैं और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। प्रोग्राम बस खत्म करते हैं, उससे पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि गर्मियों की तेज धूप और लू से पौधों को नुकसान होता है, इनसे सुरक्षा देने के लिए कुछ पौधों को ग्रीन नेट या छाया में रखा जा सकता है और बड़े पौधों को बगीचे में जमीन पर लगे पौधों को या भारी गमलों को ढकना इस ग्रीन नेट से आसान होता है, तो ये जरूर करें। और क्योंकि अभी गर्मी बहुत तेज हो रही है, मानसून का इंतजार हम सब कर रहे हैं, तो बस यही प्रार्थना है ईश्वर से कि जल्दी से मानसून आए और इस धरती पर वर्षा हो तो गर्मी से भी राहत मिले और हमारे पर्यावरण में भी संतुलन बना रहे। इसके लिए हम सभी को प्रयास करने होंगे, पौधे लगाएं, लगे हुए पौधों को बचाएं, उन्हें पानी दें और साथ साथ अपना भी ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और सुनते रहें आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। और आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संयोजन किया तेजराम मीणा जी ने और प्रस्तुति राजेश महावर जी की। अब अनुमति दीजिए अपनी साथी सीमा को। नमस्कार कोटा।

अभी आप सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार कोटा। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। और आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर भी आप ये प्रसारण सुन रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हो चुके हैं। समय है फिल्म संगीत का। कुछ सुहाने गाने लेकर हाजिर होंगे कुछ ही पलों में।

तो श्रोताओं, फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और लीजिए, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गीत से, जिसे हमने लिया है फिल्म सिंदूर से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की, गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: सर 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर और कुछ सुहाने तराने हम आपको सुनवा रहे हैं। आइए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर हैं। आनंद बख्शी के इस गीत को धुन दी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम सरगम।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गाने सुहाने, आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। आज सुबह 8:15 पर सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेगा बच्चों और किशोरों में बढ़ती मोटापे की समस्या, और विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अविनाश बंसल हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। यदि आप इस विषय में कोई जानकारी चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो प्रसारण के दौरान हमारे स्टूडियो के इन नंबरों पर फोन करें और सीधे डॉक्टर अविनाश बंसल से बात कर सकते हैं। कोटा का एसटीडी कोड लगाएं 0744 और उसके बाद हमारे स्टूडियो का नंबर 2941142 0744 के बाद हमारे स्टूडियो का नंबर लगाएं 2941142। तो सुनना ना भूलें आज प्रातः 8:15 से 9 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। और अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम वो 7 दिन, आवाज लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, आनंद बख्शी के गीत को संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, आपके रेडियो सेट पर ये धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास के युगल स्वर आनंद बख्शी के बोल हैं। फिल्म का नाम हीरो।

और कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए फिल्म प्रेम रोग से सुरेश वाडेकर का गाया हुआ ये गीत, जिसे लिखा संतोष आनंद ने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: श्रोताओं, फिल्म प्रेम रोग केस गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर पर। सुबह के 8 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात का आज का अंक हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है।

0: इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक के मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रूपए खर्च करेगी।
4: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता

0: को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए

0: मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। श्रोता, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट एवं श्री जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल झालावाड़ रोड कोटा।
4: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
5: आपसे है हमारा दिल का रिश्ता, क्योंकि हमारे लिए है हर जिंदगी अनमोल। हमारे यहाँ 24 घंटे हृदय रोग विशेषज्ञों द्वारा इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं। हाथ के नस द्वारा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश जिंदल की अगुवाई में सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी टीम और गंभीर जानलेवा बीमारियों के लिए समर्पित विशेषज्ञ डॉक्टर्स, सघन नवजात गहन चिकित्सा इकाई, लेप्रोस्कोपी दूरबीन पद्धति से पथरी रोग, हर्निया, पेट रोग, महिला रोग और मोटापे का संपूर्ण इलाज, बच्चेदानी का ऑपरेशन, निसंतानता की संपूर्ण जांच एवं इलाज। आपसे है हमारा दिल का रिश्ता, क्योंकि हमारे लिए है हर जिंदगी अनमोल।
4: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
2: श्रोता, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। प्रोग्राम उत्तम स्वास्थ्य शुरू हो गया है। सजीव फोन इन प्रोग्राम है ये, और श्रोताओं हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो तेजी से

0: चिंता का कारण बना हुआ है। आज का विषय है बच्चों और किशोरों में बढ़ती हुई मोटापे की समस्या, और इस विषय पर हमें विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं कोटा के जाने माने अनुभवी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अविनाश बंसल जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: वंदे मातरम, नमस्कार
0: जी डॉक्टर साहब। और आज के समय में श्रोताओं, बदलती जीवन शैली, खान पान की आदतें, स्क्रीन टाइम और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण ये समस्या लगातार बढ़ रही है। मोटापा केवल वजन बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भविष्य में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का भी कारण बन सकता है। तो इन्हीं तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे, और यदि आप इस विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं, डॉक्टर साहब से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो इस प्रसारण के दौरान हमारे इन नंबरों पर फोन करें और डॉक्टर साहब से सीधे जुड़ें। कोटा का एसटीडी कोड लगाएं 0744 और उसके बाद हमारे स्टूडियो का नंबर 2941142 0744-294-1142, ये है हमारे स्टूडियो का नंबर। और श्रोताओं, आप भली बात ही जानते हैं, इस नंबर से आप सीधे डॉक्टर साहब से बात कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं, और अब बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मोटापा, इसकी परिभाषा दें आप।
1: देखिए, मोटापा आज विश्व भर में एक चिंताजनक रोग के बन गया है
0: जी।
1: पहले जमाने में, विशेषकर हमारे देश में, अभी हम तीन लेवल पर जो न्यूट्रिशन है उस पे जूझ रहे हैं। एक सूखा रोग भी अभी भी हमारे देश में होता है
0: जी, जी।
1: साथ ही साथ मोटापा, और तीसरा विटामिन्स और मिनरल्स की कमी, जिसे हम हिडन हंगर भी कहते हैं, छुपा हुआ भूख का रोग।
0: अच्छा अच्छा जी।
1: तो मोटापा केवल आपका वजन ही नहीं, इसमें आपके शरीर में जो चर्बी की मात्रा है वो बढ़ती है
0: जी।
1: तो फैट परसेंटेज बढ़ती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है परिभाषा का।
0: तो जी
1: हाँ,
0: तो डॉक्टर साहब, अब बढ़ते हैं अपना जो आज का मेन मसला है, बच्चों और किशोरों में बढ़ती हुई जो ये मोटापे की समस्या है उसकी ओर बढ़ते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों और किशोरों में मोटापे को क्या कहेंगे, कैसे कहा जाएगा, कि मतलब माता पिता किन चीजों को देखें, किन लक्षणों को समझे कि हमारे बच्चे का वजन बढ़ रहा है या मोटापा बढ़ रहा है।
1: देखिए, ऐसा है कि अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में, विश्व भर में रादर, जो मोटापे की बढ़ने की गति है, लड़कियों में करीब करीब 125% अधिक हो रही है।
0: 125
1: जो नॉर्मल थी
0: जी,
1: पिछले
0: जी, जी,
1: 10
0: जी,
1: साल पहले, और लड़कों में ये गति करीब करीब 280 के ऊपर है। तो गति बहुत तेजी से बढ़ रही
0: जी,
1: है
0: जी, जी, जी, जी, जी।
1: और इसका जो हमारे पास मापदंड है वो वजन, बच्चे का लंबाई, और उससे भी आजकल जिस पे ज्यादा फोकस हो रहा है वो जो उसकी कहते हैं हम कमर की नाप है जो
0: जी जी जी,
1: क्योंकि जो ये कमर वाला मोटापा है यही अनेक रोगों का को बढ़ाता है।
0: अच्छा,
1: तो उसको नापते हैं। तो माता पिता से यही निवेदन है कि जब भी डॉक्टर से मिलने जाएं उस बच्चे का वजन, लंबाई और ये जो कमर का नाप है ये जरूर लें, और डॉक्टर आपको फिर इसके बारे में बता पाएंगे
0: जी जी। अब डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं कारणों की ओर। तो बच्चों में मोटापा बढ़ने के मुख्य कारण कौन कौन से हैं?
1: देखिए, क्या है कि मोटापा अनुवांशिक भी हो सकता है, परिवारों में चलता है, कुछ हार्मोनल बीमारियां होती हैं
0: जी,
1: जैसे थायराइड की बीमारी है, कुशिंग, और कई बीमारियां होती हैं जिसमें मोटापा बढ़ा हुआ होता है। पर हमारे लिए जो मुख्य मोटापा है वो जो आजकल का भोजन, जीवन शैली और इससे उत्पन्न हो रहा है
0: जी,
1: वो मोटापा
0: जी, जी।
1: इस मोटापे में नॉर्मली क्या होता है कि जो दूसरे मोटापे हैं उनमें आपकी लंबाई भी कम होती है और मानसिक समस्या और कई चीजें हो सकती है, जबकि इस मोटापे में नॉर्मली लंबाई ठीक होती है।
0: हाँ,
1: पर वजन लंबाई के हिसाब से भी और उम्र के हिसाब से, दोनों के हिसाब से ज्यादा होता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा। आपने जैसा कहा कि जो गतिविधियां हैं और जीवन शैली जो है आज की बहुत बदल गई है, मतलब दिन में सोना

0: रात में जागना ये मैंडेटरी हो गया एक तरह से बच्चों के लिए, पढ़ाई के घंटे बढ़ा लिए उन्होंने, 18-18, 20-20 घंटे लगातार बैठे रहते हैं, क्योंकि बैठना भी ज़रूरी है, पढ़ाई करनी है तो बैठना भी है। दूसरा, अगर हम वयस्कों की ओर चलें तो कामकाजी जो लोग हैं, नाइट शिफ्ट पहले नहीं हुआ करती थी, आजकल वो भी होती है, तो ये भी एक कारण है। और जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई है, दिन को दिन नहीं समझ रहे हैं, रात को रात नहीं समझ रहे हैं, खान पान पर भी जाहिर सी बात है कि बहुत बदलाव आ गया है। जंक फूड, फास्ट फूड और पैकेट वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, इनसे क्या नुकसान होता है बच्चों को और किशोरों को, ये बताएं डॉक्टर साहब।
1: देखिए, ये जो जंक फूड वाला जो कंसेप्ट है, हमारी भारतीय शिशु अकादमी ने इसमें बहुत काम किया है
0: जी।
1: और उनका मानना ये है कि जंक फूड में क्या है कि केवल कैलोरीज ही कैलोरीज हैं, और उसमें जो दूसरे न्यूट्रिशन हैं, प्रोटीन है, आपके विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये नहीं है, और इसमें काफी प्रिजर्वेटिव्स मिलते हैं और ये सब मिलते हैं, तो ये हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। इसमें हम 3-4 तरह के चीजों की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स की।
0: अच्छा।
1: जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड क्या है, जैसे जो पैकेट में खाना पैकेट्स मिलते हैं हमें, बेकरी के आइटम्स हैं जिनमें काफी प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, शुगर बहुत ज्यादा होती है। सबसे सिंपल सी बात है, हम लोग ध्यान नहीं करते हैं, बिस्किट बहुत खाते हैं जी, बच्चा एक पूरा पैकेट खा गया। तो ये बिस्किट भी एक इम्पोर्टेंट कारण है कि आप भाई बच्चा तो कुछ खाता नहीं, साहब बिस्किट ही खाता है। और वो बिस्किट में क्या है, खूब सारी शुगर है, खूब सारा तेल है, और जो प्रोटीन्स हैं और विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, बिल्कुल नहीं है। तो ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स हैं। फिर दूसरा, आजकल एक ये जो ड्रिंक्स का चक्कर चल गया कि स्वीटेंड ड्रिंक्स, कोक है, पेप्सी है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इनमें खूब सारी शुगर ही शुगर होती है, कोई मतलब कैलोरी सारी शुगर से ही आ रही है, ना उसमें कोई विटामिन है, ना कोई मिनरल्स है। तो ये, और वो पीते भी ऐसे हैं, आजकल कैंस आ गए,
0: बिल्कुल आप बिल्कुल
1: पिक्चर में जाओगे, बड़ी बॉटल, बड़ा पेप्सी, और वो पब्लिसाइज भी ऐसे करते हैं, बहुत बड़ा, पैसे कम, है ना, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट सुंदर एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो ये दो मुख्य चीजें हैं। और जो घर पे बना हुआ भोजन है, उसका धीरे धीरे विलोप होता जा रहा है, और ये जो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, स्विगी, और आप रात को किसी भी समय भोजन मंगा लीजिए कुछ भी।
0: जी जी, डॉक्टर साहब एक कॉलर जुड़ना चाह रहे हैं,
1: बहुत अच्छी बात है।
0: हेलो,
2: हाँ जी डॉक्टर साहब,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
0: स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं?
2: राम कल्याण जांगीड़ बोल रहा हूँ, चौकी बोरदा से।
0: अच्छा अच्छा, बोले क्या पूछना चाहते हैं, पूछे।
2: हमारे एक बच्चा है, तो पेट की मोटाई ज्यादा हो रही है, कुल्ले रात पे थोड़े जैसे कमजोर है।
1: देखिए, तो एक स्पेसिफिक समस्या हो गई भाजी, तो सबसे जरूरी यही है कि हम उसका वजन लंबाई दोनों नापेंगे, और ये जो पेट बढ़ रहा है और हाथ पैर कमजोर हैं, तो ये कुपोषण का भी चिन्ह हो सकता है। कुपोषण में हाथ
2: पैर पतले पतले हैं, वैसे पेट का मोटाई ज्यादा,
1: हाँ, तो पेट की मोटाई भी बढ़ जाती है इनमें कुपोषण में, जहाँ हमारे शरीर में पूरे तत्व नहीं मिल रहा है, उसे भोजन पूरी अच्छी तरह नहीं मिल रहा है, या पेट में कीड़े हैं या कुछ है, उसके कारण ऐसी समस्या देख सकते हैं। फिर भी डॉक्टर की राय,
2: आपका भी आपने बताया, पहले अगर पता होता तो मैं नाम भी बता देता उसका, पर फिर अगले प्रोग्राम में बता दूंगा।
1: जी धन्यवाद, नमस्कार।
0: जी जी जी, कार्यक्रम सुनने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राम कल्याण जी। और आपसे अनुरोध है कि ये कार्यक्रम अंत तक सुने, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत अनुभवी डॉक्टर साहब हैं, कोटा के जाने माने डॉक्टर साहब हैं, और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई।
2: सर, ये प्रोग्राम साप्ताहिक है या कुछ दिनों बाद जैसे होता है?
0: नहीं नहीं, हर सप्ताह आता है, हर मंगलवार को आता है उत्तम स्वास्थ्य,
2: मंगलवार को आता है। मंगलवार को मैं बताऊंगा सर आप।
0: जी जी जी, मंगलवार को भी आता है, बुधवार को भी आता है, और गुरुवार को भी आता है। तो आप तीनों दिन 8:15 हमारे प्रोग्राम सुने, और विषय से जुड़े अगर आप सवाल चाहते हैं तो इन नंबरों पर फोन करके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं।
2: बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ।
0: जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पैकेट वाले फूड की, और कोल्ड ड्रिंक्स का जो भी ट्रेंड चला हुआ है। और बिस्किट की आपने बात करी तो मेरे जहन में भी एक बात आई कि कई मम्मियों को देखा है मैंने कि अगर बच्चे ने आधा पैकेट बिस्किट

0: खा लिया तो वो 3-4 घंटे के लिए निश्चिंत हो जाते हैं कि बच्चे का पेट भर गया है, जबकि ये नहीं। अभी आपने बताई नई बात कि वो बहुत नुकसान दे रहा है बच्चों को। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे श्रोताओं को एक बार फिर से विषय बता देते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य। आज चर्चा कर रहे हैं बच्चों और किशोरों में बढ़ती हुई मोटापे की समस्या पर, और डॉक्टर अविनाश बंसल, आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, कोटा के बहुत पुराने और अनुभवी डॉक्टर हैं। यदि आप इस विषय पर कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के नंबरों पर फ़ोन करें और सीधे डॉक्टर साहब से जुड़ें। 2941142 हमारे स्टूडियो का नंबर है, और इससे पहले लगाएं कोटा का STD कोड 0744। जी डॉक्टर साहब, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि कारण आपने बताया, अब बात करते हैं क्या केवल ज़्यादा खाना, क्योंकि कई बच्चों को देखते हैं ज़्यादा खाते हैं और पैकेट वाला खाना ही खाते हैं, या कईयों की डाइट भी ज़्यादा होती है, तो क्या ज़्यादा खाना मोटापा बढ़ा सकता है? इस पर थोड़ी रोशनी डालें आप।
1: नहीं, देखिए, एक बैलेंस होता है शरीर में भोजन और एक्टिविटी का। तो जितना आप हर उम्र के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं भाई, इसको कितनी कैलोरीज चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, शुगर चाहिए, फैट चाहिए, तो उन अगर उसका इंटेक उससे ज़्यादा है और वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। आजकल क्या हो गया कि बाहर मैदान नहीं है, बच्चे घर में ही बैठे रहते हैं, टीवी मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो वो फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हुई तो मोटापा बढ़ने का
0: जी रहता। अच्छा, भविष्य की बात करें बच्चों की, तो मोटापा भविष्य में किन गंभीर बीमारियों का रूप ले सकता है?
1: हम यही कहते हैं मोटापा तो कई रोगों की जननी है।
0: डॉक्टर साहब, आप कोई रोकना चाहूंगी, एक श्रोता जोड़ना चाह रहे हैं। हेलो,
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ, कोटा आरजेपुरम से।
0: मनोहर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछे, क्या पूछना चाहते हैं?
2: जी मैम, मैं पूछना चाह रहा था कि मेरे एक बच्चे आज जिसकी उम्र है लगभग 8 साल की है, 25 जुलाई को 8 साल उसके कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैम उसको क्या है बार बार टॉयलेट आता है।
0: अच्छा,
2: वो जैसे अभी टॉयलेट जाके आएगा, फिर 2 मिनट भी नहीं होंगे वापिस टॉयलेट जाएगा, फिर वापिस टॉयलेट जाएगा। स्कूल में भेजते तो स्कूल में भी टीचर ने बोला कि बार बार टॉयलेट जाता है। तो मैंने उसको चेकअप भी करवाया, पर उसमें ऐसा कोई इश्यू नहीं आया कि उसको ये प्रॉब्लम है, तो मैं जानना चाह रहा था उसको बार बार टॉयलेट क्यों आता है।
0: जी डॉक्टर साहब,
1: देखिए, उसको हमें ये चेक करना है कि टॉयलेट दिन में ही ज्यादा आता है या रात को ज्यादा आता है, एक बात। दूसरा, हम उसका टॉयलेट को इकट्ठा भी करेंगे पूरा 24 घंटे का, तो पता चले कि मात्रा भी ज़्यादा है या केवल बार बार जाना ही समस्या है, और कितने समय से है ना। तो ये सब बैठ के आप पर्सनली डॉक्टर से बात करेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, है ना। तो वो सब आपको गाइड करेंगे। अधिकतर ये समस्या विकट नहीं होती है, और एक बार आपसे बातचीत के बाद इस समस्या का समाधान बहुत सरल है ना। कितने समय से है, कोई घर बदला है, कोई घर में कोई बहुत एक्टिविटी हुई हो, कोई मृत्यु हुई हो, कोई और ऐसा कार्य हुआ हो, उससे भी कई बार बच्चों में ये साइकोलॉजिकली कई बार ऐसा हो जाता है कि पेशाब की फ्रीक्वेंसी दिन में बढ़ती है, रात को नहीं बढ़ती है, केवल दिन में ही बार बार जाते हैं। ठीक है
2: सर, एक बार और कहना चाह रहा था मैं, सर वो एक्चुअली में रात को जब सोता है ना, तो रात में भी 2-3-4 बार उठ के बार बार टॉयलेट जाता है।
1: हाँ, तो बेटा एक बार पूरी जांच करेंगे, डॉक्टर साहब के पास जाएं। आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पे अपन इसके बारे में, एक स्पेसिफिक समस्या के बारे में बात नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से, है ना। आपके जो भी डॉक्टर साहब हैं उनको दिखाइए, वो आपकी कुछ जाँच करेंगे पेशाब की, ब्लड की, कुछ पता चलेगा परिवार में कोई डायबिटीज है, कुछ है उसके कारण भी हो सकता है, तो अनेक कारण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: ठीक है
0: सर। मनोहर जी, आपने कार्यक्रम में फोन किया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक अंतराल के लिए रुकते हैं और फिर से श्रोताओं से मुखातिब होंगे।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट एवं श्री जी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल झालावाड़ रोड कोटा।

इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर, E11 जवाहर नगर कोटा, फोन नंबर 2422526 और 2431217। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्तरीय RC हंडर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से 2 बार सम्मानित डॉक्टर ML अग्रवाल, अवसाद या अन्य मानसिक विकारों से अपना हो परेशान, वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर ML अग्रवाल करेंगे इसका समाधान। साथ ही छोटे जीने द्वारा बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और समस्त प्रसूत एवं स्त्री रोगों के इलाज व परामर्श की बात है तो डॉक्टर अरुणा अग्रवाल आपके साथ हैं। 24 घंटे रोगियों की देखरेख में तत्पर अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर।

0: तो ब्रेक के बाद श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य में। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, आपसे जानना चाह रहे थे कि मोटापा जो है भविष्य में चलकर किन गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकता है।
1: तो मुख्यतः अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर।
0: डॉक्टर साहब एक श्रोता जुड़ना चाह रहे हैं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: हेलो।
2: हाँ नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: चित्रलाल मरवण बोल रहा हूँ, ग्राम पाला जिला पारा से।
0: जी चित्रलाल जी, कैसे हैं? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं?
2: बस ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, योग कर रहा हूँ अभी।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
2: योग प्राणायाम करता हुआ फोन लगा रहा हूँ।
0: अरे वाह वाह वाह, बहुत ही जागरूक श्रोता है आप, कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं और साथ ही साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और जानकारी हासिल कर रहे हैं। जी पूछे क्या?
2: स्वास्थ्य बढ़िया अभी।
0: बहुत बहुत बहुत अच्छी बात है। और पूछे आप क्या पूछना चाह रहे हैं
2: डॉक्टर साहब से?
0: जी
2: जैसे रेडियो पे सुन रहे हैं और आप मोटापे के बारे में बता रहे हो, तो ये रेडियो पे ये मान लो कि आप 1% पब्लिक सुनती है।
0: अच्छा,
2: मतलब 1-2% मान लो। और ये जानकारी भी है, लेकिन जो दूर दराज गाँव है वहाँ भी ये कहा ना आपने जिंक फूड, ये पैकेट फूड, फास्ट फूड जो हर जगह मिल जाते हैं हर जगह, तो यही सी कुछ चीजें हैं मोटापे बढ़ाने की। तो इसलिए मेरा मतलब है, शायद मेरी बात आपको अच्छी लगे, तो गवर्नमेंट और आप स्वास्थ्य विभाग सारे मिलकर इससे पाबंदी लगाते हैं, इसको बंद ना करते हैं।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन ये मुझे सुन के थोड़ी सी निराशा हुई है चित्रलाल जी, कि आप विषय से बिल्कुल हटके सवाल कर रहे हैं। आप
1: बता देते हैं थोड़ा सा।
0: जी स्वास्थ्य से
1: देखिए, भारत सरकार इस पे बहुत ज्यादा काम कर रही है और बहुत गंभीरता से काम कर रही है इस पे। गवर्नमेंट के अनेक प्रोग्राम हैं, वो जानकारी आपको आपके स्वास्थ्य केंद्र पे भी मिल सकती है। पोषण कार्यक्रम है, फिट इंडिया कार्यक्रम है, ईट राइट इंडिया कार्यक्रम है, खेलो इंडिया कार्यक्रम है, जो स्कूल्स और यहाँ सब पे इन विषय पे बात कर रहा है और ये सब बता रहा है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हमें जागरूक बनना है और आप खुद इतना कार्य कर रहे हैं तो हमें घर से चालू करना है। घर पे जो वातावरण है वो ऐसा क्रिएट करना है कि बच्चे देखकर इन चीजों से स्वयं ही दूर रहें, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर्स हैं। सरकार कर रही है अपनी तरफ से कोशिश। अब ये इसके लिए कुछ कुछ नए वो भी आ रहे हैं कि जो पैकेट आएगा उस पे साफ साफ लिखा होगा कि भैया इसमें कितना फैट है, कितना शुगर है और कितना नमक है। तो हम सावचेत रहेंगे और ऐसी चीजें खरीदेंगे नहीं, और हम खरीदेंगे नहीं तो कंपनी बनाएगी क्यों।
0: बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। हम बात कर रहे थे मोटापे से, मोटापा जो आगे जाके गंभीर बीमारियों में बदल जाएगा, उस विषय पर।
1: तो इसमें जैसे हमने बात की, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है टाइप 2, और हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, और ये जैसे इनको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, तो रात को सो नहीं पाते हैं, है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। तो ये काफी गंभीर बीमारियां हैं, बच्चे की एक्टिविटी कम हो जाती है तो उसके कारण और कई रोग हो सकते हैं, चर्बी इकट्ठी हो गई, चमड़ियों की में दिक्कत होती है, तो अनेक समस्याएं हैं। पर मुख्य है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, दिमाग का स्ट्रोक, ये सब हो ही सकता
0: है। बच्चों के जैसे मानसिक विकास पर भी इसका असर पड़ता है क्या? अपनी उम्र से ज्यादा वजन वाला बच्चा, आत्मविश्वास में कमी
1: 100% होता है, क्योंकि इन बच्चों की हम कहते हैं

0: बुलिंग भी ज्यादा होती है और बाहर क्या घर में ही चालू हो जाता है, गोलू मोटू है ना, बिल्कुल आलसी है तू, कुछ करता नहीं है, तो मानसिक समस्याएं डेफिनेटली होती हैं, बॉडी इमेज से रिलेटेड होती है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है।
1: अच्छा माता पिता किन संकेतों की ओर ध्यान दें बचपन से ही बच्चे के कि वो गंभीर समस्या ना बने, इस पर थोड़ी रोशनी डालें डॉक्टर साहब।
0: तो नॉर्मली क्या होता है कि माता पिता ये देखें कि भाई बच्चा जल्दी थक जाता है क्या, एक्टिविटी करने से कतराता है क्या, उसको उनको लग रहा है कि वजन बढ़ रहा है सडनली, कुछ इकट्ठा हो रहा है, पेट फूल रहा है, हाथ पैर मोटे हो रहे हैं, है ना, ये समस्याएं। फिर डॉक्टर से बात करेंगे, वजन करेंगे, लंबाई करेंगे, तो हमें पता चलेगा क्या हो रहा है, नींद आने में दिक्कत है
1: जी, ठीक है ना। अच्छा अब थोड़ा बात करते हैं बच्चों के खान पान पे, इस पे आप रोशनी डालें कि जैसे 2-2.5 साल का बच्चा खाना प्रॉपर खाना खाने लगता है तो क्या खाने में उसको संतुलित भोजन जो दिया जाता है, क्योंकि उस इतनी उम्र का बच्चा सब्जी रोटी तो बहुत अच्छे से नहीं खा पाता है, क्या चीज़ें शामिल करें भोजन में कि बच्चे को पूरा पोषण मिले।
0: बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आप। इसमें आजकल जो हमारी संस्था है IAP और नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट है ICMR है, उन्होंने प्लेट का कंसेप्ट दिया, हम घर में थाली में खाते हैं, प्लेट में खाते हैं, तो आधी प्लेट आपकी फल और सब्जी से भरी होनी चाहिए
1: जी, जी।
0: फल जरूर खाएं, सलाद खूब खाएं, है ना, और उसमें सलाद में स्प्राउट्स भी ले सकते हैं, है ना, और जो आधी बची उसमें से चौथाई में हम दालें हैं, शाकाहारी लोगों के लिए दाल है, पनीर है, ना, और जो मांसाहारी हैं उनके लिए भाई अंडा है, मीट है, जो भी खाते हैं
1: जी,
0: उसकी अपनी इच्छा है, और जो चौथाई बची उसमें हम अन्न यूज करते हैं, अन्न आजकल हम कहते हैं मोटा अनाज यूज कीजिए, श्री अन्न यूज कीजिए, रागी है, बाजरा है, सावा है, कई सारी चीजें आती हैं, वो यूज करेंगे
1: जी।
0: तो एक प्लेट का कंसेप्ट है और एक फॉर्मूला भी देते हैं हम कि 24 सबका ना एक डिफाइंड अमाउंट है, उतना हम लेंगे
1: जी।
0: साथ में शाकाहारी लोगों के लिए और जनरल स्पेशली शाकाहारी लोगों के लिए दूध दही भी बहुत जरूरी
1: जी,
0: है
1: जी, जी, जी,
0: और पानी सबसे जरूरी
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: जो ड्रिंक सबसे अच्छी है वो है पानी,
1: पानी जी जी जी। एक श्रोता जुड़ना चाह रहे थे, फोन कट गया है डॉक्टर साहब जी। अच्छा जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चा जो घर में देखता है वही सीखता है हर चीज में, अगर खान पान माता पिता का अच्छा हो, आजकल वर्किंग है सभी तो भाग दौड़ भरी जिंदगी है मम्मियों की भी, और पापा तो जाहिर सी बातें काम करते हैं, तो भाग दौड़ में पैकेट वाला खाना या सुबह का शाम को खाना, फ्रिज में रखा हुआ खाना दोबारा गर्म करके खाना कितना नुकसानदायी होता है हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी।
0: देखिए ये तो प्रैक्टिकल समस्या है
1: जी, जी,
0: और
1: जी।
0: हमें रीहीट भी करना पड़ता है, आजकल फ्रोजन फूड्स भी आते हैं
1: जी, जी जी,
0: तो हमें जंक फूड और फ्रोजन फूड में अंतर समझना जरूरी
1: जी, जी, जी, डॉक्टर साहब
0: बताएं। तो फ्रोजन फूड्स वो हैं जैसे भाई हमने बना के रख लिया काफी समय, विदेशों में काफी करते हैं, उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रीहीट करेंगे तो कोई नुकसानदायक चीज नहीं है। हाँ कोई चीज को बार बार गरम करेंगे 2-3 बार या जैसे ऑयल को बार बार यूज करेंगे उसको ही, तो नुकसानदायक हो सकता
1: जी, जी,
0: है
1: जी,
0: तो खाने में घर पे ही बना हुआ खाना खाएं, और हमारे देश में खाने का बड़ा इम्पोर्टेंस है जी,
1: जी।
0: ना हमारा जो माता पिता का प्रेम दर्शाने का तरीका भी वो भी पेट के थ्रू ही जाता है, तो घर में भी हमारे अच्छी मात्रा में घी डालेंगे, अरे बेटा चुपड़ी रोटी खाओ, पराठा खाओ, तो उसका थोड़ा बैलेंस रखना जरूरी है। फैट की भी जरूरी है, उसका कुछ अमाउंट डिफाइंड है कि भाई इतना आप करीब 5 चम्मच 24 घंटे में फैट खा सकते,
1: हैं।
0: 4 चम्मच चीनी ले सकते हैं, 1 चम्मच नमक ले सकते हैं
1: जी, जी, जी।
0: तो घर पे बना
1: सब एक श्रोता हाँ, जानना चाह रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: हेलो
2: नमस्कार
1: नमस्कार, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: अर्जुन राम साहब बोल रहा हूँ, कर्मावास बालोतरा से।
1: जी स्वागत है आपका अर्जुन जी।
2: नमस्कार,
1: क्या सवाल है आज कार्यक्रम में?
2: सवाल मैं सिर्फ जानना चाहता था डॉक्टर साहब से कितना BMI सुरक्षित है।
1: अच्छा
0: देखिए हम कहते हैं हमारे देश

0: जो बीएमआई है 23 से कम होना चाहिए, है ना जी?
1: जी, जी
0: विदेश
1: जी,
0: में 25 मानते हैं उसे, हमारे देश में 23 पे है वजन बढ़ गया, ओवरवेट जिसे कहते हैं, और 25 के ऊपर हम उसे मोटापा कहते हैं, विदेश में 30 के ऊपर उसको मोटापा कहते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो 23 का बीएमआई हमारे लिए
1: सुरक्षित है।
0: हाँ, तो मतलब करीब 18 से 23 के बीच में सुरक्षित है, 18 16 से कम है तो कुपोषण है।
1: जी जी, बहुत बहुत आभार
2: आपका भी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये बीएमआई भी थोड़ा डिस्क्राइब करें, क्या
0: बीएमआई? एक मापदंड है जिसमें हम बच्चे की वजन, बच्चा या बड़ा जो भी है,
2: हाँ, ये डिफरेंशिएट करना चाह रहे थे कि बच्चों, क्योंकि हम अभी बच्चों और किशोरों की बात कर रहे हैं, तो दोनों को रिलेट करते हुए आप ये थोड़ा सा समझें।
0: तो वजन है, वजन किलोग्राम में लेते हैं, और जो उसकी लंबाई है वो हम मीटर में लेते हैं।
2: अच्छा,
0: है ना? अगर 150 सेंटीमीटर का है तो 1.5 मीटर।
2: अच्छा,
0: तो वजन को जो हाइट का मीटर स्क्वायर है, मतलब दो बार डिवाइड कर देंगे। सपोज आपका वजन 20 किलो है और लंबाई 110 है,
2: ठीक है,
0: है ना? तो 20 डिवाइडेड बाय 1.1 इनटू 1.1।
2: अच्छा अच्छा,
0: तो वो हमें बीएमआई दे देगा, है ना? आजकल बीएमआई से ज्यादा फोकस वेस्ट सरकमफ्रेंस पे कर रहे हैं।
2: जी, इसीलिए क्योंकि श्रोता ने भी बड़ा टेक्निकल सवाल किया है, अर्जुन जी ने भी, तो ये अच्छी बात पता लगी। और आपने जो कहा कि कमर का नाप भी एक मतलब मोटापा बढ़ रहा है इसका लक्षण है, तो इस पर भी ध्यान दें। और यहाँ पे श्रोताओं को एक बार फिर से डॉक्टर साहब विषय बता देते हैं और फिर एक श्रोता से जुड़ते हैं। विषय है बच्चों और किशोरों में बढ़ती हुई मोटापे की समस्या, और डॉक्टर अविनाश बंसल हमारे बीच उपस्थित हैं। एक श्रोता जुड़ रहे हैं डॉक्टर साहब। हेलो।
1: हेलो जी, नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं
1: जी? प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
2: जी प्रेम जी,
1: जी
2: प्रोग्राम सुन रहे हैं?
1: हाँ जी, मोबाइल ऐप से सुन रहा हूँ।
2: अरे बाबा, तो साफ सुनाई दे रहा है?
1: हाँ, स्पष्ट प्रसारण आता है मोबाइल ऐप से।
2: अच्छा, प्रोग्राम ये प्रोग्राम शुरुआत से सुना आपने?
1: नहीं, अभी मैं कहीं गया था तो अभी घर पे आया, मुझे पता चला।
2: जी,
1: तो
2: जी,
1: मैंने अभी जैसे नेक्स्ट कॉलर से बात करी थी ना आपके, उस समय पे सुना मैंने।
2: हाँ, जी, जी। तो आज के विषय से जुड़ा क्या सवाल है?
1: बस पूछना चाहते हैं, जैसे कि अभी जो बरसात का समय चल रहा है, तो मतलब बच्चों का कोई ऐसा खान पान रखे और उन्हें स्कूल जाने में टिफिन में कौन सा खाना दे जी?
2: मौसम जो बदलते हैं उसके हिसाब से पूछना चाह रहे हैं आप?
1: हाँ जी, बिल्कुल।
2: जी जी जी डॉक्टर साहब,
0: देखिए सबसे जरूरी चीज है जब भोजन बनता है, एक स्वच्छता का है
1: जी,
0: है ना? सफाई से बनेगा, और घर पर बना हुआ भोजन बच्चे ले जा सकते हैं स्कूल। आजकल सब स्कूलों ने अपना वो भी बनाया हुआ है कि भाई सोमवार को ये लाना है, मंगलवार को ये लाना है, तो खैर स्कूल ले जाएं अपने घर पे से, जैसे पोहा है आपके उपमा है, और रोटी भेजते हैं, रोटी है, सब्जी है, है ना? ये भी भेज सकते हैं अपने अनुसार, जो आप करते हैं नॉर्मल भोजन दे सकते हैं
1: बच्चे। जैसे नॉर्मल भोजन दे तो रहे हम साथ में।
0: हाँ।
1: उसके अलावा जैसे कोई मौसमी सब्जी होती है, फल होते हैं, तो उनको भी मतलब एक्स्ट्रा दे सकते हैं?
0: बिल्कुल दे सकते हैं, और आपने बहुत ही अच्छी बात कही मौसमी। हमारे देश में बात होती है ऋतु फल और ऋतु सब्जी, जो जिस मौसम में फल और सब्जी आ रहा है वही प्रयोग करें, क्योंकि वो स्वच्छ है, ताजा है, उसमें पोषण ज्यादा है, रादर देन जो कोल्ड स्टोरेज से हम कोई बहुत एग्जॉटिक बहुत वैसा लाएं कि साहब ये तो महंगा फल है ये खाएंगे, उसकी जरूरत नहीं है, जो जिस मौसम में आ रहा है वही खाएं।
1: जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच,
2: आपका भी धन्यवाद प्रेम सिंह जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक ब्रेक का समय हुआ है।
3: विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्तरीय आरसी हंटर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से 2 बार सम्मानित डॉक्टर एमएल अग्रवाल, अवसाद या अन्य मानसिक विकारों से अब ना हो परेशान, वरिष्ठ मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर एमएल अग्रवाल करेंगे इसका समाधान। साथ ही छोटे चीरे द्वारा बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और समस्त प्रसूति एवं स्त्री रोगों के इलाज और परामर्श की बात है तो डॉक्टर अरुणा अग्रवाल आपके साथ हैं। 24 घंटे रोगियों की देखरेख में तत्पर अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री सेंटर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे अग्रवाल न्यूरो साइकेट्री।

0: डिलीवरी सेंटर 11 जवाहर नगर कोटा, फोन नंबर 2422526 और 2431217।
1: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं जायसवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं न्यूरो इंस्टीट्यूट 1/28 विज्ञान नगर कोटा।
2: हाड़ौती में पहली बार लकवे के इलाज हेतु मस्तिष्क में रक्त के थक्के को पिघलाने वाली आधुनिकतम एवं एकमात्र टीपीए उपचार पद्धति युक्त स्ट्रोक यूनिट।
3: शुरुआती 4.5 घंटे में ही इस पद्धति से उपचार द्वारा लकवे से होने वाली आजीवन अपंगता से बचाव संभव।
2: लकवे के लक्षण

0: स्ट्रोक यूनिट।
1: शुरुआती 4.5 घंटे में ही इस पद्धति से उपचार द्वारा लकवे से होने वाली आजीवन अपंगता से बचाव संभव।
2: लकवे के लक्षण: शरीर के एक भाग में कमजोरी, चेहरे में टेढ़ापन, आवाज में लड़खड़ाहट, चलने में परेशानी। तुरंत संपर्क करें
3: 24 घंटे अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय जायसवाल एवं स्ट्रोक टीम उपलब्ध।
4: टेलीफोन नंबर 07442423232, मोबाइल नंबर 9928756522।
5: श्रोताओं, ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य में। आपको एक बार पुनः बता देते हैं, आज का विषय बच्चों और किशोरों में बढ़ती हुई मोटापे की समस्या, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अविनाश बंसल जी। आप कुछ पूछना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं तो 2941142 इन नंबरों पर फोन करें, और इससे पहले लगाएं 0744 कोटा का एसटीडी कोड। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों में मोटापा जो है वो उसके शारीरिक और मानसिक विकास और स्वास्थ्य दोनों पर कैसे प्रभाव डालता है?
6: देखिए, शारीरिक रूप से तो ये बच्चे की एक्टिविटी कम होती है, और जैसे अपन ने बात की कई अनेक रोग होते हैं।
5: जी जी जी जी।
6: मानसिक रूप से भी थोड़ा सा बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन।
5: कॉलर हैं, जुड़े?
6: हाँ जी, बिल्कुल जुड़े।
5: हेलो।
7: हेलो,
5: हाँ जी, नमस्कार।
7: नमस्कार जी। नमस्कार।
5: नमस्कार, स्वागत है आपका।
7: हाँ जी, थैंक यू जी। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मैं अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी बोल रहा हूँ।
5: जी जी अंसारी जी, पूछे।
7: हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसे ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसको जैसे कद्दू सब्जी नहीं होती, कद्दू की तरह मान जाते हैं, जैसे पेठे की सब्जी है, उसको मोटापा ऐसे हो जाता है, ना तो उसकी लंबाई है जो बढ़ती है, हमारे मोहल्ले में भी है जो होती है, लड़के या मेरी शॉप पर भी आते हैं। ये सबसे ज्यादा समस्या, सबसे फूड की समस्या है, जो फूड जो फास्ट फूड खाते हैं या कुरकुरे चल गए, अगर इसको मेडिसिन देते मोटापा घटाने की हो, उससे कोई नुकसान हो सकता है सर, जो मेडिसिन लेनी हो अगर शरीर को कम करने के लिए?
6: जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए क्या है, मोटापे की रोकथाम आसान है। उपचार के लिए बहुत छोटे बच्चों में हम दवाइयां नहीं देते हैं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों में जहाँ तक कोशिश है दवाई हम नहीं देते हैं, है ना? ठीक है ना। तो इसमें यही, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कुरकुरे, तो कुरकुरे की जगह हम कहते हैं मुरमुरे खाओ भाई,
7: है ना?
6: कुरकुरे की जगह मुरमुरे खाएं, मुरमुरे के साथ चना मिला लें, मूंगफली मिला लें, पूरा जेब भर के रखें, बच्चों की दिन भर खाते रहें।
7: और प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, डेली वाला सुनते बहुत अच्छा है सर।
5: जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंसारी जी। इसी तरह आप हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहे, और सवालों के लिए हमारे स्टूडियो के इन नंबरों पर फोन जरूर करें। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर, और फिर बचाव की भी बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मसला है।
6: तो मानसिक में क्या है कि बॉडी जो स्पेशली किशोर हो जाते हैं, तो बॉडी इमेज की इशू आती है कि भाई हम मोटे दिख रहे हैं, हमारे दोस्त तो पतले हैं, स्मार्ट हैं, सिक्स पैक्स वाले हैं,
5: जी, या जी, कुछ
6: भी। तो और फिर इसके कारण बच्चे सोसाइटी से विड्रॉ करते हैं, फंक्शंस में नहीं जाते हैं, अलग अलग थलग रहने लगते हैं। तो फिर अपने डिप्रेशन है, इसकी समस्या आती है, फिर और ये एक विशेष साइकिल में फंस जाते हैं। फिर रात तक देर तक जग रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो फिर खाते रहते हैं, और मतलब कंपाउंड होती जाती है समस्या।
5: तब बचाव और उपचार की ओर बढ़ें।
6: तो बचाव के लिए देखिए, एक बैलेंस स्ट्राइक करना बड़ा जरूरी है भोजन और एक्टिविटी के बीच में। तो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला कई लोगों ने दिया है, 5-2-1-0, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ इसमें। 5 का मतलब है 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रोज खाने हैं, और एक सर्विंग फ्रूट और वेजिटेबल की रफली 100 ग्राम होती है।
5: अच्छा,
6: है ना,
5: ठीक है।
6: तो जैसे हम, और इसमें स्पेशली हरी पत्तेदार सब्जी है, अपने गाजर है, ऐसी चीजें हैं जो विटामिन और मिनरल्स हमें देती हैं।
5: जी जी,
6: वो लेनी है हमें करीब करीब, मानो आप 2 कटोरी सब्जी रोज, एक फल, एक केला है, एक अमरूद है, जो भी जिस मौसम में जो फल आ रहा है, ठीक है ना। 2 हम मानते थे मीडिया का, आजकल हम कह रहे हैं मीडिया और कम करो, 2 घंटे से भी, 2 घंटे से ज्यादा मीडिया नहीं।

0: और स्पेसिफिकली मीडिया भोजन के साथ नहीं है।
1: जी जी जी।
0: एक घर में सीधा सा प्रिंसिपल होना चाहिए, भोजन टाइम इज नो मीडिया टाइम, सब साथ बैठ के खाना खाएं, बातें करें, नो टीवी, नो मोबाइल, नो रेडियो, नो न्यूज़पेपर,
1: जी जी,
0: नथिंग। तो वो समय बच्चों को देने का बहुत ही यूजफुल समय है।
1: जी जी जी।
0: ठीक है, एक घंटा रोज फिजिकल एक्टिविटी करनी है। अब फिजिकल एक्टिविटी की समस्या आजकल क्या हो गई है, बच्चों का शेड्यूल इतना पैक हो गया कि एक घंटा मिलता नहीं कई बार।
1: जी जी।
0: और साथ ही साथ कोई मैदान नहीं है जहाँ जाके बच्चे खेल सकें सेफली, डर लगता है माता पिता को भेजने में बच्चों को।
1: जी जी जी।
0: तो हमें एक स्पेसेस तो क्रिएट करनी है, और एक घंटा दिन में, मतलब जरूरी नहीं एक घंटा एक साथ करें, जब आपको टाइम मिलता है आधा घंटा 15 मिनट
1: जी, जी,
0: उस ब्रेक्स में भी कर सकते, कुछ भी करें जो भी आपको अच्छा लगता है। बाहर नहीं जा रहे, घर में ही उछलें, स्किपिंग करें, नाचें, योगा करें, सूर्य नमस्कार करें, तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है वो करेंगे, साथ मिलके करें, वॉकिंग पे जाए परिवार साथ जाए, खेले, तो परिवार का भी इंटरेक्शन बढ़ता है। और शून्य हम कहते हैं, शून्य हम कह रहे हैं आजकल जो ये चलन चल गया है, कोक पेप्सी, इनको हम बोलते हैं शुगर स्वीटेंड बीवरेजेस या कैफीन युक्त बीवरेज, तो इनको अवॉइड करना है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं। और इनकी जगह क्या पीना है आपको, पानी सबसे अच्छा, पानी के बाद छाछ है, जलजीरा है, है ना,
1: नींबू
0: पानी है। नींबू पानी का बड़ा ध्यान रखना है, नींबू पानी आप घर पे जो बनाते हैं नींबू को स्क्वीज करके वो यूज करेंगे, जो बाजार में पैक्ड नींबू पानी मिलता है या आप जाते हैं शादी ब्याह में वो आजकल मॉकटेल्स मिलती हैं, उनमें बहुत ज्यादा शुगर होती
1: अच्छा,
0: है ना, कि सिरप से बनते हैं वो, तो ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। और भाई कोई को फिज चाहिए तो जो हमारा नॉर्मल सोडा आता है
1: जी, जी, जी,
0: उसमें जीरो कैलोरीज होती है, जीरो शुगर होती है, तो आप नींबू शिकंजी बना रहे हो, घर पे नींबू डालो, सोडा डालो, थोड़ा सा हल्का सा नमक, चीनी थोड़ी सी डालें तो डालें, नहीं तो कोई बात, तो ये फिर जलजीरा बहुत अच्छा है, कोकोनट वाटर है।
1: जी जी जी। और जैसे अब खेल, जी
0: हाँ बताइए,
1: खेलने के बारे में आपने कहा, क्योंकि पहले तो मैं अपने बचपन की बात करूं तो खूब खेला करते थे हम लोग, पूरे मोहल्ले भर के बच्चे इकट्ठे होके, और फिर वो गेम्स तो अब दिखते ही नहीं है डॉक्टर साहब, सतोलिया हो गया, गिल्ली डंडा हो गया, और बहुत सारे गेम्स होते थे, अब सारे बच्चे मोबाइल पर सारे गेम, लूडो देख लो आप, फुटबॉल देख लो, क्रिकेट देख लो, सारे कुछ मोबाइल पर है। स्क्रीन टाइम क्या मोटापे का कारण है?
0: बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है, क्योंकि स्क्रीन टाइम से क्या है, एक तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, दूसरा जब हम स्क्रीन देख रहे होते हैं तो उसके साथ टेंडेंसी होती है कुछ मंच करने की।
1: जी,
0: अब मंच क्या कर रहे हैं, कुरकुरे कर रहे हैं, भुजिया कर रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं होता है।
1: एक कॉलर जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: योगेश जांगड़े पे, मैं तरह 36।
1: जी योगेश जी,
2: जी हम ये थोड़ा जानना और समझना चाह रहे हैं व्यवहारिक तौर पे, कि जो ज्यादातर घर में अभी जैसे बाइक का चलन बढ़ा है तो साइकिल का चलन कम हो गया है, तो ये भी एक छोटा सा मतलब बच्चों के शारीरिक विकास में एक बाधा कह सकते हैं या फिर उनके मोटापे में?
0: बहुत सही प्रश्न पूछा है, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हमें थोड़ा सा भी डिस्टेंस जाना है तो हम वॉक करने की बजाय साइकिल, मोटरसाइकिल लेके चल देंगे, स्कूटर लेके चल देंगे, और कम उम्र पे भी बच्चों को दे रहे हैं वो, उसका अलग नुकसान है, एक्सीडेंट्स प्रोन होते हैं। आज हम स्टेयर्स केस लेने की जगह लिफ्ट यूज करते हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीजें एक्टिविटी हैं जो अगर हम करें तो दे वुड एड टू आर।
1: जी जी योगेश जी, और कोई सवाल?
2: जी नहीं, धन्यवाद, मैं अभी बच्चे के लिए साइकिल खरीद के दिया हूँ।
1: अरे बहुत अच्छी बात है,
0: एक हेलमेट भी जरूर दिलाइए योगेश जी,
2: जी
0: है ना, साइकिल पे भी हेलमेट की जरूरत,
1: और कोशिश करें कि बच्चा साइकिल को चलाए भी।
2: हाँ जी, हाँ जी,
1: इतना समय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। हम जी बात कर रहे थे नींबू पानी की,
0: नहीं हम बात कर रहे थे मीडिया की।
1: जी जी जी।
0: तो अब वो उसके साथ कुछ कुछ चलता रहता है।
1: जी जी जी।
0: वही कोक रख ली साथ।

0: कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया।
1: तो हम कहते हैं ऐसे समय थोड़ी सी इच्छा हो सकती है तो घर में अपने ककड़ी है, खीरा है, गाजर है, सलाद बना के रख लें, वो मंच करते रहे। इवन पॉपकॉर्न, जो प्लेन पॉपकॉर्न है वो भी इक्वली ठीक है, उसमें नमक ना डालें और थोड़ा घी ना डालें। तो स्पेसिफिक प्लेन जो पॉपकॉर्न होता है तो वो भी बहुत ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं होती है। वो तो स्पेशली आजकल उसको कवर कर देते हैं कैरेमल से और कई कई चीजें कर देते हैं फ्लेवर्स, उससे दिक्कत आती है।
0: जी जी जी, डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी और श्रोताओं ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमसे पूछे। अब क्योंकि प्रोग्राम समाप्ति की ओर है तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माता पिताओं को कि वो अपने बच्चों और किशोरों में जो बढ़ती हुई मोटापे की समस्या है उससे बच सकें?
1: देखिए, मेरा मानना यह है कि जीवन में जो भी चीजें चालू होती हैं घर से चालू होती हैं। तो घर पे जो हम संस्कार देंगे, जो हम कर रहे हैं
0: जी।
1: हम माता पिताओं की कंप्लेन रहती है जी बच्चा सुनता नहीं है, हम उनसे कहते हैं भाई बच्चा सुन नहीं रहा पर देख रहा है,
0: देख रहा है जी।
1: तो
0: जी, जी, जी।
1: आप जैसा खाएंगे, आप जैसा घर में फ्रिज में स्टोर करेंगे वही चीज बच्चा खाएगा। अब बच्चा देख रहा है पापा हमें तो मना कर रहे हैं और खुद कोई हाई कैलोरी चीज खा रहे हैं, है ना। तो घर से ही चालू होता है, घर पे अपनी डाइट करें। बच्चों का टीवी मोबाइल का भी माता पिता के उसके ऊपर निर्भर है, आप कितना टाइम खुद मोबाइल टीवी को दे रहे हैं तो उतना बच्चा भी देखेगा। एक्सरसाइज आप कितनी रेगुलरली करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हैं
0: जी।
1: तो हमारा यही है कि बच्चों को सही गाइडेंस घर से ही मिलती है और वैसा ही हमें खुद को फॉलो करना है अगर हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और श्रोताओं आपको बताना चाहेंगे कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम उत्तम स्वास्थ्य।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे जायसवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं न्यूरो इंस्टीट्यूट 1/28 विज्ञान नगर कोटा।
3: हाड़ौती में पहली बार लकवे के इलाज हेतु मस्तिष्क में रक्त के थक्के को पिघलाने वाली आधुनिकतम एवं एकमात्र टीपीए उपचार पद्धति युक्त स्ट्रोक यूनिट।
2: शुरुआती 4.5 घंटे में ही इस पद्धति से उपचार द्वारा लकवे से होने वाली आजीवन अपंगता से बचाव संभव।
3: लकवे के लक्षण शरीर के एक भाग में कमजोरी, चेहरे में टेढ़ापन, आवाज में लड़खड़ाहट, चलने में परेशानी, तुरंत संपर्क करें।
2: 24 घंटे अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय जायसवाल एवं स्ट्रोक टीम उपलब्ध। टेलीफोन नंबर 07442423232, मोबाइल नंबर 9928756522।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी। प्रदेश के राष्ट्रीय बाघ अभयारण्यों के कोर एरिया कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा और प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निवेश की मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं और इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि

0: सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थीं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया था। इसी वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का आज से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। वन्य जीवों का प्रजनन काल और मॉनसून सत्र शुरू होने के कारण पर्यटन गतिविधियों में बदलाव किया गया है। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में पर्यटक नहीं जा सकेंगे। हालांकि बफर जोन में 2 रूट सैलानियों के लिए खुले रहेंगे। दूसरी ओर सवाईमाधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आज वर्तमान पर्यटन सत्र का आखिरी दिन है, जिसके चलते वहां बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं और अधिक ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता।
1: बीते कई दिनों से देशी विदेशी तथा खास और आम सैलानियों की भारी भीड़ है। आज अंतिम दिन बाघों के दीदार के लिए पर्यटकों की विशेष भीड़ देखी जा रही है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के दिशा निर्देशों तथा मानसून के चलते कल से आगामी 3 माह के लिए प्रमुख भाग जोन नंबर 1 से 5 में पर्यटन पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि पूर्व की भांति जोन नंबर 6 से 10 में पर्यटन चालू रहेगा। अंतिम दिन बाघों के दीदार के लिए आज स्थानीय लोगों की भी विशेष भीड़ रहेगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी संबोधित करेंगे। इस वर्ष सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI इनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस रखी गई है। सम्मेलन में डिजिटल शासन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तकनीकी पहलुओं पर देश भर के विशेषज्ञ मंथन करेंगे। सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह देश भर में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। कोटा बूंदी क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए अगले 3 महीनों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अपराध नियंत्रण के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने और कैमरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने की बात कही। इससे पहले श्री बिरला ने श्रीनाथपुरम स्टेडियम में विभिन्न खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित हों, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है।
2: लेकिन यहाँ बड़ी संख्या के अंदर लोग घूमने भी आते थे और इसलिए उनके लिए भी एथलेटिक का एक रास्ता बने और इसलिए 900 मीटर का ये वॉक वे भी उनके लिए बनाया ताकि खिलाड़ी भी परेशान हो वॉक। और इसी स्टेडियम में सारी सुविधाएं, चाहे आप देखो शानदार रूप से बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, जिम हो, लॉन टेनिस हो, सारी सुविधाएं एक स्टेडियम की एक छत के नीचे, ताकि खिलाड़ी बहुआयामी प्रतिभा से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सकें। आज जिम भी है।
0: राज्य सरकार

0: के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत चूरू जिले के लिए राज्य वृक्ष खेजड़ी को एक जिला एक वनस्पति के रूप में चयनित किया गया है। उपवन अधिकारी ने बताया कि जिले की विभिन्न पौधशालाओं में इस वर्ष 1.5 लाख से अधिक खेजड़ी और उसकी सह प्रजातियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर खेजड़ी वाटिकाएं भी बनाई गई हैं।
1: इसके लिए चूरू वन विभाग 1.5 लाख के आसपास खेजड़ी उसकी सह प्रजातियों की पौध तैयार कर रहा है, जिनका वितरण 5 जून से प्रारंभ हो गया है। ये वितरण आमजन व अन्य विभाग के लिए है, उचित रूपे है विभागीय योजनाओं के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत हमने इसी पंचगौरव योजना के 2026 के अंतर्गत हमने 5 खेजड़ी वाटिकाएं बनाई है, जिन जो कि चूरू, तारानगर, राजगढ़, सरदारसर और रतनगढ़ में।
0: और अब मौसम। प्रदेश में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल है। राज्य में अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। औसत तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर कल सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं चूरू और बीकानेर में 42.8, बाड़मेर में 42.1 और जैसलमेर में 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 3-4 दिन अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। इस दौरान हवा में नमी की मात्रा अधिक होने से उमस का असर बना रहेगा। इस बीच राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगामी दिनों में सक्रिय होने के आसार हैं। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में अगले 3-4 दिन गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है। प्रदेश के राष्ट्रीय बाघ अभयारण्यों के कोर एरिया कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में होगा। और प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं FM 102 और FM 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर भी आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए लाए हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण के युगल स्वरों में। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार उत्तम सिंह। फिल्म का नाम हम तुम पे मरते हैं।

ये आवाज़ आपके रेडियो सेट पर मोहम्मद अजीज़ की का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। आग और शोला फिल्म का नाम है। आनंद बख्शी के गीत को धुन दी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, ये धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, गीत लिखा आनंद बख्शी ने, लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की एक बार फिर से युगल आवाजें, फिल्म का नाम राम अवतार।

श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। और लीजिए अब कार्यक्रम में आखिरी गीत आपके लिए लाए हैं फिल्म नाचे मयूरी से। युगल स्वर हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, फिल्म नाचे मयूरी के इस युगल गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगण कार्यक्रम सुनबा वाली संदी बेण्या कता चित्रापणा को घणो घणो राम राम राम राम बेण्याओ राम राम बेण्याओ घर आंगण कार्यक्रम में आपको घणो घणो स्वागत छे। आज छे 30 जून और हर दिन आपका लेख मैं कहीं ना कहीं संदेश ले रहा छा। तो आज भी अपन दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवसा की बात करेंगा जिको संबंध अपना भविष्य अपनी सुरक्षा और अपना लोकतंत्र सु छे। ये दिवस छे अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध ग्रह दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। बेणियो जब अपन रात में आसमान में देखा छा अपन अनगिनत तारा दिखाई देवे छे, लेकिन आसमान में तारा वह ग्रह के अलावा भी कई छोटा बड़ा चट्टानी पिंड हो छे जो न पूरी तरह से तारा हुआ और न ही पूरी तरह से ग्रह। ये जो चट्टानी पिंड हो छे ये सूर्य के आसपास चक्कर लगाता रहे छे, यही शुद्ध ग्रह कहलाव छे। बेण्याओ जो अपना वैज्ञानिक हो छे वह अपनी नजर

अंतरिक्ष पर रखाना छे। वहां को प्रयास रेवा छे कि कोई भी यो ग्रह पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हो तो उकी जानकारी फेलिसु वाई मल जावे और समय रेता आवश्यक तैयारी की जा सके ताकि आबा वाला खतरा सु बच सके। बेणियो, विज्ञान अपनी नई नई खोजाई न देव बल्कि संभावित खतरा सु भी बचावा की दिशा भी दिखावा छे। ई दिवस ही मनावा को उद्देश्य जागरूकता छे। आज विज्ञान और नई नई तकनीका ने अपनी प्रगति कर ली। अंतरिक्ष की कई घटनाओं का बारा में तो पतो लगायो जा सके छे। तो बेणियाओं, आपने भी अपना बालका ही पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी रुचि अपना माई विज्ञान के प्रति भी वहां की रुचि बढ़ावा।

और अब बात करना बेड़ियाओ अपना दूसरा दिवस की, जो आपनो दुनिया को सबसे बड़ो लोकतांत्रिक देश है आपनो भारत। तो लोकतांत्रिक को मतलब हो वह जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ही जनता हो वह। बेड़ियाओ जब आपन वोट देकर प्रतिनिधि चुना छा और प्रतिनिधि संसद पर जाकर देश और जनता से जुड़िया मुद्दा पर चर्चा कर रहे, जैसा किसान की समस्या, महिला को सशक्तिकरण, युवाओं का लेखा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी से जुड़िया विषय संसद में उठाया जाओ छे और चर्चा के बाद कानून और नीतियां तय की जाओ छे। संसद पूरा देश की आवाज हुआ छे बेणियाओ, अपना गांव की जो भी समस्या हो, जैसा की अपना गांव की सड़क, पीबा को पानी, बीमा राशन, स्वास्थ्य सेवाएं और यहाँ सबके साथ सरकार की योजना व कानून हो वछे, जहाँ पर संसद में भी चर्चा हो वछे। हर नागरिक की अपना अधिकार व कर्तव्य की जानकारी होनी चाहिए, तो आपन वोट जरूर देवा, अशो प्रतिनिधि चुना जो ईमानदारी सु जनता की सेवा करे, लोकतंत्र को सम्मान करे और अपना गांव, समाज और देश का विकास में पूरी तरह से सक्रिय भूमिका निभावे। जैसा वैज्ञानिक पृथ्वी की सुरक्षा के लेकर काम कर रहे थे, वैसे ही आपने भी अपना गांव, समाज और देश के लेकर जिम्मेदार बननी चाहिए। महिलाएं भी अपना अधिकार व कर्तव्य के प्रति जागरूक रहनी चाहिए। तो बेणियाओ आज अपन ने दो दिवस पर बात करी। पहलो दिवस विज्ञान अपनी सुरक्षित और प्रगतिशील बनाओ छे, और दूसरो दिवस मजबूत संसद और जागरूक नागरिक मलकर मजबूत लोकतंत्र को निर्माण करे छे।

बेण्यों, गर्मी को मौसम छे और गर्मी में पानी की बात न होवा अशो तो हो ही न सके। जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत छे पानी। पानी पशु पक्षी पेड़ पौधा सभ्यताई जीवन देवा छे और प्रकृति की मुस्कान ही बना रख छे। और आपन सब भी बरखा को इंतजार कर रहे छा क्योंकि गर्मी जोरा की छे। तो आपन ई ऊपर ही सुन ला एक मीठो सो लोकगीत।

और अब टाइम छे बेणियाओ एक लघु नाटिका को। तो आज मैं आपका लेखा एक पूर्व प्रसारित लघु नाटिका ले रहा था जिको विषय छे परिवार की शान बालिका। तो आओ बेणियाओ सुना अपन या लघु नाटिका।

0: लाडी ई छोरी को अत्रो लाड प्यार छको को ना बगड़ जाओगी। ई छोरा पर ज्यादा ध्यान दे, आगे यो ही तो थाना रोटिया दगो।
1: मासा कुण काई करगो, यो खाल खीना देखो, ये दोनी बराबरी तो छ, एक ही जन पैदा होया छ। अब छोरो हो या छोरी, शरीर तो दोनिया को ही बढ़ रहो छ, पोषण भी दोनी नहीं छाई छ, तो फिर आपन दोनिया में क्यों भेद करा।
0: अरे लाडी या छ बेटी, ज्यादा शरीर बन जाओगो तो छोको लाडो भी न मलगो, और इना तो आगला का घर आ जात, छुल्लो फूकनो छे, काम संभालनो छे, कशो पढ़ लिखर नौकरी करनी छे, और बेटो तो बड़ो होर काम करोगो, इको शरीर छोको गाढ़ो होनी छाओ छे, इको ध्यान रखानो कर।
1: मासा

0: अगर बेटी का पोषण को ध्यान न रखाणांगा तो उको शरीर कमजोर पड़ेगो, वह बीमार रहेगी।
1: भाई तू तो घणो ही पगस लचे बेटी को, पछताओ के पछताओ।
0: हाँ री बेटा, तू भी जाओगी थारा भाई के लारा।
1: ये लो, अब तू इना फड़ापा भी खंदा। अरे खाबा पीबा ताई जद बात छी, मना खाए नखी थसू, पर अब तो बात घणी बढ़गी। तू छोको न कर री लाडी, हाल भी बगत छे, समझ जा।
0: मासा पढ़बा में काई बराई जे, दो अक्षर फट जाओगी तो घर को हसाब करबो, और काम की बात तो जान जाओगी, और पढ़ेगी तो रबा का लखन और घर बारा में चतराई तो रखानगी।
1: अरे लाडी तू तो इन छोरो बढ़ावो छाओ छे, बेटी तो घर में रह, यदि छोकी लागे छे अरे बगड़ जाओगी तो माथो कूटबा के सिवा काय न कर सकंगा।
0: मासा विश्वास रखानो, असी बाता मत सोचा करो। वाह मारी बेटी, आछी फड़ाई कर, घणी मेहनत कर फड़बा में। और किशन, ए बेटा किशन, कहाँ खेल रोच, तू भी तो काम कर पाठशाला को। बेटा काई अंटिया खेल रोच, आजा भीतर।
1: अरे लाड़ी काई रात दिन पढ़ाई कई फाचल लागी रहो छे, छोरा पर अतरी पाबंदी मत लगा, उन्हें तो घर सु बारा की दुनिया देख बाद, जद ऊ का हाथ पर खुलगा तभी तो ऊ समझदार बनोगो। अरे लाड़ी ई तारा का कान ये काई गेंद बदला ले रही छे, या यासु खेलेगी का? इका कान तो लाडी फूतिया का चकला बेलन लाती, जीसु की या घर को काम का सीखती, जो आधा काम भी आओगो इक।
0: मासा किसन हट कर रहे हो जो गेंद बल्ला की, तो या भी रूस की हाल तो खेल बादियो, और फिर घर को काम काज तो आगे पाछे सीखनो ही छे, हाल तो बाल पड़ो छे बापड़ी को।
2: अजी रूपचंद जी को घर यही छे का?
1: हाँ यही छे, कुंचो आओ ना भीतर।
2: अजी राम राम जी, माता जी राम राम।
1: राम राम जी राम राम।
2: मु पाठशाला में पढ़ाऊं छू था का किशन और तारा ने।
1: ओ थे किशन की मास्टरनी जी छो, मारो किशन घणो सपातर छे जी मास्टरनी जी, खोना कशा आबो यो। अरे लाडी, ओ लाडी।
0: हाँ जी
1: लाजी, किशन की मास्टरनी जी आई छे देखा।
0: हाँ लियो मास्टरनी जी, पानी लियो, थोड़ी चाय तो पियो गंते।
2: अच्छा आप छोका किशन की माँ?
0: हाँ मास्टरनी जी, खो ना कशा आबो यो, तारा तो पढ़ाई में मन लगाओ छे ना जी।
2: अजी आपकी तारा तो घनी होशियार छे, फटबा में भी और खेलबा में भी, ते थोड़ो अभ्यास इन घर पर भी कराओगा ना, तो यह घनी होशियार हो जाओगी आगे।
1: अजी मास्टरनी जी, छोरिया तो घर को काम काज करती छोकी लागे छे देखो, थे तारा की बाता छोड़ो, उन्हें तो मैं यूं भी दो चार कक्षा ही पढ़ाऊंगा, थे तो यह बताओ कि किशन तो होशियार छे ना माँ को?
2: अजी मासा पूरी पाठशाला में संदा का संदा गुरुजी अचंबो करे छे, तारा और किशन भाई बहन छे, पर दोनों में अतरो अंतर, एक पूरब तो एक पश्चिम, तारा जहाँ पढ़बा लिखबा में अतनी होशियार, वही आपनो किशन पूरो को पूरो डपोल, और यह हर काम काज में आ गए तो किशन संदा का संदा काम में पहुंच।
1: अजी यो काय खेरिया जो मास्टरनी जी, मारो किशन तो घणो शानो छे जी।
2: अजी माता जी इकी तो पूछ भाई छू आज मु यहाँ का, दो दन सु पाठशाला ना रहो, और पाछला दना भी आधा दन में सुई झट गायब हो जाओ छो, तारा सु भी पूछी मन का बीमार तो कोना किशन, तो पर वा भी नटगी, आज मन ही घर आनी पड़ो छे, कहाँ चाहिए किशन और कशा पाठशाला ना आ रहे आजकल।
0: मास्टर जी काई खेरा छो थे, वो तो उन्हें तारा का लारा ही खदाऊ छू, मसु तो इन्हें काई भी रखी जी।
2: भाभी जी जत्रो नाम था कि छोरी को ऊंचो रो छे ना, अतनो ही छोरा को नीचो रो छे, मारो फर्ज तो देखो था सुख हो छो, आगे आप जानो हूँ चालू छू आज तो। राम राम माता जी।
1: राम राम।
0: अरे किशन, ओ किशन खा गयो, आज तो थारी खेर को न देख।
1: अरे लाडी काई बाता करे छे, मारो किशनो तो घणो ही शानो छे, या मास्टर ने भी, अरे हाल तो बाल पड़ो छे उको, उम्र का लारा सब समझ में आ जाओगी उके।
0: वारी बेटा तू तो घणी होशियार छेरी बेटी।
1: अशोक काय कर दियो तारा ना।

0: जो उकी बढ़ाया गारी चरी तो
1: मासा संधि प्रतियोगिता में इनाम जीतर लाई छे तारा कविता हो कबाषण और खेलकूद में भी आगे छे।
0: हाँ हाँ दो एक साल और फड़ा ल फिर घर में ही राज और काई गर्व करनो ई बेटी की जात पर पराया घरा को काम छोको करेगी जद होगो नाम तो। और किशन तू कतरा इनाम लाए छोरो भैया? अरे लाडी छोरा को तो सार संभाल ले ला, वही तो बुढ़ापा की लाकड़ी बनोगो थारी।

0: रायो।
1: राम राम, या बधाई की बात की छे मास्टरनी जी।
0: अजी था की तारा जो छे न हर प्रतियोगिता में प्रथम आओ छे और वाथा को घणो नाम कर री छे। पाठशाला में बार दौड़ छी 100 मीटर दौड़ बाधा दौड़ दोनों में प्रथम आई छे अपनी तारा। और अब तो थे जिला स्तरीय दौड़ में खंदाबा की भी तैयारी कर लो न।
2: साची खेरा छो बहन जी।
1: ओहो बहन जी आगी ना पाठशाला में प्रथम बस घणी।
0: माता जी अगला महीना जयपुर में प्रतियोगिता छे, पहली तो देखो कोटा का मैदान में होगी और फिर वहाँ। मने पूरो विश्वास छे का आपनी तारा जरूर प्रथम आओगी।
1: काई बेन जी घर की बेटिया ने बारह खंदाऊंगा का मानन ना खंदानी माँ की बेटी और आपका साल पढ़ाई बंद कराऊंगा।
2: मासा जाबा दियो ना उन
1: बेटी ना घर की देर पार न करनी चाहिए जे। बेटो हो तो मन भी खुश रहे तो और बेटा की काई चिंता फकर होती।
0: जदी माता जी आप किसन की चिंता न करो पढ़वा में भी मन न रख और गलत बायला की संगत में लाग रो छा आजकल भगत रहता संभाल लू ना तो यो साल न बगड़ जाऊ को।
1: अजी किसन तो होशियार छ मना डर छ या तारा खेल कूद में न रह जाओ जदी तो मु नटरी छू।
0: बच्चा आपका छ सोच समझ रहा न फैसलो लेनो छ।
1: लाडी ओ लाडी किसन और तारा नदी किनारे खा क्या दोनी का दोनी।
2: किसन तो बायला की लारा पतंग उड़ा रहे मासा और तारा प्रतियोगिता में भाग ले बा जयपुर की उनकी बहन जी का लारा।
1: हे थना बेटी खंडा दी इतनी दूर अरे बूज तो लेती मसु फैली खा खा ऊंच नीच होगी तो काय जवाब दंगा। जात बरातरी में तू तो नाक कटाया मारागी खदाओगी रिवा।
2: तड़क बेगी खड़गी ची मासा अब श्याम पड़गी अब तो आबा वाली होगी।
0: थाने याद करियो था की बेटिया की और लारा इनाम भी लाई छे माजी गणी गणी बधाई। राज्य स्तर पर भी अव्वल लाई छे अपनी तारा। अब देखनो छे के 10वीं की परीक्षा में कतरा अंक आओ छे। देख जो माता जी उमा भी अपनी तारा अव्वल ही आओगी। अब तुम घड़ी मोनी होगी अब बार तो चालू छू।
2: अजी बहन जी छाई पानी तो
0: ना फिर कोई दिन आऊंगी आज तो जावा दियो।
1: गणी खुश हो रही चेरी लाडी ये चाल चलन छुपा कौन ना छोरी का अरे बेटा पर ध्यान दे बेटा पर।
2: मासा बेटो नाम कर का बेटी नाम तो आपको ही ऊंचो हो रहो छे ना।
1: अरे तारा काय नाम ऊंचो करेगी देख जी किसन ही लारा लागा को बुढ़ापा में या तो पेला का छुला फूकेगी।
2: तारा जा बेटी जा हाथ मुंडा धो रोटी खा ले।
1: हाँ हाँ बेटी को लाड़ प्यार कर तू तो। अरे किसन बेटा आर रोटी खा ले रे भूखो प्यासो खेल रहे जो छोरो आजा भीतर।
0: तारा की माँ ओ तारा की माँ
1: लियो लियो फिर आ गया बहन जी आग लगा पा। आओ आओ बहन जी अब कहाँ लेट जाओगा तारा ना।
0: अजी माता जी मुँह काई अब तो आप खुद ही लेट जाओगा तारा ना।
1: मैं क्यों लेट जाऊंगा अब तो पाठशाला भी न जाओगी वाह 15 साल की होगी अब ब्याह करेगा उनको।
0: माता जी वो बालक की काई शादी ब्याह की बात करो छो हाल उन्हें उनका पूरा अधिकार तो दियो।
1: उनको काई करनो छे काई न करनो ये थे मत बताओ आज काई कारण सु आया छे याखो था तो।
0: माता जी लियो मिठाई ताकि तारा न था को पाठशाला को और संधा गांव को नाम रोशन करो छे आज वह 10वीं की परीक्षा में वरीयता सूची में आई छे पूरा राज्य में दूसरो स्थान आयो छे उनको। अब तो तारा ने छात्रवृत्ति और इनाम भी मलगो और वह मुफ्त में आगे पढ़ सकेगी।
2: साची खेरा छो बहन जी।
1: ओ बहन जी थे तो तारा को नाम जपता रहे हो छो अब या बताओ का किसन भी अव्वल आयो छे ना।
0: माता जी काई कू किसन की गणित और विज्ञान में तो 2-2 अंक आया छे उनका और बाकी विषय में भी 5 साल बगड़ गयो उनको। आपने अगर किसन के ऊपर भी अनुशासन का नियम लगावा दिया होता तो वो भी आज तारा की नई नाम रोशन करतो था को।
1: पण छोरी तो छोरी छे बेन जी।
0: माता जी छोरा की पढ़ाई जतरी जरूरी छे ना उसू जरूरी छे छोरी की और बालपना में अगर उनका लालन पालन को आपन ध्यान न रखेगा तो उनको शारीरिक और मानसिक दोनों विकास रुक जाओगो। ध्यान रखानो बालक की नहीं बालिका भी आपनो ही अंश छे और समाज में जतरी जरूरत बेटा की छे न अतरी जरूरत बेटी की भी छे और पूरा समाज को विकास और उन्नति बालक और बालिका दोनों की शिक्षा दीक्षा और लालन पालन पर ही टिकी हुई छे। अगर बालपना में ही छोरी का ताई भी संधि सुख सुविधा और अवसर दिया जाओ तो वह भी सुयोग्य नागरिक बन सके छे घर समाज और देश की तरक्की में हाथ बटा सकत छे और नाम

0: कमा सकत।
1: साची की बेन जी था न मारी आख्या खोल दी। अगर मारी या लाडी तारा को हौसला न बढ़ाती तो तारा भी माँ की नाई घर की चार दीवारी में ही रह जाती और माँ का परिवार को नाम ऊंचा न हो पातो। आपन न छाए जे तब बालक और बालिका मा आत्रो न करा और बालिका के ताए भी उको अधिकार देवा और उको लालन पालन भी छोरा का बराबर ही करा।
0: अजी माता जी जब ही तो क्यों छे, बेटो आन छे तो बेटी शान छे, बेटो मान छे तो बेटी आपनी गुमान छे।

बेणियों, आज जानकारी में ले रहा छा कि राजस्थान सरकार की ऐसी योजना जो महिला के ताई आत्मनिर्भर बनाओ छे और अपनो रोजगार शुरू करबा में प्रेरित करे छे। ई योजना को नाम छे बेणियों मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। बेणियों, आज का टाइम में महिला केवल घर तक सीमित कोई ना, बल्कि वह खेती में हाथ बटाओ छे, पशुपालन करे छे, सिलाई कढ़ाई अचार मसाला कई तरह का घरेलू उत्पाद वा बनाओ छे। कई अपनी बेणिया स्वयं सहायता समूह से जुड़कर भी काम करे छे, व बेणिया भी योजना को लाभ ले सके छे। तो बेणियों, ई योजना को मुख्य उद्देश्य छे कि जो अपनी बेणिया छोटा व्यवसाय सु बड़ो करवा को सपनों देख रही हो, वह भी योजना सु आर्थिक सहायता ले सके छे, या फिर कोई अपनी बहन नयो व्यवसाय शुरू करबा की सोच रही हो तो वह भी योजना को लाभ ले सके छे। ई योजना का लाभ लेबा के लेखर आवेदक महिला की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और राजस्थान की मूल निवासी भी होनी चाहिए, और जो आवश्यक जो दस्तावेज छे वह आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता को विवरण, और जो व्यवसाय आपन ने खोल रखे छे या खोल बो छार्या छे उको पूरो विवरण। आवेदन करबा के लेख जिला महिला अधिकारिता विभाग में आवेदन कर सके छे। बेणियाओ, अगर आपके पास मेहनत करबा को हौसलो और कोई आछो विचार हो तो आप ई योजना को फायदो ले सको छो। महिला व स्वयं सहायता समूह का लेख भी यो सबसे बड़ो ऋण योजना छे। और अब सुनागा बेणियाओ अपना एक मीठो सो लोकगीत।

और ई गीत के साथ ही बने आओ आज को कार्यक्रम यहीं तक। फिर मिलेंगा नई नई बात और जानकारी के लेख। आज तो देव था कि बनाई इजाजत चाला छा राम।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। मीडियम वेव 212.31 मीटर और FM 102.6 MHz पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती सेवा द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो IBS के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारे जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूं फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
2: तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता। एक दूसरी बात ये भी हमारा कि हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ नहीं ठीक हो तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का

0: दर्द जारी रहे, दो से तीन दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस. अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है. तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द. एक दो दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए.
1: जी, तो ये आपने बड़ी जरूरी बात कही है. और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं. घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था. आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं. क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज फटने लगती है, खराब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को.
0: बिल्कुल सही कहा आपने. जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहाँ से हमारी आवाज निकलती है. स्पेशली जब हम रात को सो जाए, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है. कई पेशेंट कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज़ बदल जाती है. तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ईएनटी को जाके देखते हैं, ये गला ख़राब है. ईएनटी जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहाँ से खाने की पाइप शुरू होती है वहाँ पर काफ़ी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है. तो एसिड रिफ्लक्स से गला ख़राब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज़ जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा कि गले में कुछ अटका हुआ है. तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स.
1: तो मतलब आवाज की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें. और बात आवाज की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज ही पहचान है. अगर ये गाना आप कहें तो हम सुनवाएं.
0: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए.
1: सुनते हैं.

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था और पेट के अल्सर की हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना जरूरी होता है?
1: नहीं, आज के जमाने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं है, क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयां निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के जमाने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं अल्सर। ज्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयां लेते रहते हैं, तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं। एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है और रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीजन हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे क्योंकि जो एसिडिटी की दवाइयां हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने जमाने में ये दवाइयां नहीं होती थी तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के जमाने में अल्सर की सर्जरी इज ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
0: जी जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है। लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
1: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा। कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है।
0: जी जी,
1: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है, काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफी हाई है।
0: जी, और एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है? कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं, बहुत टेंशन में, तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
1: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, सुबह उठते हैं, मोशन होता है और फिर पेट खाली होता है, फिर पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट डे मोशन होता है। चूंकि स्लीप साइकिल खराब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूँ कल रात को, ठीक से सोया हूँ कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैंने नेक्स्ट दिन मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूँ अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
0: ओके, तो ये तो बहुत जरूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज्यादा होती है कुछ?
1: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट खत्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली

0: सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है एंड दिस इज रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क. तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज्यादा प्रॉब्लम होती है.
1: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है.
0: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है. जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं.
1: जी.
0: तो हम सिंपल टर्म्स में देयर इज गुड बैक्टीरिया एंड देयर इज बैड बैक्टीरिया. जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है. गुड बैक्टीरिया ज्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है. तो बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं. जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं. लूज मोशन ज्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है. तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई है, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं इंटेस्टाइन्स को. एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर बट ऑल्सो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी. बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया.
1: जी, तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना.
0: तो मैं तो कहूंगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही.
1: दही
0: से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है. बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देयर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली.
1: जी, बहुत बढ़िया. यहाँ पर एक गाना सुनते हैं. डॉक्टर साहब बताइए कौन सा गाना सुनवाया.
0: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्ज का, दर्दे दिल दर्दे जिगर. ये गाना
1: क्या बात है, आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है. सुनते हैं ये गाना.

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह की एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगर पेशेंट जब हमारे पास आता है, दवाई नहीं देनी है हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज है जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज है जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेस जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेस जो बोलते हैं हम, साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता है?
1: हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और नुकसान डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी,
1: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा हो उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, मेरे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज द मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज द मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
0: जी जी जी। और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है, किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। बट अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन्स में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटेन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
0: जी जी। और एक बात डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज खास तौर से जो योगा करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
1: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं, मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं, पेट बाहर आ जाता है ज्यादा उल्टा। तो यू हैव टू

0: केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: जी, तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है?
0: बिल्कुल पड़ सकता है
1: जी। और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के? क्योंकि हर कोई कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
0: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है, इसके भी पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है? हाँ। बोले हमको खाना पचता ही नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है। जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं, तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट sort of पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है। तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में, स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की, वो कलरफुल होनी चाहिए।
1: okay.
0: मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियां हो जाए, एक रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, जवार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
1: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए।
0: बिल्कुल, इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाए आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
1: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
0: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना क्वाइट फेमस मेरे स्कूल के टाइम पे,
1: जी,
0: और काफी सुना है हमने
1: जी।

0: डॉक्टर साहब, बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर एक बात रह गई थी वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेजाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी।
1: हाँ, तो बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफी सेम ही है, जिस तरीके से हम देखते जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है। अभी काफी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं, हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे अभी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट एंड राइट देख लिया एक सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेते कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं, छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर मेजर करती है, ये क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और वो पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडिटी लग रही हो रहा है, एक बटन दबाता है और विद इन 24 to 48 hours हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है, तो उसको 24 hour pH मैनोम pH probe बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देयर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द एसोफेगस।
0: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस, ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती हैं?
1: तो कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतड़ी में कुछ इशू है, अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं। जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको IBD बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल।

0: डिजीज, जिसमें बड़ी आंतरी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन ऑफ ब्लीडिंग होता है, तो उसको आईबीडी बोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस आईबीडी वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर आईबीडी की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है। ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज नॉट रियली अ डिजीज, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली। तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत जरूरी है।
1: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब एक गाना सुनते हैं पहले, यहाँ
0: शायद मेरी शादी का ख्याल
1: सुनते हैं डॉक्टर साहब ये गाना।

0: अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी ये जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
1: तो ये जितनी भी ये बीमारियां, आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अगर कोई सीख है वो डाइट है, कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं। कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकेंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। आई थिंक न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, कि कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा न लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया। ये क्या समस्या है?
1: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सिर दर्द हो गया है और एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ये पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है। तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन ऑल्सो गोज अवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है, तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट ली है, मुझे इसका जवाब किधर नहीं मिला। ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है। तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो, क्योंकि माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स। माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो, अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपने आप हेडेक शुरू हो जाएगी ना। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, इट्स बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स, इसके लिए आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है।
0: जी, हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
1: कुछ तो है, देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन डाइट, नॉट ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स।
0: जी, पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है। तो माइग्रेन अगर

0: किसी को है मान लीजिए, तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
1: तो अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिंस कैन कॉज एसिडिटी. तो अगर आपको एसिडिटी ऑलरेडी है तो माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ.
0: जी जी जी. और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की?
1: बिल्कुल
0: तो,
1: बिल्कुल.
0: या फिर जो लोग नहीं लेते उन्हें भी होता है तो? हाँ,
1: तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है. दोनों सेम चीज करते हैं. अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है. अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज होता है. एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है. द ओनली वे हम अलग कर पाते हैं कि अल्कोहल है नॉन अल्कोहल, पेशेंट को पूछ के, हिस्ट्री के ऊपर. तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए. वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए बिकॉज इट इज अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स. तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे? धूम्रपान टबैको सेम चीज, धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है. अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड. अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है समथिंग कॉल्ड मेट एएलडी, मतलब जहां पे अल्कोहल भी थोड़ा है, फैट भी थोड़ा है, और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं. ये सबसे डेंजरस है बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है. तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल.
0: जी जी. डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
1: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है. तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफी कैंप्स करते हैं. आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए. दिस इज अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी हेपेटाइटिस बी. बाकी और भी वायरसेस होते हैं जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज्यादा दिखता है जब वाटर कंटेमिनेशन होता है, फीको ओरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, खान पान साफ नहीं होता है, तब ये वायरस होता है, लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है. हेपेटाइटिस ई ज्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम. एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम देखते हैं, फॉरेन में ज्यादा दिखता है, इंडिया में कम दिखता है. ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से, या कभी कभी सेक्सुअली भी होता है. हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है. तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं. हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है, और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है. तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो. ये कॉमन इंजरी है लिवर की. तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है वो तो हम जानते ही होता है, ये कॉमन है. वायरसेस कॉमन है. फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज है वो काफी रेयर होती है. लास्ट चीज मैं कहूंगा गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है. अगर लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर की ट्यूब में आके फंस जाए, तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है. तो ये कॉमन लिवर की बीमारियां हैं, गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस.
0: जी, आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ये भी वजह होती है क्या?
1: बिल्कुल हो सकती है. कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खाके, तला हुआ खाके, दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है. इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है, एक सोनोग्राफी करेंगे उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं.
0: जी जी. और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर

0: मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
1: नहीं, जरा भी नहीं। गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ नॉर्मल कटते रहती है।
0: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है, तो दूर हुई। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो आईबीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है, अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई

0: वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या ये?
1: हाँ, ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर, तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड, उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए, मोशन जाते हैं। तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है, तो कई मेरे पेशेंट है जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे या नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले। अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ। एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ, ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन बट सेंसिटिविटी, दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत।
0: तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को? मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी या कुछ नहीं?
1: नहीं नहीं, ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि वो कीप वेल हाइड्रेटेड, बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में, कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो ताकि वो वेल हाइड्रेटेड।
0: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस?
1: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता, आईबीएस इज अ सेंसिटिव थिंग, अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो तो सारा नॉर्मल होता है। इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये।
0: ओके, अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को, बताइए कौन सा गाना सुनवाए।
1: चले चलो, ये गाना सुना है, चले चलो,
0: चले चलो लगान का,
1: लगान का,
0: लगान फिल्म का गाना चले चलो।

0: हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो बाहर। सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल जा रहे ये तेल ले अच्छा है ये ले ले इससे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की जरूरत नहीं है। और वीनो के ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है। खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, सब रेगुलेटेड दवाइज है, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासिटामोल है, 500 ml पैरासिटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है।
1: और
0: स्टेरॉइड्स भी आता है। और ऐसी कोई चीज आप अपने मुंह में डालोगे और स्वॉलो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है कि इट हैज टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड। मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देखे, फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो अभी इजिली मिल जाती है उसके पीछे बहुत ईयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरोसूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है। और वर्स्ट कम टू वर्स्ट, हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या होगे। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट। इट इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व्ड।
1: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
0: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: डॉक्टर साहब, आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो, तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्या है।
1: तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे सुदर्शन फाकिर का कलाम। और अब समाप्त फरमाइए प्रेम वर्मादानी का ये गीत नीना और राजेंद्र मेहता की आवाजों में।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रंग तरंग कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मधुकर राजस्थानी का लिखा ये गीत, खयाम के संगीत निर्देशन में, आवाज है मोहम्मद रफी की।

आइए अब सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में नूर नारवी का कलाम। यह है पंकज उदास की आवाज और नूर नारवी का कलाम।

ये थी राजेंद्र मेहता की आवाज गुलजार का कलाम, और अब सुनते हैं मिताली सिंह और भूपिंदर सिंह की आवाज में इब्राहिम अश्क का कलाम।

Oh.

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार रिजवी की गायी ये गजल। शायर हैं ताहिर फराज रामपुरी।

0: ये थी मिताली सिंह की आवाज और रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गीत।
1: न जवानी नल चल दी।

0: इस गजल के साथ ही अब आज का रंगारंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: रंग तरंग
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

अभी श्रोता सुन रहे थे विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, FM 102 और FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए, आप सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
1: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: संजय मार्केंडी जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान। ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
1: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
1: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
1: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है
2: जी।
1: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
1: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
1: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
2: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
1: जी जी।
2: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी

0: कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
1: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे? जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी श्रोताओं, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे, चारों ओर जंगल ही जंगल थे। दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
1: जी श्रोताओं, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
0: जी,
1: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए, इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया, जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
0: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
1: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है, यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
0: जी बिल्कुल सही, पर अजीत जी, अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
1: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं।
0: जी।
1: प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
0: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात ये है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है, लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
1: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही, इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
0: जी।
1: तो श्रोताओ, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
0: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
1: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
1: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
1: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
1: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
1: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
1: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
1: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
1: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
1: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
1: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
1: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
1: दीपक से सीखो जितना,

0: हो जितना
1: हो सके अंधेरा हरना,
0: हो सके अंधेरा हरना।
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
1: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की।
1: सच्ची सेवा करना,
0: सच्ची सेवा करना।
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे।
1: जीवन पथ में बढ़ना,
0: जीवन पथ में बढ़ना।
1: और धुएं से सीखो हरदम,
0: और धुएं से सीखो हरदम।
1: ऊंचे ही पर चढ़ना,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना।
1: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में

0: हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोताओ, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला, फिर चहके बाकी पंछी भी, धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा, सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा। बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।
3: बस अब थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम। राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करें खत्म।
4: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
5: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
6: काव काव काव, सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काव काव काव।
7: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
8: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
9: मेरा भी कुछ यही हाल है।
6: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो, काम काम काम।
7: क्या क्या क्या?
6: ऊंचा सब तक कोयल गाए,
7: नीचा
6: सब तक सांप सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना, काम।
4: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
8: जो आज्ञा महाराज।
7: दम लगा के कू।
9: हईशा।
7: दम लगा के कू।
9: हईशा।
6: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? आ, करता होगा बड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं, ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं, काम काम काम काम काम काम काम। ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा दाल फुला कर कुप्पा, काम का

0: पपी है, ऐसे क्यों बैठा है भैये? सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है? काँ, काँ, काँ।
1: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
0: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।
1: ताल खोदने में इस जंगल में खुदेगा तालाब, अरे वाह जनाब। ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा, छी छी कौन पिएगा उसको? अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
0: का, का, का।
2: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: पपी हना पिए
1: जवानी। इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
2: भौ भौ भौ, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। भौ भौ, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं?
1: काँ, काँ, काँ। कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। काँ, काँ, शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते?
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही सजा हो।
4: अब गर्मी का मौसम आ गया था। नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: काँ, काँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। काँ।
5: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना
6: भाई। मैं तो ठहरा कछुआ।

0: दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
0: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
2: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब। तुम हंस क्यों रहे हो कौए, क्या मैंने गलत कहा?
1: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
2: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल, इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
0: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है रोने जैसे गाने की।
1: काँव काँव। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपीहे के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: आओ, आओ, आओ। कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: हाँ, चलो।
3: पिए दूजा पानी, कब आएगी बरखा।

0: क्या पता?
1: अभी अभी जान है, लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
0: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा।
0: पपी है, अरे देखो तो, हम आए हैं तुम्हें लेने। बाहू कौआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
2: पानी,
0: अरे
1: पपी है भाई।
2: अरे

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोता अब सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

गुलशन बावरा का लिखा ये गीत आपने सुना रफू चक्कर फिल्म से, कंचन और शैलेंद्र सिंह की आवाजें थी। आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में घुंगरू फिल्म का ये गाना।

लीजिए सुनिए इंदिवर का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ कलाकार फिल्म का गाना, आवाजें सुरेश वाडकर और साधना सरगम की हैं।

राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, प्रोफेसर प्यारे लाल फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। और अब आपको सुनवा रहे हैं इंदीवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, मुकेश और कंचन की आवाजें। फिल्म का नाम है पाप और पुण्य।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली के जोधपुर हाउस में यमुना जल समझौते को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। श्री शर्मा ने 29 जून के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस समझौते से राजस्थान की धरती को पानी मिलेगा। उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य की पानी की पीड़ा को समझा है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में राज्य को केंद्र सरकार की ओर से कई सौगात मिली हैं।
2: यह योजना लगभग 34,000 करोड़ रुपए की योजना, इसमें 295 किलोमीटर तीन पाइपलाइन से पानी जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी सौगातें राजस्थान के लिए 12 साल के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, कल जो समझौता हुआ है हमारा यमुना जल का काम हो, या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हो, नॉर्दर्न जयपुर रिंग रोड हो, अमृत भारत रेलवे स्टेशन हो, वंदे भारत ट्रेनें हो, और यही नहीं, आपने देखा होगा राजस्थान में पहली साल में राइजिंग राजस्थान माने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्व भर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत, स्वतंत्र और जवाबदेह संसद ही लोकतंत्र की सच्ची शक्ति और नागरिकों के अधिकारों की सबसे बड़ी संरक्षक है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हमें लोकतंत्र की आत्मा, संवाद, सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता और संवैधानिक मर्यादा को और मजबूत करने का संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है। प्रदेश में आज रात 12 बजे से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना लागू हो जाएगी। इसके साथ ही मनरेगा से लगभग 1,00,000 काम वीबीजी रामजी में ट्रांसफर हो जाएंगे। मनरेगा आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने बताया कि प्रदेश में कुल मिलाकर 6,00,000 काम वीबीजी रामजी में कराने की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि योजना के लिए राजस्थान को 1200 करोड़ रुपए का बजट मिला है। नई योजना में प्रशासनिक कामों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक मद में कुल बजट बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। इस राशि से 1,03,00,000 नए जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। बालोतरा के पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य रिफाइनरी परिसर को स्वच्छ, हरा भरा और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। रिफाइनरी प्रबंधन के अनुसार इस विशेष अभियान के तहत परिसर में 21,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इससे पहले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी यहां 20,000 पौधे रोपे गए। वृक्षारोपण के साथ साथ परिसर में साफ सफाई, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है। केंद्र सरकार ने माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जीएसटी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार करदाता आगामी 31 जुलाई तक अपनी अपील दर्ज करा सकेंगे। इससे पहले सरकार ने इसके

0: लिए 30 जून तक की समय सीमा तय की थी। मंत्रालय ने बताया कि अंतिम दिनों में पोर्टल पर बढ़े दबाव और तकनीकी दिक्कतों को लेकर विभिन्न हितधारकों से मिले ज्ञापन के बाद ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश में पुलिस के विशेष जांच दल एसओजी ने फर्जी एफएमएजी सर्टिफिकेट के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि विदेश से एमबीबीएस करने वाले इन आरोपियों ने भारत में पंजीयन के लिए अनिवार्य योग्यता परीक्षा का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करवाया था। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हमारे श्रोता हैं जिन्होंने कहीं से ये गजल हमें भेजी है, रेत पर लिख के मेरा नाम मिटाया ना करो, और बहुत खूबसूरत गजल है। हमें अच्छा लगेगा अगर आप अपनी बात लिखकर भेजें तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज आप अपने साथ लहरें लाई हैं या फिर लहरों के संग आने वाली हैं, और हम सब लहरों के साथ कहीं बहुत दूर, हम सबको लहरों के साथ कहीं बहुत दूर ले जाने वाली हैं, जहां हो सुकून के कुछ पल और हम जी सकें अपने मन के हिसाब से, जहां कोई रोकने टोकने वाला भी ना हो, जो ना करना चाहे वो काम भी ना हो, बस साथ हो सिर्फ लहरें, फिर तो उनके साथ गुनगुनाना अपने आप ही हो जाएगा, नहीं भी आता होगा तो भी। क्या बात है भाई, ये बात तो है ही कि गीत संगीत और जब मनचाह साथ हो या अपने मन की बात हो तो फिर कितना खूबसूरत वक्त गुजरता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो चलिए हम गीतों की शुरुआत करते हैं। रिमझिम शब्द को लेकर बहुत सारे गीतों के कयास आए हैं, तो चलिए एक झलक उन सभी की सुन लेते हैं।

तो भाई ये कुछ गीत हैं जो हमने आपकी पसंद से चुने और उनके थोड़े थोड़े अंश आपको सुनवा दिए। हमने ये गीत चुना है और इसे भी बहुत सारे श्रोताओं ने पसंद किया है। लेकिन पहले सवाल पूछ लेते हैं। एक तो आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है और किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, और जो सबसे पहला रिमझिम का गीत था उसे एक फीमेल वॉइस में भी आपने सुना होगा, तो बताइए कि वो किसकी आवाज़ में आपने सुना है। गायिका का नाम आपको बताना है जो सबसे पहला गीत आपने रिमझिम का सुना था।

बड़ा खूबसूरत तराना छेड़ देता है ये गीत। शैलेंद्र का लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ, बिल्कुल सही नाम हमारे श्रोताओं का आया, बहुत बहुत शुक्रिया। काला बाजार, देवानंद, वहीदा रहमान और रिमझिम गिरे सावन बरसात का जो गाना हमने आपको सुनाया था, सबसे पहला गाना मंजिल फिल्म का लता मंगेशकर की आवाज में। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से प्रॉम्प्ट जो जवाब आते हैं ना, उनमें बहुत कार्यक्रम की को एक गति मिल जाती है और इस गति के साथ जो संदेश आते हैं वो तो बिल्कुल सोने में सुहागा हो जाते हैं। जैसे हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की भारत में एक अजीब सी तड़प भी है और अपनापन भी, लहरों के माध्यम से प्रेम मिलन भी रहे और प्रकृति के अद्भुत तालमेल को बयां किया गया है। शब्दों का चयन इतना कोमल और संगीतमय है कि पढ़ते ही मन शांत और रूहानी एहसास से भर जाता है। आंखों के सामने बारिश की बूंदों के बीच नाचती झूमती लहरों का दृश्य सजीव हो उठता है। लहरों का उठना, ठहरना और फिर लौट जाना प्रकृति के शाश्वत नियम को दिखाता है। और एक और संदेश में कहा गया है कि कुछ लहरें समंदर से नहीं, यादों से उठती हैं। वे जब भी दिल के किनारे आती हैं, अपने दूर गए साथी से मिला जाती हैं, उनकी कई यादें याद दिलाकर। एक और संदेश में तो रिमझिम के तराने से लेकर बहुत सारे गीतों का जिक्र हो गया है। पिछली रात से रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात के आगमन से हमारे दिल के समंदर में भीगी भीगी ठंडी ठंडी लहर सी दौड़ रही है। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के क्यों धड़के, आज सुरीले सफर के मिलन की बेला में। जैसे दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज एक है, सांसों के तार पर देश की सुरीली धड़कन के ताल पर जब गीत गाया समंदर की लहरों ने, तब लहरों की तरह यादें टकराती हैं, तूफान उठाती हैं, रेत पर लिखे नाम भले ही मिट जाएं, दिल पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और एक और संदेश में कहा गया है कि विविध भारती के सुरीले सफर में आज समंदर की लहरों के साथ खेलते हैं, ऐसे गीतों का लुत्फ उठाते हैं जिसमें नायक नायिकाएं बेखौफ समंदर किनारे बेतहाशा दौड़ते लहरों के साथ मस्ती करते हैं, कभी रेत पर ताजमहल बनाते हैं तो कभी उसे मिटाकर फिर समंदर के उथले पानी में एक दूसरे को भिगोते लोटपोट हो जा रहे हैं। चलिए इसी से सवाल निकल आया, हमें बताइए कि क्या आपने कभी समंदर की सैर की है, किसी समंदर के किनारे घूमे हैं या वहाँ से सीपियाँ इकट्ठी की हैं? अगर ऐसा किया हो तो हमें ज़रूर बताएं। और कहाँ गए हैं, अलग अलग तटों पर, हमारे देश के अलग अलग समुद्री तट हैं जहाँ का पानी और जहाँ के समुद्री किनारे अलग अलग होते हैं, तो हमें ज़रूर बताएं कि आपका वो अनुभव कैसा रहा और कहाँ गए थे आप। और अब ये जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, बताइए पर्दे पर कौन गा रहा है और संगीत किनका है।

भाई कन्याकुमारी की बात की है जो कि तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, बहुत रोमांच होता है, ऐसी अनोखी दुनिया होती है, ये हमारे एक श्रोता ने बताया है उस सवाल के जवाब में जो हमने पूछा था कि समुद्र के किनारे आप कहाँ गए हैं। और हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि मुंबई गए हैं। बाकी जवाबों का भी इंतज़ार हो रहा है, ज़रूर आप लोग कहीं घूमने गए हैं और जल्दी से बताइए। एक श्रोता कह रहे हैं कि आपने जैसे ही रिमझिम के तराने छेड़े वैसे ही हमारे यहाँ भी रिमझिम फुहारें पड़ने लगी हैं, मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। वाह क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं हम तो दीघा पश्चिम बंगाल गए थे। अब दूसरे सवाल की बारी, वैजयंती माला फिल्म मधुमती, घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, ये जो गाना भी आपने सुना, सलील चौधरी का संगीत निर्देशन था, ये जवाब भी आ गया है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथियों ने बताया है कि ना बाबा मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है, तो मैं जयपुर से ना अजमेर नाव में बैठी ना जल महल और पानी से दूर ही रहती हूँ। ओहो अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पानी का डर जो है वो बहुत सी चीज़ों से दूर रहना के लिए मजबूर कर देता है। आप ये बताइए कि समुद्र के किनारे बहने वाली हवाओं का भी एक बड़ा ख़ास अहम भूमिका होती है, तो क्या कभी उन हवाओं के साथ आपकी कुछ मुलाकात हुई है, जो तेज़ तेज़ हवाएं बहती हैं बारिश के समय में, अगर याद हो तो वो ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी जिन श्रोताओं ने नहीं बताया है कि वो किस समुद्र के किनारे टहले हैं या क्या बनाया है उन्होंने, जो घरौंदे बनते हैं उन घरौंदों को कई बार बच्चे भी बनाते हैं और आजकल तो बहुत सुंदर सा सेट भी मिलता है बच्चों के उन घरौंदों को बनाने वाला, वो अगर सेट किसी बच्चे को गिफ्ट किया हो तो ये भी बताएं। अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गीत को सुनने के लिए आपको बताना होगा कि ये गाना किस फिल्म का है। संदेशों की बात करें तो हमारे एक श्रोता ने बताया कि एक और रिमझिम का गाना याद दिला दिया, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, लता मंगेशकर की आवाज़। वैसे तो रिमझिम शब्द वाला पहला सुना गीत मराठी है। रिमझिम पाउस पड़े सारखा, यमुनेला हुपूर चढ़े, पाणीच पाणीच चहुड़के चहुकड़े, वाह क्या बात है। और

ये एक और श्रोता ने कहा है कि रिमझिम के तराने की गीत मालाएं बुन रहे हैं और सभी मुखड़े उम्मीद के अनुसार मंजिल ढूंढता गाना शुरू हुआ और काला बाजार पर रुक गया। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि सागर की अपनी शांत गुफाएं हैं, गहरी शांत और एकांत। यद्यपि लहरों में उग्रता हो लेकिन उसके नीचे कोई शांति नहीं है। शायद कोई टाइपो एरर हुई है, अशांति लिखते हुए इन्होंने अशांति लिखना चाहा होगा। एक और श्रोता ने कहा है कि वैसे हम अपनी कुछ दिन पहले की एक बात बताते हैं आपके साथ साथ सभी हंसेंगे सुनकर। तो हुआ यूं कि हमारी बेटी ने कुछ पंक्ति लिखकर अपनी एक पोस्ट डाली स्टेटस पर समुद्र के किनारे की पिक के साथ। तो हमने उसे लाइक किया और लिखा कि हम लिखते तो कुछ ऐसा लिखते। तो जवाब में उसने लिखा आप दिल से सोचती हैं और हम दिमाग से। फिर हमने लिखा अरे नहीं, हम विविध भारती सुनते हैं ना। तो उसका रिप्लाई सारा क्रेडिट मम्मी ने विविध भारती को दे दिया। फिर उसने ये बात सब दोस्तों को बताई, सब इतना हंसे ऑफिस में। तो सोचो एक छोटी सी बात ने कितनों को हंसाया। बस यही तो हम चाहते हैं, सब खूब हंसे वरना परेशानियां तो सबके साथ हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि जीवन दर्शन समंदर की भांति ही गहरा ही नहीं अपितु रहस्यमय भी है। भले ही हम उसके अंदर अपने कौशल विकास से केबल बिछाकर पूरी दुनिया को ही मुट्ठी में भर लेने की होड़ में लगे हुए हैं, फिर भी ये समंदर अब भी रहस्यमय ही है। क्योंकि बहुतेरे तो किनारे के सीप घोंगों से ही खुश हो जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक कुशल गोताखोर ही समंदर में गोते लगाते हुए उसमें छुपे जीवन दर्शन स्वरूप हीरे मोतियों तक अपनी पहुंच बना पाते हैं। आगे भी लिखा है लेकिन यहीं से एक सवाल का जन्म होता है, और वो सवाल ये है कि इस लाइन पर एक बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है कि गोताखोर लंबी जब अंदर तक जाते हैं समुद्र में तभी वो हीरे मोतियों को पा लेते हैं। तो एक दोहा है, अगर वो दोहा याद आ रहा हो तो वो भी हमें बताएं और इस फिल्म का नाम बताएं जो गीत आप सुन रहे हैं।

बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए, एक तोहफे की तरह आया ये जवाब। और मुकेश और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, समंदर की भी बातें हमारे साथियों ने बताई हैं। वैसे एक सवाल आ रहा है मन में कि तोहफों को चुनते वक्त सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखा जाता है जेब के अलावा? ये जो हमारे साथियों ने बताया समुद्र की यात्रा के बारे में, तो एक श्रोता कह रहे हैं कि हम तो समुद्र कनाडा में इन्होंने देखा था कई बार और बहुत देर तक वहाँ बैठकर आती जाती लहर को देखा, जो बस यही कह रही थी काश हमारे साथी को कुछ जीवन और मिल जाता तो आज वो भी हमारे साथ इस प्यारे से नज़ारे को देख पाते, पर बड़ी मस्ती की छोटी सी अपनी परी के साथ छोटे छोटे पत्थर, रंग बिरंगे पत्थर पानी में डाले और पानी में पैर डालकर बैठे रहे। कन्याकुमारी दीघा छूट गया लिखने में, ऐसा हमारे एक श्रोता कहते हैं। और मुंबई में तो अक्सर ही जाना होता है, वहां चौपाटी पर कई बार गए, चेन्नई में भी जाना हुआ, कन्याकुमारी भी गए हैं, ये हमारे एक और श्रोता ने बताया है। एक और श्रोता कह रही है कि वैसे तो हमारा शहर समुद्र के पास ही है, अक्सर हम वहां जाया करते हैं, दुमस बीच, सवाली बीच और गोवा दो बार गए, पर सबसे अलौकिक अनुभव हमें धनुषकोडी और कन्याकुमारी का रहा। दक्षिण भारत की यात्रा का अनुभव बेजोड़ था, क्या बात है। मुंबई के जुहू बीच दो तीन बार, अक्सा बीच और गोराई बीच का जिक्र किया है हमारे एक श्रोता ने। द्वारकाधीश और सोमनाथ गया हूं समुन्दर के पास, ये हमारे एक और श्रोता बता रहे हैं। एक श्रोता ने साझा किया है एक दुर्घटना होते होते बचने का जो अनुभव था इनका। हम लोग पूरा ग्रुप करीब 80 लोग उड़ीसा गए हुए थे, वहां पर समंदर की सैर करते हुए अचानक समंदर में तूफान आ गया और हमारी बोट गोते खाने लगी, तभी एक अन्य बोट वाले ने तूफान के सामने अपनी बोट लगाकर हमारी बोट को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जुहू चौपाटी मरीन ड्राइव दोनों जगह पर दो तीन बार गई हूं, पर वहां का पानी जो अजीब सा पानी की जो अजीब सी गंध होती है मैं अपने को अच्छा महसूस नहीं कर पाती, इसलिए मैं पानी के किनारे पर जाना पसंद नहीं करती हूं। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि पुरी के समुद्र में रस्सी पकड़कर लहरों का आनंद ले रहे थे, पर एक बहुत बड़ी लहर ने उठाकर पटक दिया और मोबाइल में पानी लग गया, थोड़ी सी लापरवाही की बड़ी सजा मिल गई। और समझौता फिल्म का ये गाना हमारे साथियों ने बताया, साथ ही अनिल धवन और शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम का जिक्र हो गया। अब संदेशों की बात करें तो और भी कई संदेश आए हैं। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि मुंबई की कुछ बारिश आप ऑनलाइन ट्रांसफर करके हमारे शहर अजमेर में भेज दें प्लीज, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अभी यहाँ तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑफिस के बाहर तेज धूप है। ओहो, ये तो बहुत खतरनाक है। चलिए जल्दी हम दुआ करते हैं बारिश आएगी। एक और श्रोता कह रहे हैं कि वीबीएस सर्विस मुंबई में मानसून के आगमन के साथ पानी बरसना शुरू हो गया, ऐसे में समंदर किनारे हवाओं के साथ लहरें अटखेलियां करती नजर आ रही हैं। पहली रिमझिम बारिश में धरती को छूती हुई पानी की बूंदें मिट्टी की सूंधी खुशबू बिखेरती हैं, तो वहीं समंदर किनारे किसी चट्टान पर बैठकर बीती यादें मस्तिष्क को दूसरी ही दुनिया में ले जाती हैं। और बताया है कि समुद्री लहरों के आसपास फिल्माए गए गाने बच सकते हैं। एक और संदेश में कहा गया, शांत लहर में कुछ खामोशियां भी गीत होती हैं, उन्हें सुनने के लिए कान नहीं बस समझने वाला दिल होना चाहिए। क्या बात है। चलिए अब इसी बात पर अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और गीतकार कौन है।

आवाज पर ये गाना तो हो गया और इसके साथ ही बहुत सारी आवाजें, भावनाएं आवाज बनकर हम तक पहुंच गई हैं। सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो पानी से बड़ा डर लगता है, मैं तो तालाब में भी नहाता हूं तो साथ में बाल्टी या मग ले जाता हूं, समुद्र में जाना तो दूर की बात है। वैसे हमारे साथियों ने ये जरूर बता दिया जो हमने एक दोहे का जिक्र किया था कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न दरा रहा किनारे बैठ। कबीर दास की का ये दोहा हमारे साथियों ने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रही कि समंदर से बड़ा गहरा नाता है मेरा, क्योंकि समंदर के काफी नजदीक रहती हूँ। अपनी हर खुशी के पल में समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं, टहलना हो तो भी वहीं जाते हैं। लहरों से अपनी दोस्ती है, समंदर की हवाओं से यारी है अपनी। क्या बात है, वैसे बहुत बातें करती हैं हवाएं जब आप समंदर के किनारे हो। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गुजरात के दमन दीव बीच और सोमनाथ विजाग बीच, चेन्नई के मरीना बीच और रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी केरला के कोवलम बीच की सैर करके आई हूं, पर जो चौपाटी की बात है वो सबसे निराली है क्योंकि उसमें बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया है कि रेत पर नाम लिखने का किस्सा, कि बचपन इनका मुंबई में ही गुजरा था, समुद्र से गहरा लगाव है।

जब भी हम मुंबई आते हैं तो जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी या अन्य बीचेस में जरूर जाते हैं। धर्मपत्नी जब बच्चों के साथ होती हैं तो मैं चुपके से हर बार रेत पर दिल का शेप बनाता हूं धर्मपत्नी का नाम लिखकर, आई लव यू भी लिखता हूं और सबको बुलाता हूं। तो धर्मपत्नी और बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट ही मेरा तोहफा होता है और वहां का वीडियो भी सेव करके रखता हूं। हां, हम यही बात कहने वाले थे कि ऐसे नज़ारों की तो फोटो तुरंत खींच लेनी चाहिए, क्या बात है। एक और श्रोता कह रही हैं कि मैं वो खुशनसीब हूँ जो समंदर के किनारे रहती हूँ। मेरा बेटा रोज शाम को खिलौने लेकर रेती में खेलते खेलते बड़ा हुआ है। मैं भी सीपियां इकट्ठा करके उनसे अलग अलग डेकोरेटिव चीजें बनाती थी, लेकिन अब समंदर किनारे बहुत गंदगी रहती है, सीपियां मिलना भी बंद हो गया है। सच में ये एक बहुत ही दुखद बात है और इसलिए समंदर को साफ रखें। अगर समंदर के किनारे आप जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मुंबई चेन्नई जगन्नाथपुरी रामेश्वरम कन्याकुमारी जाना हुआ, हर बार का रोमांच अलग अलग रहा। मेरी बिटिया का बेटा पुरी में पिछले साल हमारे साथ था, उसके साथ समंदर के किनारे लहरों से खेलते खेलते वो अचानक किसी लहर के साथ बह निकला। बस थोड़ी दूर जाते ही हमने लपक कर उसे पकड़ लिया, वो तो मजे लेता रहा पर हम सबके तो हाथ पैर जम से गए थे। कन्याकुमारी में सनराइज की वो झलक का अनुभव इतना सुंदर और आत्मिक अनुभव से भरा हुआ है, वो नजारा वीडियो में आज तक कैद है, जिसे हम यदा कदा देखते रहते हैं। एक गीत सुलक्षणा पंडित का गाया हुआ, तू ही सागर है तू ही किनारा। और अब वो सवाल जो हमने पूछा था, प्रेम गीत फिल्म का गाना अनीता रास का जिक्र किया, इंदिवर का लिखा हुआ ये गीत था, ये भी हमारे साथियों ने बता दिया। और अब हम अगले गाने की तरफ चलें, उसके पहले एक संदेश है। प्रकृति और मनुष्य आदिकाल से सहचर हैं, जब रिमझिम बारिश की बूंदें समंदर की लहरों पर पड़ती हैं तो मानो बिछड़े हुए प्रेमियों का मिलन हो रहा हो। यह दृश्य और अदृश्य का मिलना मानव मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस माहौल में मनुष्य के भीतर की तार्किकता मौन हो जाती है और संवेदनशीलता जागृत हो जाती है, क्या बात है। एक और संदेश में कहा है कि सुख का सुंदर चैतन्य आत्मा है, उसमें से आनंद की तरंगे उठती हैं, खुशी की लहरें उठती हैं और फिर उसी चैतन्य समुद्र में समाती भी हैं। एक और श्रोता ने कविता साझा की है, कहीं पढ़ी हुई ये कविता साझा की है इन्होंने। बादल बरसे धुल गई मन पर बैठी धूल, सब कुछ अपने हो गए समंदर नाव और मस्तूल, खिली जुलाई खुल गया बारिश का स्कूल, बस्ता लेकर सज रहे गुलमोहर के फूल, क्या बात है। तो चलिए अब अगले गीत की बारी है, बताइए कि गीत संगीत किनका है और फिल्म में कौन से कलाकार हैं।

भाई हमारे श्रोताओं ने शशि कपूर और मुमताज का तो जिक्र किया, चोर मचाए शोर का नाम भी बता दिया, लेकिन गीत संगीत नहीं बताया। चलिए हम बता देते हैं, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। और एक श्रोता ने बताया है कि चेन्नई के मरीना बीच की वे यादें केवल एक शहर की याद नहीं बल्कि परिवार के साथ बिताए गए उन अनमोल पलों की धरोहर हैं जिन्हें याद करके आज भी मन मुस्कुरा उठता है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि एक बार गोवा गए थे तो उनका फोन जो था पानी में गिर गया और उसके बाद सैंड में दब गया, ढूंढने पर भी नहीं मिला, इनका ट्रिप खराब हो गया। वो वैसे बहुत एहतियात के साथ इस दौरान रहना पड़ता है, समुंदर कई बार आपके साथ अटखेलियां करते करते कुछ ऐसा कर जाता है कि आपने उम्मीद भी नहीं की होती है। एक और श्रोता ने बताया कि भोपाल में आज सुबह से ही बादल और हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है, मौसम बहुत सुहाना है, कभी बरसात के मौसम में आप यहाँ आए तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। क्या बात है, हम दुआ करेंगे कि हम जरूर आए। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि सूरत में बारिश हो गई, कल रात 10:30 बजे के बाद शुरू हुई, सुबह 10 बजे तक जारी थी, लेकिन मैं राजस्थान में हूं, अभी जमकर बारिश नहीं हुई। एक और श्रोता ने अंडमान निकोबार जाते हुए बे ऑफ बंगाल समंदर हवाई जहाज से 2.5 घंटे का सफर पूरा किया, ये बताया है, नीचे देखो तो नीला समंदर था, मन में डर लग रहा था लेकिन थ्रिल भी लग रहा था। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप लोग मुंबई में पानी की बारिश से भीग रहे हैं, सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ बनारस में भी पानी से भीग रहे हैं लेकिन सेल्फ सर्विस पसीने से, दुआ कीजिए जी। बिल्कुल, हम तो हाथ जोड़कर दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से ये बादल पहुंचे। मेघदूतों को के बारे में आपने सुना है ना, हमने मेघदूत से कह दिया है कि जल्द से जल्द हमारे सभी साथियों तक पहुंचे। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश कर्नाटक और गोवा के समुद्र तटों को छोड़कर शेष सभी समुद्र तटों पर हो आए हैं, यहां तक कि गंगा सागर भी हो आए हैं, क्या बात है। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि अभी इन्होंने वृंदावन की यात्रा की और यमुना की सैर की, सागर के साथ पूरा भारत देखा, दादर की चौपाटी याद आती है। अच्छा, वैसे समुद्र जो है वो कई जगह बड़ा रिझाता है और कई जगह चेतावनी भी देता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद स्मारक पर तेज हवाओं का सामना करना पड़ा था। और एक और श्रोता ने बताया कि हमारे शहर कटक से पूरी नजदीक होने के कारण अक्सर जब मूड किया चल दिए समंदर की सैर को, क्या बात है। और अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गीत को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस नायिका पर फिल्माया गया है।

हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हेर आई शब्द का मतलब बुंदेलखंडी में ढूंढ आई, वैसे हेराई यहाँ पर प्रयोग हुआ है खो आई। और हमारे श्रोताओं ने तुरंत जवाब दिया कि अभिमान फिल्म का गाना नायिका जया भादुड़ी, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मजरू दादा की रचना, सचिन दा का संगीत, ऐसा हमारे एक और साथी बता रहे हैं। और मुंबई में अरब सागर पर बना हुआ सीलिंग देखने जाना है एक श्रोता की ये ख्वाहिश है, और ये इनकी ये ख्वाहिश जल्दी से जल्दी पूरी हो, हम तो यही दुआ करेंगे। एक श्रोता ने बताया है कि हम लोग समंदर के किनारे हमने काम भी किया है और अच्छा घूमे भी हैं। एक बार नीलोफर तूफान भी आया था, दो बार रहा, दोनों बार तूफान था, एक तीन चार लगातार लाइट भी नहीं थी, फिर भी आज भी किनारे रहने की बहुत इच्छुक हूँ। एक और श्रोता ने एक दोहा साझा किया है समुद्र तट के वर्णन के बारे में, रामचरितमानस का दोहा है। बांध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारीस, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। समुद्र के ये 10 नाम हैं जो वाकई बड़ी खूबसूरती से तुलसीदास जी ने पिरोए हैं इस दोहे में। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि बदलते मौसम में जब रिमझिम की बूंदें बरसती हैं तो रेत पर लिखे वो अधूरे नाम भी भीग जाते हैं, लेकिन जहां समंदर की लहरें इन पथरीली चट्टानों से टकराती हैं वहां आज भी दो दिल एक ही ताल पर धड़कते हैं। मानो कह रही हूं कि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते। एक और श्रोता ने कहा है कि एक सुंदर स्वप्निल काव्य शिल्प यानी आज की इबारत, समुद्र की लहरों पर जो बिखरा रही है रिमझिम की दौलत, क्या बात है। कल कल फेनिल सागर लहरें किनारे को जो छुए, धड़कते प्रेमी दो दिलों पर प्रणय रस वो छिटकाएं, आते जाते मधुर सुरीले प्रेम गीत वो गुनगुनाएं। और कुछ गाने भी इन्होंने साझा किए हैं। और एक और श्रोता ने कहा है कि सागर के अनंत विस्तार में उठती गिरती ये लहरें कभी शांत कभी उग्र, जैसे जिंदगी की ही कोई अनकही दास्तान कहें। कुछ दूर क्षितिज में उठकर किनारों को छूकर ये बिखर जाती हैं, हार नहीं मानती, बस एक बार एक नया हौसला लेकर आती हैं। कभी थपेड़ों से चुभती हैं तो कभी मखमली स्पर्श सी हो जाती हैं। लहरें जिंदगी के सफर में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। हर लहर हमें ये बताती है कि गिरना तो बस उठने की तैयारी है, ठहरना नहीं, निरंतर बहते जाना।

लता जी और भूपेंद्र सिंह, ये हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है। फिल्म किनारा बहुत गंभीर फिल्म और बहुत सारे श्रोताओं ने जिक्र किया है। लता दीदी बिल्कुल सही, इनकी आवाज़ ही पहचान है। और अभिमान फिल्म के गाने के लिए भी जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, एसडी बर्मन का जिक्र हुआ है। संदेश बहुत सारे हैं और मुझे लगता है कि मुझे सारे संदेश कैसे पढ़ने होंगे। सागर के अनंत विस्तार में उठती गिरती ये लहरें, कभी शांत कभी उग्र, जैसे जिंदगी की ही कोई अनकही दास्तान कहें, ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक और श्रोता ने कहा है कि आज दरिया समंदर नदियों की उनके अविरत बहती लहरों का जिक्र होगा, बिना भीगे मन को प्रसन्न करने वाली लहरों का वो अनहद संगीत शोरगुल में भी कर्णप्रिय लगता है। मैं घंटों तक समंदर के किनारों से चलता हुआ लहरों का आनंद लेता हूँ, थकान मिट जाती है, शाम को ढलते हुए सूरज की किरणों का दृश्य मनोहर होता है। और इन्होंने कुछ गीत भी लिखे हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि सागर परम चेतना है जिसमें बहुत गंभीर स्थायित्व और गहराई है और उसकी गहराई ज्ञान का प्रतीक है। लहरें चंचलता, भाव और उमंग को दर्शाती हैं जो कुछ कुछ अहंकार का रूप लगती हैं। मानो ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने ही सागर का निर्माण किया है, यथार्थ में तो वो सागर का अंश मात्र ही हैं। काफी गहरा संदेश है ये। और अब ये गीत सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के मित्र की भूमिका किन्होंने निभाई है।

हमारे श्रोताओं ने कहा है, जवाब बिल्कुल सही दिया है। अमिताभ बच्चन के मित्र हैं अमजद खान, किशन और बिशन। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि कॉलेज काल की ये फिल्म है। एक और श्रोता ने कहा है कि किशन चाचा के अमजद खान ने ये गीत गाना, याराना के संगीत राजेश रोशन का संगीत, इन्होंने ये लिखा है। और एक और श्रोता ने अमजद खान उर्फ गब्बर सिंह को याद किया है। एक संदेश है कि आज सोशल मीडिया दिवस है। सोशल मीडिया ऐसा मंच जहां व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से विचार रख सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। हमें चलिए आपके विचारों के साथ हमने आज का ये कार्यक्रम का ये सफर तय किया, सुरीला सफर। और अब इस कार्यक्रम को यहीं पर दे रहे हैं विराम, तो दीजिए राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

0: शौक, शौक बड़ी चीज होती है ना। जो मन करे वो कर लेना, क्या यही शौक है? नहीं, जो मन को अच्छा लगे वही कर लेना, ये शौक है? ये भी गलत है। सही तो तब है जब हम वो काम करें जिससे हमारे मन को खुशी मिले और करते करते मन में आह्लाद यानी बहुत सारी प्रसन्नता आ जाए, उसे ही कहेंगे शौक। अब शौक जो है उसका मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। शौक वो कार्य है जो अपनी खुशी, रुचि और मन की संतुष्टि के लिए करते हैं। अब कई लोग होते हैं जो चित्रकारी करते समय कहीं खो ही जाते हैं। कई बार आवाज देने के बाद ही वो उस ओर ध्यान देते हैं। कई बार कोई खेल खेल रहा होता है, उसका ध्यान ही नहीं होता। कोई गाना गा रहा होता है, उसमें ही खो जाता है। और कोई तो किताबें पढ़ते पढ़ते एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। नृत्य करने वाला अपने जीवन की सारी परेशानियों से मुक्त हो जाता है। और बागवानी करते करते तो कोई फूलों के साथ हंसना और बोलना शुरू कर देता है। शौक जीवन को आनंदमय, उत्साहपूर्ण बनाते हैं। और आज का जीवन कितना व्यस्त है, कितने तनावपूर्ण जीवन में जी रहे हैं, तो ऐसे में जो शौक है ना, वो आपको ताजगी देते हैं और शांति प्रदान करते हैं। और इसी शौक के साथ में हम अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं।
1: पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, नशा, शराब,
2: तो फिर
1: हमको तो नशा है।

जनाब आ है हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब हम तुम्हारी छोकरी से शादी कर

0: ये जो कहे मैं भी कहूँ कांटे को गुलाब। अरे हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब, ये हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब। आहे पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू ना शराब, हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब।
1: शौक कब आता है, कहाँ से आता है और कैसे आता है, ये प्रश्न सबके मन में होते हैं। कभी कोई कहता है कि पिछले जन्म में यही काम करते रहे होगे, इसीलिए तो इस जन्म में उस चीज का शौक है। पर ऐसा नहीं है, शौक अलग ही चीज है। बस वो काम करते करते मन को सुकून मिल जाए और जिस काम को भी कर रहे

हैं वो करते करते आत्मिक शांति मिल जाए, शायद इसे ही शौक कहेंगे। और ये जो शौक है इसके कई सारे फायदे हैं। मानसिक तनाव कम होता है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई काम करने का मन नहीं है, परंतु जबरन या आवश्यकता अनुसार उसे करना पड़ता है। और करते करते, लगातार उस कार्य को करते करते जब बोर हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो थोड़ी देर, किंचित समय के लिए ही अपने शौक को पूरा करना शायद मन को शांति ही दे दे, और फिर से नई ऊर्जा के साथ हम वो कार्य कर सकते हैं जो करने में हमें बहुत ज्यादा मन नहीं लग रहा है। या आज के जमाने में मोबाइल इंटरनेट पर रहने की जगह कोई व्यक्ति अपने शौक के काम करके अपना समय बचा सकता है और अच्छे कार्यों में लगा लेता है, और व्यक्तित्व का विकास भी होता है।

अब एक और बात मन में आती है कि यदि किसी व्यक्ति ने शौक को ही पेशा बना लिया, जैसे बचपन से कोई गाना गाना चाहता था और वो गायक बन गया, जैसे किसी को बातें करने का शौक था और वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताने लगा, या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे चित्रकारी का शौक था और उसने उसे ही अपना शौक, उस शौक को ही अपना पेशा बना लिया और निकल पड़ा इस दुनिया के उस युद्ध में जहां से उसे कमाना है पैसा भी और भोजन भी, तो इससे फायदा क्या होता है या नुकसान क्या होता है? तो हालांकि इस बात से तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि आपने अपने शौक को ही पेशा बना लिया तो और अधिक मेहनत लगन से आप काम करेंगे, उसमें नई नई आवश्यकताएं खोजेंगे, नए नए अनुसंधान करेंगे, काम में खुशी और संतोष मिलेगा, व्यक्ति अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर पाएगा, तनाव तो बढ़ेगा ही नहीं, सफलता और प्रसिद्धि भी मिल जाएगी और आर्थिक लाभ तो होगा ही, साथ में होगी मानसिक संतुष्टि भी। तो कभी अगर मौका मिले अपने शौक को अपना व्यापार या अपना व्यवसाय बनाने का तो जरूर बना लीजिए।

एक और प्रश्न आता है कि बच्चों को किस चीज का शौक है ये कैसे पता करें। बहुत आसान है, माता पिता ही अपने बच्चे का मूल्यांकन करके उसकी गतिविधियों को ध्यान से देखकर उसके बारे में पता कर सकते हैं। बच्चों को बच्चों की गतिविधियों से कैसे पहचाने, तो सबसे पहली चीज यह देखें कि खाली समय में वह क्या करना पसंद करता है, किस विषय पर अधिक प्रश्न आते हैं। कभी उसे खेल खिलाएं, कभी संगीत की ओर ले जाएं, कभी चित्रकारी कराएं, कभी नृत्य कराएं, जिसमें वो अच्छा है वही उसका शौक है। आज की त्रिवेणी में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा

0: सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में

0: वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी

0: सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि एफएटीएफ की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनते हैं महल फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: फिल्म तपस्या का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आरती मुखर्जी का गाया हुआ। एमजी हशमत के बोल थे और रविंद्र जैन का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मेरा साया फिल्म का ये सदाबहार नगमा। राजा मेहंदी अली खान के बोलों को संगीत से सवारा है मदन मोहन ने।

वासना फिल्म का ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, साहिल लुधियानवी के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति जब जब फूल खिले फिल्म से मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

इस गीत के साथ ही अब आज का सता पहार नगमे कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: सखी सहेली
1: सभी सखी सहेलियों और सखाओं को राजुल का नमस्कार और साथ में है सोनाली, आपको भी नमस्कार।
2: राजुल जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। क्या हाल चाल है राजुल जी?
1: बस बढ़िया है, आप सुनाइए कैसे हैं?
2: मैं भी बहुत मजे में हूँ। और ये जो बारिश है ना,
1: हाँ,
2: ये किसी छोटे नटखट बच्चे की तरह हो गई है। बीच में से झमाझम बरस जाती है और फिर चुपचाप से छुप जाती है, तो इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो हम फिर परेशान हो जाते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो फिर से झमाझम बारिश हो जाती है।
1: तो ये कहो ना कि दरअसल ये जो बारिश है वो आपको परेशान नहीं देख सकती, बस जैसे ही परेशान देखती है कि अरे सोनाली परेशान हो रही, तुरंत आ जाती है। वैसे एक बात बताएं कि हमारे वो मित्र जो कि हमसे दूर हैं, जहाँ पे अभी बारिश नहीं शुरू हुई है, उनके लिए ये चीज बड़ी ही सुन के उनको बहुत वो होता है कि यहाँ तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और बारिश तो हो नहीं रही है, तो उनको ये बात सुन के बड़ा ही अजीब सा लगता है। लेकिन भाई जहाँ बारिश हो रही है और जहाँ बारिश नहीं हो रही है, वहां पर भी बारिश शुरू हो जाए हम तो यही कहेंगे,
3: बस इंतजार करना जरूरी है क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मीठा होता है। और इसके साथ ही साथ एक बात ये है कि आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं ना, उसमें जो बातें हैं वो बिल्कुल रिमझिम की तरह बरसती हुई एकदम शांत कर देने वाली बातें हैं। जैसे कि हम आज बात करेंगे बुजुर्गों के अकेलेपन के बारे में।
3: अकेलापन जो है ना, ये एक ऐसी अवस्था है जो बहुत परेशान कर देती है, पर जो घर वाले हैं उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है कि उनके जीवन में सुकून के पल आए, तो उनसे मिलजुल करना बहुत जरूरी है, उन्हें अपने साथ शामिल करना बहुत जरूरी है। तो बुजुर्गों का अकेलापन ये एक विषय है। साथ ही जैसे मैंने बच्चों का जिक्र किया, तो बातें हल्की फुल्की जिसमें छोटे बच्चों की शरारतें, तो छोटे बच्चे जो इतने शरारती होते हैं, तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखे भी हैं, पर उन्होंने आमतौर पर बच्चे शरारती होते हैं इस बारे में लिखा है। पर आपके घर में भी अगर शरारती बच्चे हैं तो उन्होंने क्या शरारती की है? कभी कभी ऐसा था ना राजुल जी कि उन्होंने किसी कुर्सी में है ना अपना सिर फंसा लिया है,
1: हाँ,
3: या फिर उन्होंने जो सीढ़ी के बगल में जो ग्रिल लगी होती है उसमें अपना पैर फंसा लिया है, या फिर बहुत सारी कोल्ड क्रीम है वो सर में लगा ली है, लिपस्टिक मम्मी
1: एक, के। एक संदेश मैंने ऐसा पढ़ा था कि उसने खूब सारी कोल्ड क्रीम पोत ली थी।
3: तो ऐसी शरारतें होती है, कभी कभी हम परेशान भी हो जाते हैं।
1: अरे कुछ बच्चे तो वो जो रसोई के बर्तनों से खेलते हैं,
3: हाँ,
1: और उसके बाद पता चला कि बर्तन तो आप ढूंढ रहे हैं, उस समय चिमटा ढूंढ रहे हैं या कुछ ढूंढ रहे हैं, और वो पता चला खिलौने की बास्केट में पड़ा हुआ है।
3: और कभी कभी बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं जो हमें तकलीफ में ले जाते हैं, जैसे कि पैसा निगल लिया है,
1: हाँ,
3: सिक्का निगल लेते हैं। तो इस तरह की शरारतें आपके घर में क्या हुई है वो हमें लिख कर भेजिए। साथ ही उद्यमी महिला के बारे में हम जानकारी देते हैं हर मंगलवार को, तो आज हमने चुना है अदिति गुप्ता को। और साथ ही मुहावरों की दुनिया, इसमें पानी पानी होना,
1: ऊपर से पानी पानी हो रहा है आसमान, और हम पानी पानी होने की बात करेंगे जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। और आज हम छोटे बच्चों की शरारतों के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो मतलब कई बार स्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि उनकी शरारतों के सामने वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि हम पानी

0: पानी हो जाते,
1: माता पिता पानी पानी हो जाते। हाँ, यानी यूं कह लीजिए राजुल जी कि वो हमारी पोल खोल देते हैं,
0: पोल खोल देते हैं। सही बात है। वैसे ये सब जो बातें होती है ना, इनके बीच में अगर थोड़ा थोड़ा गीत भी चलता रहे
1: तो मजा आ जाता है,
0: मजा आ जाता है।
1: सुनते हैं गीत।
2: अरे अरे

0: भाई सोनाली अपनी सवारी तो चल दी है और चलते चलते पहुंच गई है वहां पर जहां पर हम उद्यमी महिला के बारे में बताते हैं।
1: यानी झारखंड पहुंच गए आप। तो झारखंड से है अदिति गुप्ता जो भारत की उन प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है जिन्होंने महामारी से जुड़ी हुई झिझक और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्हें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कहते हैं, महामारी कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, इस बारे में लोग खुलकर नहीं बात करते।

0: टैबू है ये एक, और इस बारे में ज्यादातर लोग खामोश रहना, एक जमाना था जब नहीं बताया जाता था, कहते भी नहीं थे। उन्होंने ही महिलाओं और किशोरियों के मासिक धर्म और स्वच्छता जागरूकता पर काम किया और इसे शिक्षा और संवाद का विषय बताया। मतलब ये शर्माने की, घबराने की, मुंह छिपाने की या सबसे कोने में बैठकर की बात नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर के प्रति जागृत रहने की, सचेत रहने की और इससे जुड़ी जितनी सतर्कताएं हैं उन्हें इस्तेमाल में लाने की चीज है, ये बताने वाली हैं अदिति गुप्ता। बाकी बहुत बड़ा काम है
1: और ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है ना। और महिलाओं को यानी बच्चियों को ये हम उस बारे में डरा देते हैं या कुछ बुरा बुरा कह देते हैं, बल्कि उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि जब पीरियड्स आते हैं तभी कोई महिला माँ बन सकती है। तो ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, बल्कि हम उसे कहते अभिशाप समझ बैठते हैं कि अरे ये क्या हमारे नसीब में है, पर उसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे अंदाज के साथ अगर हम बच्चियों को समझाएं तो ये बहुत वरदान साबित तो हो ही चुका है, तो उसे हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं
0: और शरीर की एक आवश्यक क्रिया है
1: जी। तो अदिति गुप्ता का जन्म झारखंड में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि कई लड़कियां मासिक धर्म को लेकर सही जानकारी के अभाव और सामाजिक संकोच का सामना करती है और इस विषय पर घर और समाज में खुलकर बात नहीं की जाती, जिसके कारण कई सारी लड़कियों में डर और भ्रम पैदा हो जाता था।
0: और अपने जीवन के इन्हीं अनुभवों से अदिति को ये समझ में आया कि केवल चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि सही जानकारी से और इस बारे में बात करके, इस बारे में जानकारी पहुंचा कर ही बदलाव लाया जा सकता है। वैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से डिजाइन की शिक्षा प्राप्त की,
1: लेकिन उनकी रुचि केवल करियर बनाने तक सीमित नहीं रही राजुल जी, बल्कि वे समाज की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका समाधान खोजने में विश्वास रखती थी और इसी के मद्देनजर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया नामक कॉमिक बुक की शुरुआत की।
0: अपने पति तुरहिन पाल के साथ मिलकर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य था कि लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में सरल भाषा में वैज्ञानिक और सही जानकारी मिल सके।
1: अब सरल भाषा बच्चों के लिए यानी छोटी बच्चियों के लिए कॉमिक से बढ़कर क्या
0: होगी, बहुत अच्छी पहल है
1: जी। तो उन्होंने कॉमिक बुक, चित्रों और आसान तरीके से समझाने वाली सामग्री का उपयोग किया ताकि किशोरियां बिना डर बिना झिझक के इस विषय को समझ सके।
0: और इनके प्रयासों से कई परिवारों और स्कूलों में इस विषय पर बातचीत को बढ़ावा मिला। अदिति ने यह संदेश दिया कि स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जानकारी छिपाने के बजाय जागरूकता फैलानी चाहिए
1: जी। और उनका काम केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि किसी भी समस्या को समझने और हल करने के लिए संवाद का होना कितना जरूरी है।
0: बिल्कुल। और अदिति गुप्ता को उनके सामाजिक कार्यों के लिए कई मंचों पर सम्मान मिला। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों में अंडर 30 की सूची में स्थान मिला और वो बीबीसी की प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल रही।
1: और अदिति गुप्ता का जीवन बताता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसी बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटी सी समस्या को गंभीरता से समझकर सही दिशा में प्रयास करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और अदिति गुप्ता ने एक ऐसे विषय पर आवाज उठाई है राजुल जी, जिस पर लोग चुप रहते थे, उनकी सोच ने चुप्पी को जागरूकता में बदल दिया।
0: और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जागरूकता आई तो कम से कम बच्चियों में ये एक विश्वास आया, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी भी ये होता है कि इन दिनों ये छूना नहीं है या दूर रहना है, या बहुत सारे घरों में अगर बेटे भी हैं तो ये बताया जाता है कि अभी ये गंदी हो गई है
1: या चिड़िया ने छू लिया।
0: हाँ, तो इस तरह की बातें सुन के बेटों के मन में पहले से बात आती है कि ये गंदी होती है, ये गंदी, मैं गंदा नहीं होता हूँ,
1: ये गंदी।
0: तो एक चीज वो जो वैषम्य पैदा होता है
1: बेटे और,
0: हाँ, वो भी एक उन्होंने दूर करने की कोशिश की है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस विषय पर बातचीत होने लगी है। अब देखो ना, हमारे कार्यक्रम में एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है,
1: तो लेते हैं ब्रेक।

0: तो सोनाली, पूरा हुआ अंतराल और हम लौट आए हैं। विषय हम लोग बहुत गंभीर था जिस पर बात कर रहे थे
1: जी,
0: मासिक धर्म की बात कर रहे थे। तो आप कुछ कह रही थी इसके बारे में।
1: जी राजुल जी, ऐसा है ना कि इसके पीछे भी, जैसे पुराने जमाने में आपने जैसे कहा कि महिलाओं को दूर बिठाया जाता था या फिर घर में छूना नहीं है, तो उस जमाने में काम भी महिलाएं बहुत भारी भरकम किया करती थी। जैसे कुएं से पानी निकाल कर लाना है, फिर चक्की से आटा पीसना है, फिर खेतों में काम करना है, तो उस वक्त महिलाओं को थोड़ा आराम की जरूरत होती थी, इसलिए उस जमाने में इस तरह से उन्हें अलग बिठाया जाता था। पर अब हम हल्का फुल्का काम करने लग गए, फिर भी हम उन्हीं बातों को, उन्हीं रूढ़ी वादी बातों को लेकर चले हैं। और तो और स्वच्छता के प्रति भी हम जागरूक नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन दिनों में नहाना नहीं है, पर कितनी गलत बात है। उस वक्त स्वच्छता का, हाइजीन का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हमें रोज नहाना चाहिए, स्वच्छता का कपड़े बदलना चाहिए और जो पैड्स वगैरह उसे भी समय समय पर बदलना।
0: और अब तो इसके विषय में सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बहुत पहल हो रही है, मुफ्त में पैड्स गांव में दिए जाते हैं। और एक बात और है, ये भी कहा जाता है, जब कई बार कोसते भी देखा है, पढ़े लिखे बच्चियों को भी इस बात को कोसते हुए देखा है कि अरे ये क्या है, तो ये वो समय होता है जब कहा जाता है कि स्त्री सबसे ज्यादा उसके अंदर जो शक्ति कहा जाता है ना, तो शक्ति उसके अंदर सबसे ज्यादा इस समय होती है। और इस बारे में कई, अगर हम गौर से देखें तो बहुत सारे हमें उदाहरण और कई सारी ऐसी रीतियां भी मिल जाएंगी जो इस बात को बिल्कुल
1: प्रूव करती
0: प्रमाणित करती है कि भाई ये बहुत खास समय होता है। तो इस खास समय को खास तरीके से बिताने के लिए अलग बिठाया जाता था, ना कि इसलिए क्योंकि गंदे हो जाते हैं। तो गंदगी की यहाँ पर सिर्फ तभी तक रहती है जब तक हम नहाते नहीं है या कुछ भी दूसरी तरह की गंदगी से अपने आप को साफ करने की कोशिश करते हैं, तब गंदगी नहीं रहती। जब हमें कहीं पर आराम करने के लिए छोड़ा जाता है या अच्छे से खाने के लिए कहा जाता है, बहुत जगह ये भी होता है।
1: उस वक्त हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बहुत आराम करना चाहिए। इस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं अपने घर वाली, जो घर की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्हें इस तरह से आराम दिया जा सकता है, ना कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाए और उन्हें इस तरह से व्यवहार किया जाए कि अरे दूर रहो, छुओ ना, बल्कि उन्हें बहुत आराम और बहुत प्यार से उस वक्त अगर संभाले तो ये दिन भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं।
0: और साथ ही साथ अगर हम गीत सुनते हुए ऐसी गंभीर विषयों पर बातचीत करते हैं
1: तो कार्यक्रम में मजा आ जाएगा।

0: चांद कहाँ खोया है ये ढूंढने भी कुछ बच्चे बहुत जिद करते हैं जब अमावस्या होती है या जिन रातों में चांद नहीं निकलता। तो कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा था तो वो ये बात कहता था कि आप तो कहते हो कि रोज चांद निकलता है, रोज सूरज और चांद तो रोज आते हैं, देखो तुम्हें भी जैसे हम लोग बच्चों को बताने के लिए कहते थे ना कि देखो भाई सूरज चांद रोज समय पे आ जाते हैं, तुम्हें भी सब काम
1: जाया करो ट्यूशन स्कूल।
0: तो उसने कहा कहाँ आते, देखिए चांद तो आ जाया ही नहीं है। तो भाई हमने कहा ये हाजिर जवाबी बच्चों की तो बिल्कुल पानी पानी कर देती है।
1: ये जो बच्चे होते हैं हमें बहुत बार शर्मसार कर जाते हैं। आज बच्चों की शरारतों के बारे में हम बातें कर रहे हैं, बातें हल्की फुल्की में। तो इसमें एक सखी ने हमारे लिखा है कि मेरे बेटे ने 4 साल का था तब एक कप में मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, केरोसिन तेल रखा था, वहां पहुंच गया उसके पास और उसने केरोसिन तेल पी लिया पानी समझ। फिर उसको हम लोग को अस्पताल लेकर भागना पड़ा, 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, फिर ठीक हो गया। यानी देखिए कितने परेशान हो जाते हैं ना माता पिता दादा दादी जब इस तरह से बच्चे ये कर देते हैं। और एक लिखते हैं कि छोटे बच्चों की शरारतें, छोटे बच्चों की शरण में हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, उनकी शरारती जब याद आती है तो आप ही चेहरा खिल उठता है। मेरा नाती 2 साल का है, वो सारी छोटी छोटी चीजें छोटी जगह पर छिपा देता है, उसे याद भी रहता है कि कौन सी चीज उसने कहाँ रखी है। पूछो तो बताता है कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझसे कहता है कि नानी मैं पुलिस बोल रहा हूँ, प्रिंस नाम है, और मुझे डांट लगाओगे तो आपको जेल में बंद कर दूंगा। मैं कहती हूँ तुम नानी कहकर किसे बुलाओगे, तो कहता है मैं पहले दरवाजा खोलूंगा फिर आपको नानी कहकर बुलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। बहुत ही लटके झटके से बोलता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर भरारा भरा रहता है। हमें सुन के ही इतनी हंसी आ रही है।
0: हाँ, तो मतलब इन्हें तो डांटना भी मुश्किल हो जाता होगा। एक संदेश में बताया है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले दंपति का बेटा अंशु भी बहुत शरारती है, अभी 3 वर्ष का है, उसने अभी साइकिल चलाना सीखा है और उसके दादाजी ने छोटी सी सुंदर साइकिल खरीद कर दी है। कुछ दिन पूर्व वो अपने मम्मी पापा के साथ नाना नानी के घर गया था तो अपनी साइकिल की चाबी अपनी दादी के तकिए के नीचे छुपा कर गया था और दादी को पोल कर गया था कि दादी ध्यान रखिएगा कहीं दादाजी उसकी साइकिल लेकर ऑफिस न चले जाए।
1: कितनी मासूमियत है कि उन्हें ऐसा लगा कि इतने लंबे जोड़े इतने ऊंचे दादाजी इतनी छोटी सी ट्राइसिकल कैसे चलाएंगे।
0: और कितना ये भाव भी होता है ना बच्चों में कि ये मेरी चीज है, ये पता नहीं अभी ये ले लेंगे
1: नहीं, और उन्हें ऐसा लगता है कि पापा के पास में बाइक है या कार है या फिर मम्मी के पास तो पूरा किचन है, उनकी सारी चीजें मम्मी की, तो ये मेरी साइकिल है या मेरे खिलौने ये मेरे हैं।
0: बिल्कुल।
1: एक साथी ने लिखा है कि मेरा बेटा जब छोटा था तो पूरा दिन उधम मचा कर रखता था, छोटे बच्चों की शरारतें घर आंगन में हंसी खुशियां बिखेर देती है और उनकी मासूम हरकतें नटखट बातें और भोली मुस्कान सभी का मन मोह लेती है। कभी वो खिलौने बिखेर देते हैं तो कभी नई नई बातें सीख कर सबको चौंका देते हैं, उनकी शरारतों में मासूमियत छिपी होती है, इसलिए उन्हें प्यार और सही मार्गदर्शन के साथ समझना चाहिए।
0: और एक हमारे साथी ने एक बड़ी खतरनाक समस्या की तरफ इशारा किया है कि भाई आजकल तो छोटे बच्चों में भी इंटरनेट ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और इसके चलते अपनों के आज्ञाओं का उल्लंघन सार्वजनिक रूप से ही देखा जा रहा है और उनके शैतानी भरी शरारत से ना ही उनकी आंखों पर ही चश्मे चढ़े हुए हैं और हम लोग अपने अपने आंखों पर चश्मे चढ़ाए हुए हैं। जाने कैसा ये आश्चर्य है जो उनके द्वारा किए जाने वाली शरारतें ही अब स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। मतलब वो वही शरारतें कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं।

0: हैं। वही एक साथी लिखते हैं कि बच्चों की शरारत बेहद पसंद आती है, तो कभी हंसी भी आ जाती है, तो कभी कभी नाक में दम भी हो जाता है, तो कभी माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। हमारे घर में कई छोटे बच्चे थे, एक बार वीसीआर के अंदर उन लोगों ने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए। अब वीसीआर चलना बंद हो गया। हाँ। जब मैकेनिक को बुलाया तो उसने इतने सारे कागज निकाले, पूछने पर किसी ने भी नहीं बताया कि किसने काम किया था।
1: सच में ये शरारतें तो खत्म होने का मतलब
0: नाम नहीं लेती
1: और लगता है कि चलती भी रहे, बाद में याद करके कितनी हंसी आती है। हाँ। अच्छा, अब एक मुस्कुराहट और सज जाएगी अगर हम एक गीत सुन लें।
0: सुनते हैं गीत। ओ मेरी, ओ मेरी।

0: सोनाली, ब्रेक पूरा हुआ और हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद.
1: कार्यक्रम है सखी सहेली. और एक साथी ने लिखा है कि बचपन में मैंने भी एक शरारत की थी. 1960 के आसपास हमारे घर बिजली का कनेक्शन आया था और उन दिनों कुतूहल वश वायर से जुड़े होल्डर में लैंप लगाकर वायर को सीधा प्लग में डालकर स्विच ऑन करके जो स्पार्क हुआ उससे मेरी उंगली को झटका लगा. पर चीखने के बाद मेरे बड़े भैया ने स्विच ऑफ कर मुझे छुड़ा तो लिया, लेकिन उंगली पर स्पार्क के निशान के साथ काली पड़ गई थी उंगली, और ऊपर से डांट के साथ मार भी पड़ी थी. वो भी झटका अलग से लगा था. साथ ही एक साथी ने लिखा है कि खुद को ट्रंक के अंदर, वुलन कपड़े का जो ट्रंक होता है उसमें सारे कपड़े निकाले और खुद को ट्रंक के अंदर बंद कर
0: दिया. ये बहुत खतरनाक शरारत होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि कई बार इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, चोट भी बहुत गहरी लग सकती है. एक बड़ी मासूम सी शरारत हमारे एक और साथी ने साझा की है कि सर्दियों के दिन में हमारे घर में परिवार और बच्चे आए थे. वो देख रही थी कि सभी बॉडी लोशन और क्रीम का प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं. उसने अपने टेडी बियर को पूरा कोल्ड क्रीम निकाल कर टेडी लगा दिया, और बहुत बहुत ज्यादा लगा देने पर उसे संभाला नहीं तो उसने उसे बेड के नीचे छुपा दिया. घर में महक आ रही थी और जहाँ फर्श पर भी गिरा तो पैर में चिपक रहा था. तो बच्ची की बड़ी बहन ने बताया कि इसने कुछ किया है, तो पूरे बेड पर उसने फैला दिया था. जब उसकी माँ ने डांटा तो बोली कि टेडी को ठंड लग रही थी तो इसलिए उसे मालिश कर रही थी, जैसे नानी मुझे करती है तो मैं टेडी को कर रही थी. तो फिर उसे समझाया गया कि भाई तुम डैडी को मत करो, तुम बच्ची हो, तुम्हारी मालिश होगी, तुम नाना नानी की कर दिया.
1: कितना मासूमियत भरा सवाल था और जवाब भी बड़ा ही मासूमियत भरा था. एक ने लिखा है कि एक बच्चा बहुत देर से एक घर की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कि उसकी मदद कर दे. हमने बेल बजा दिया, फिर बच्चों को वॉशरूम जाना था तो बोला अंकल अब भागो, वो घर का मालिक आ जाएगा तो हमें बहुत डांट देगा. यानी उन्हें ऐसा लगा कि किसी उसे जाना है अंदर, तो बच्चा तो शरारत कर रहा था. उसके बाद में एक ने लिखा है कि मेरे बहन के छोटे बेटे ने उनके घर के बोरिंग यानी बोरवेल में पाना, पंचेश और ना जाने सारे औजार उसमें डाल दिए थे और सारे नए खरीदने पड़े.
0: क्या क्या तो गजब गजब शरारतें हैं. और बच्चों की ये जो मासूम शरारतें होती हैं इन पर बिगड़ते भी हैं हम कई बार, लेकिन अगर इन्हें अगर इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उन्हें ये शरारत करने देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शरारतों से उनके दिमाग का भी विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है, और वो मिलजुल कर या किसी कठिन समय में अपने आप को कैसे निकालना है ये भी सीखते हैं. तो बस नजर रखनी पड़ती है बच्चों पे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एक बच्चा था, नया खिलौना जैसे ही उसको मिला तो वो तुरंत उसका सब ऊर्जा बराबर कर देता था. उसको बहुत शौक था मोटर कार का, हेलीकॉप्टर का, तो बस वो देखते ही तुरंत उसको चाहिए पेचकस, पेचकस से उसने तुरंत खोला वोला और सब अलग. तो भाई लोग कहते थे कि क्या करना है तुम्हें, तो कहता था मैं कोशिश कर रहा हूँ मैकेनिक बनने की, और बाद में आगे चल के वो वास्तव में
1: बहुत बड़ा इंजीनियर
0: बना. तो भाई ये कुछ
1: यानी उन्हें रोकी टोकी मत कि आपको लगता है कि इतना महंगा खिलौना खरीदा और इसने तो दूसरे दिन तोड़ दिया, पर क्या पता उसकी जो क्रिएटिविटी है उससे उसे एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना दे. साथ ही जो बच्चे ना क्रेयॉन होते ना उससे दीवारें गंदी करते हैं, तो बहुत सारे लोग डांटते हैं पर उन्हें डांटे ना, एक छोटा सा कोना उन्हें दे दे. क्योंकि क्या होता है ना, जो क्रेयॉन उंगलियों में पकड़ते तो उनके उंगलियों के मसल मजबूत होते हैं, तो उन्हें गोदने दीजिए. ऐसा नहीं है कि पूरा ही घर गंदा मत करने दीजिए, पर उन्हें कह दीजिए कि ये जो है ना ये कोना तुम्हारा है, जहाँ जो या फिर व्हाइट बोर्ड आते हैं, ब्लैक बोर्ड आते हैं
0: वो लगा सकते हैं,
1: वो लगा सकते हैं, या फिर ऐसे
0: कागज लगा दे. एक जो बड़े बड़े चार्ट पेपर्स आते हैं वो लगा दे और कहें कभी कभी कोई कोई आए तो दिखाए भी कि देखिए भाई ये इसने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया. बच्चों की अगर इस तरह से तारीफ भी करते रहे कि गोदने वाले बच्चे, ये गोदने वाली शरारतें बहुत होती है,
1: बहुत होती है,
0: तो बस ये कह दिया जाए कि भाई देखो तो कितने सुंदर

0: सुंदर इसने कलर्स देखा, आपने कैसा इस्तेमाल किया है, तो बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ बड़ा काम किया, और अगली बार जब वो गोदना शुरू करता है तो उसका ध्यान उन रंगों पर भी जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर की वो रचनात्मकता विकसित हो रही है।
1: पर एक बात और है कि अगर उसने कुछ गलत शरारत की है, जैसे कि कैंची से काट दिया है, खुद के बाल ही काट देते हैं, कभी कभी कभी तो पलकों के बाल भी काटने से नहीं चूकते हैं बच्चे,
0: या छोटे भाई बहनों के काट देते हैं,
1: तो उसकी ना बहुत बार बार लोगों को बता बता के तारीफ ना करे, तो उन्हें लगता है मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। तब उन्हें समझाए कि भाई अगर ये आंख में लग जाती तो आंख हमेशा के लिए चली जाती। तो ये इन बातों का हमें बस ध्यान रखना चाहिए।
0: मतलब ऐसे चुभने वाली चीजें बच्चों की पहुंच से दूर ही रहे तो अच्छा है, नरम नरम से खेल, अच्छे अच्छे खिलौने, ये सब देकर बच्चों का बचपन ऐसा ही बना रहे जैसे कि
1: गाने में है।

सोनाली देखिए, शरारतों की बात चल रही है तो कैसे कैसे कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। हमारी एक सखी बता रही है कि मेरा बेटा जब 6 साल का था तो एक दिन अकेले खेलते हुए किचन के स्लैब के नीचे छुप गया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसके दादा दादी उसको ढूंढने लगे तो वो सोने के कारण रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो घबरा गए। मैं दूसरे शहर में थी, मुझे पता चला तो मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में चेक किया तो पता लगा जनाब कहाँ छुपे थे।

0: मैंने तुरंत उसके दादाजी को कॉल किया, जब वो वहां गए तो पता चला कि सो रहा है आराम से, खैर जान में जान आई।
1: यानी दादाजी नाना जी रहे ना। तो उसका भी कितना फायदा है ना।
0: बिल्कुल, मतलब बच्चों की शरारतों के बीच में एक अंकुश भी रहता है, वैसे दादा दादी को भी अच्छा लगता है, अकेलापन नहीं लगता।
1: यानी परिवार में पुल का काम करते हैं ना, ब्रिज का काम करते हैं। बिल्कुल, कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दादा दादी ब्रिज का काम करते कि उनकी बदौलत पूरा परिवार जुड़ा रहता है।
0: मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है कहा भी जाता है, तो भाई वो बच्चों को प्यार भी देते हैं, भरपूर प्यार भी देते हैं, और जो अनुभव होता है ना उनका अपने बच्चों को पालकर, वो भी काम आता है,
1: बहुत काम आता है। पर अभी परिस्थितियां थोड़ी अलग होने लगती है। एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी के साथ हम बहुत समय बिताते थे, अभी बच्चों में शायद वैसा समय नहीं है और न ही उतने शौक है उनसे कहानी सुनने के, किस्से सुनने के। सब कुछ तो उनको फोन में और टीवी में मिल जाता है, दादा दादी के साथ समय बिताना पसंद भी नहीं आता उन्हें। इसका नतीजा ये होता है कि अधिकतर बुजुर्ग अकेलेपन में ही समय बिताते हैं, जबकि बुजुर्ग के पास तो सजीव अनुभव और ज्ञान होता है, संस्कार देने की काबिलियत होती है और सोशल मीडिया अब टीवी से जुड़ गए हैं। उस जमाने में कहां था सोशल मीडिया और टीवी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये एक थोड़ी सी समस्या है, परेशानी है, ये
0: परेशानी है। और इस बारे में हमारी एक सखी लिख रही है कि आजकल के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे घर में ये समस्या नहीं है, हमारा संयुक्त परिवार है, 13-14 लोग अभी साथ में हैं, तो बड़े बुजुर्गों को अकेलेपन की भावना नहीं आती है, चहल पहल हमेशा रहती है। मुझे लगता है कि एकल परिवार भी एक कारण है अकेलेपन का,
1: बहुत ही बड़ा कारण है अकेलेपन का एकल परिवार। और सचमुच ना, पुराने जमाने की बात की जाए ना राजुल जी, तो उस वक्त प्राइवेसी नाम की ऐसी चीज ही नहीं हुआ करती थी जो आजकल लोगों को चाहिए। लोगों को बस लगता है कि हमें बस हमारा स्पेशल यानी बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम उनका हो, उसमें किसी को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बच्चों को भी सब प्राइवेसी की जरूरत है। पर पुराने जमाने में सब एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे, तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर। पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नजर आ रही है। एक साथ लिखते हैं कि बुजुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं, उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए, तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता, हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं, सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
1: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण उनमें डिप्रेशन और याददाश्त कमजोर होने की जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। इसके उनके इस खालीपन को दूर करने के लिए बातचीत, जुड़ाव और नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी है। दो प्यार के बोल, सुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या, इस उम्र में उनके अकेलापन दूर करने के लिए मेल मिलाप बहुत जरूरी है, जो आजकल बेहद कम हो गया है।
0: और ये एक हमारे श्रोता ने अंग्रेजी में संदेश भेजा है, आई एम अ सीनियर सिटीजन रिटायर्ड फ्रॉम बैंक एंड स्टार्टेड अ न्यू जर्नी इन रेडियो एज आरजे ऑन कम्युनिटी रेडियो, इंजॉइंग अ लॉट, आई लव रेडियो सिंस माई चाइल्ड हुड, विविध भारती साथ हो तो बोर होने का सवाल ही नहीं है।
1: क्या बात है
0: भाई, इस तारीफ के लिए शुक्रिया, विविध भारती के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और एक बात और इनके संदेश से पता लगती है कि अगर बुजुर्ग कोई अपना शौक डेवलप कर लेते हैं उस समय भी, ये सोचकर नहीं कि ये जिंदगी का अवसान है, बल्कि ये एक नया पड़ाव है, एक नई यात्रा है
1: जी।
0: और अगर वो एक कोई शौक अपना शुरू कर लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से उन्हें अकेलापन कम महसूस होगा। ये तो सही बात है। एक हमारे पढ़ रही थी तो भी एक संदेश में शायद ये भी कहा गया है कि आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता। सही बात है, समय नहीं होता, बड़े जब होने लगते हैं तो कम समय रहता
1: है। पर अगर ऐसा है ना कि बच्चे नहीं बात कर रहे हैं तो बुजुर्ग खुद भी जाके बोल सकते हैं कि कैसे हो बेटा, क्या हाल चाल है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। नहीं तो ऐसा लगता ना कि अरे वो बात नहीं कर रहे, वो नहीं जा रहे, तो पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए।
0: दोनों तरफ से होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि बच्चे बहुत ज्यादा व्यस्त हैं तो

0: अगर बच्चे को उस समय उसको जो चाहिए, मान लीजिए कि बहुत व्यस्त है, पढ़ाई कर रहा है या किसी प्रोजेक्ट में अपने बिजी है, और आप सिर्फ इतनी सहायता कर रहे हैं कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाने में उसको कुछ काटने की जरूरत है, आप काट कर उसे वो पकड़ा देते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है।
1: उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है,
0: और हमें गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है।
1: सुनते हैं गीत।

0: भाई देखो, हमारे एक श्रोता ने अपनी दिनचर्या साझा करके बताया है कि सुबह पूजा पाठ, फिर शिवालय, फिर भोजन, फिर 1 बजे सुरीला सफर, फिर सखी सहेली, फिर 5 बजे फिर आराम, और फिर 5 बजे 5 किलोमीटर वॉकिंग, फिर भोजन, फिर टीवी प्रोग्राम, फिर 5 या 6 घंटे नींद। यही है 70 साल के बुजुर्ग की दिनचर्या।
1: क्या बात है, ये तो किसी 17 साल के जो है ना युवा को भी शर्म आएगी, इतनी परफेक्ट दिनचर्या है आपकी।
0: सही बात है।
1: वैसे पानी पानी मुहावरे का मतलब है शर्म से पानी पानी होना। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पानी पानी होना, इस मुहावरे से एक बात याद आ गई। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसे लेकर मैं एक परिचित के घर गई। बातचीत के बाद मेरी परिचित चाय बनाने के लिए उठी तो मैंने बोल दिया मैं चाय नहीं पीती, और मेरे बेटे से पूछा दूध पियोगे, तब भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता था। लेकिन जैसे ही मैंने मना किया, मेरा बेटा तुरंत बोल पड़ा कि मुझे खूब गर्म दूध दीजिएगा। और आंटी सुनिए ना, मेरी मम्मा चाय नहीं कॉफी पीती है। इसलिए मम्मा के लिए कॉफी बना दीजिए। मुझे उस समय बहुत शर्म आई और शर्म से पानी पानी हो गई।
0: ये सही बात है, बच्चे पोल खोल देते हैं,
1: पोल खोल।
0: एक बच्चे ने कहा कि जब उसके पिताजी ने कहा कि भाई हम घर पर नहीं है, जाओ क्या दो अंकल आए, क्या दो घर पे नहीं है, तो उसने जाके कहा, पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब मतलब

0: पिताजी
1: बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पानी पानी, वो झक मार के फिर बाहर निकले और मिले अपने मित्र से, क्योंकि बच्चे ने बता दिया था कि पिताजी ने कहा है कि हम घर पे नहीं है।
0: एक बार एक व्यक्ति थे, उनके मित्र आए थे, तो उन्हें अंदर से आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उनकी छोटी सी बेटी थी, तो अब क्या बात करें बच्चे से, तो उन्हें पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, पहले नाम पूछा क्या नाम है आपका, फिर आपके पापा क्या काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा तो घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं,
1: सब पोल खोल दी।
0: अंदर से पापा ने सुना, अरे ये मैं तो वो पानी पानी हो गए शर्म से।
1: अच्छा वो बच्चा भी बेचारा क्या करे, उसने काम का मतलब यही समझा कि हम, माँ कहती होगी कि हम काम कर रहे हैं, तो काम का मतलब झाड़ू लगाना, तो कभी कभी अगर पिताजी ने झाड़ू लगा भी दी तो उसने कह दिया कि ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, मतलब वो तो बड़ा ही कर रहा था।
0: और एक बार ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे लोग, तो छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो उसकी मम्मी बोले कि चलो टाइम हो रहा है हम घर जा रहे हैं, तो बोले नहीं नहीं मम्मी रुको रुको, अंदर से कप प्लेट की आवाजें आ रही है, चाय

0: अभी दी तो उसने कह दिया कि वो ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, मतलब वो तो बड़ा ही कर रहा था।
1: और एक बार ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे लोग, तो छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो उसकी मम्मी बोले कि चलो टाइम हो रहा है हम घर जा रहे हैं, तो बोले नहीं नहीं मम्मी रुको रुको, अंदर से कप प्लेट की आवाजें आ रही है, शायद चाय बनने वाली।
0: सच में ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक होती है, उस समय माँ बाप को समझ में नहीं आता कि देखें रुकें क्या करें, और कभी कभी ये भी कहना पड़ता है भाई बड़ा शरारती है। जैसे कह दे कि कई बार ऐसा होता है कि माए कहती हैं बच्चा खाता ही नहीं, कुछ नहीं खाता, और इधर बच्चे ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट आई और उसने खाना शुरू किया,
1: सब खा लिया।
0: तो ऐसे में एक बात बस यही कहेंगे कि अगर बच्चे हैं तो बच्चे हैं, और हो सकता है कि सामने प्लेट में जो हो वो उन्हें पसंद आ रहा हो इसलिए वो खा रहे हो, तो घर में ऐसा रूल बनाएं ना कि बहुत सी बार ऐसा होता ना कि बच्चे हम बाहर जाके नहीं खाने देते बच्चों को, तो ऐसा रूल अगर आपने बनाया है कि बाहर जाके किसी के यहाँ खाना मत, तो बच्चे का मन फिर मचलेगा,
1: जिसके लिए हम खूब मना करते हैं।
0: हाँ खूब मना करते हैं, बल्कि इसके बजाय ये कर दें कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज पसंद आ रही है, जैसे अगर बच्चे ने, छोटे बच्चे ने मान लीजिए, एक मैंने देखा था कि एक बच्चे घर गया, बच्चे छोटी बच्ची थी उनके साथ, और उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाकर उसमें रखे और उन्होंने कहा कि खाओ। अब जगह ऐसी थी कि जो माँ गई थी तो उसको लगा कि नहीं खाना चाहिए, तो वो उसने एक ले लिया और कुतरना शुरू कर दिया। बच्ची ने एक किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर दूसरी किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर तीसरी किशमिश उठाने वाली थी तो उसे लगा कि टोकना चाहिए, फिर उसे लगा कि अगर हम टोकेंगे तो बच्ची को गलत मैसेज आएगा, तो उसने क्या किया कि कहा कि अच्छा तुम्हें किशमिश अच्छी लग रही है, और दो चार किशमिश बीन कर उसको अलग से दे दी, बच्ची अपना वो खाती रही, और इस तरह से उसको भी पानी नहीं होना पड़ा और बच्ची की भी शरारत या जो बाल स्वभाव है वो पूरा हो गया।
1: और जैसे पानी होने की बात है, इसके तो कई उदाहरण है कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चीज खाने की मनाही होती है, और भाई इच्छा तो होती है, अब मिठाई खाने की मनाही है, घर वाले कह रहे हैं कि भाई डायबिटीज है खाओ मत मीठा खाओ, अब बहुत ललचाया हलवाई के यहाँ जाके खा लिया, घर वालों ने किसी ने देख लिया
0: तो पानी हो गए।
1: तो ऐसे लज्जित होना स्वाभाविक सी बात है, पर लज्जित हो गए है ना तो उसके बाद में अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना है, उसे वही छोड़ देना है कि ठीक है ना, गलती हो जाती है, बड़े हैं बूढ़े हैं कोई भी उम्र के लोग हैं, अगर गलती हो गई है तो उसको हंस के स्वीकार कर ले, उसका दिल पर बोझ ना रखे, उन्हें जिंदगी को हल्के में लेना चाहिए।
0: और देखो हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश हमारे साथ साझा किया है कि वो जो विविध भारती के कार्यक्रम होते हैं जिनमें वो अपने संदेश साझा करते हैं, जैसे सखी सहेली या सुरीला सफर, तो उसमें वो अपनी और अपनी धर्म पत्नी के प्रेम के बारे में अगर कभी कुछ संदेश देते हैं तो वो पढ़कर पत्नी पानी हो जाती है शर्म से, तो ऑफिस में देते हैं पत्नी वहां घर में पानी हो जाती है। तो भाई लेकिन ये कितनी सुंदर यादें स्मृतियां आप लोग साथ साथ संजो रहे हैं
1: सचमुच, और ये यादें हैं ना, ये बहुत सुंदर यादों को हमें संजो कर भी रखना चाहिए कि ये पल ये क्षण जो है फिर से नहीं आएंगे,
0: जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हम ये समय नहीं बीतने देंगे, हम गाना सुनेंगे।
1: बिल्कुल सुनते हैं गीत।

0: तो भाई बड़ी रोचक रोचक बातें हो गई, हम लोगों ने काफी किस्से सुन लिए और उन पानी पानी होने वाली स्थितियों के बारे में भी जान लिया जो कई बार एकदम ऐसा कर देती हैं कि समझ में नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें कैसे करें।
1: तो बहुत मजा आया, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखकर भेजे। तो विविध भारती से जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाजत। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और राजुल का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15।

0: फिल्म मुल्क
1: सब सखियों का पिया प्यारा सब में है और सब सुनारा
0: और फिल्म थप्पड़
2: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर मनसा है।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
2: ए बेखबर।
3: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
4: हाँ।
3: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्मी दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़, और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
4: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
3: तो मुल्क के, हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का, क्रमवार आप बताएं और रचना प्रक्रिया बताएं।
4: मुल्क का गाना आप वो सुनाए, पिया समाए।
3: जी,
4: बहुत अच्छा गाना है,
3: बहुत पसंदीदा कव्वाली।
4: हाँ।
3: कव्वाली है?
4: यस यस,
3: कव्वाली के शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
4: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने।
3: जी बिल्कुल। हाँ। पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ। इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
4: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
3: जी,
4: या आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी हैं जो याद की जाएंगी,
3: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
4: जिक्र किया जाए,
3: दर्ज होती है आज के समय।
4: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
3: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली, और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे, और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चली है, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे आयुष्मान खुराना ने गाया भी है।
4: जी हाँ, जी हाँ, इंतजारी सुनवा सकते हैं आप।
3: जी
4: बिल्कुल।
3: तो
4: आर्टिकल 15 से,
3: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी?
4: उस गाने की कहानी ये है के
3: कोई दिलचस्प बात हो।
4: हाँ, दिलचस्प बात है। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ।
3: हाँ।
4: आप यूं समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
3: पड़ा है, इजाजत फिल्म
4: लौटा दो। हाँ, तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
3: अरे क्या बात है।
4: हाँ, उल्टा मतलब के
3: सामान देना है।
4: हाँ, वो कह रहे कि वो कह रहे लौटा दो।
3: हाँ।
4: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ।
3: हाँ।
4: ठीक है,
3: संचय करना। हाँ, है यहाँ पर।
4: हाँ। तो उसमें जो गाना है। हाँ। वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मूवमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है, गम है, रोना है, मुस्कुराना है, है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मूवमेंट्स हो सकते हैं, तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूँ।
3: अच्छा, क्या बात है। सारा कुछ एक गाने में आना।
4: हाँ।

0: तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो, लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ। वो साझा जो चीजें हैं हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना इंतजारी
1: जी।
0: हाँ,
1: तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है तो।
0: हाँ, इसी तरह से बनी वो कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी,
1: क्या बात है, वाह,
0: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी,
1: वाह वाह, बहुत सुंदर
0: है ना।
1: तो
0: अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, ये लाइन पहले नहीं थी, उसमें कुछ खुमारी राइमिंग की लाइन थी। तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं। तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुहरी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना, वो बहुत विशाल, बहुत बड़ा मुल्क है,
1: रंगी है,
0: और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं, तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है,
1: बिल्कुल,
0: है ना, कुछ नया लगता है। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना
1: जी।
0: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था जो गुलजार साहब का था, ये उसके बरक्स था। तो ये सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना।

0: जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट पिया समय, हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने की बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही, उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे, और ऐसा फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलिहाबाद वगैरह में, और
0: अभी गाना लिख दो।
1: और हम जो हैं, मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक, वो और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और मुल्क में,
1: और मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे
0: जी जी। हाँ,
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है।
1: हाँ,
0: कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफेद रंग बनता
0: जी,
1: है
0: जी।
1: मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर?
0: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसको कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
1: तो, हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है।
0: हाँ।
1: और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी चाहिए,
0: जी, जी, जी।
1: ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा, मुश्किल गाना था बहुत
0: जी।
1: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
0: बेहतरीन फिल्म थी,
1: डिफिकल्ट सिचुएशन थी
0: जी।
1: तो मैंने लिखा उसमें के पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है सात रंग हैं सातों पिया के,
0: सात रंग हैं सातों पिया के।
1: हाँ, सात रंग होते हैं
0: जी।
1: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए
0: जी, जी।
1: ठीक है, सारे समुदाय जो हैं वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो हैं एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
0: खुदा है।
1: हाँ, और महबूब भी है हमारा, ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लागा चुनरी में दाग और फलाना, वो
0: छुपाऊं कैसे,
1: है ना, घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी,
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: बिल्कुल, दो अर्थी।
1: तो हाँ, तो ये दो अर्थी ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे

0: भी वो सब पिया के ही लगेंगे,
1: रंग दिखाई
0: पड़ेगा। हाँ, अलग अलग मत देख, हम सब एक हैं, सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिलके भई मैं उजली।
1: वाह क्या बात है,
0: सातों से मिलके
1: भई
0: मैं उजली, कोई हरा कोई गेरुआ बताए।
1: क्या बात,
0: पिया समाये जिया में मोरे पिया समाये। अब ये देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूँ।
1: जी जी,
0: और तू भी लगा के देख कभी। तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था और ऐसा वो सटीक आया है ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई। बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
1: तो ये जो फिल्म है एक संदेश देती है, ये गाना भी संदेश देता है, सब एकजुटता का संदेश है। और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। अब यहाँ हम आते हैं आपकी फिल्म धोखा में। फिल्म धोखा,
1: हाँ,
0: एम एम करीम साहब ने गाया है और कंपोज भी किया है गाना। इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं,
1: क्योंकि मतलब आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची,
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं। और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा भट्ट
1: उन्होंने डायरेक्ट की थी, और ये गाना जो है एम एम करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मेरे पसंदीदा कंपोजर हैं वो, और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना। तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके। मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे मैंने रिकॉर्ड किया उसमें, और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो। और गाना लिखा जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया, कहीं कहीं अटके लेकिन फिर वो रवा हो गया। जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवा हो गया वो गाना
0: जी।
1: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई,
0: क्या बात है।
1: हाँ, वो जो ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उस गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर।
0: हाँ, जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, फिल्म का गाना, इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था।
1: जी जी। तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना, कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी, मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
0: जी।
1: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे। और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई, उसका एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग, क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी, सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को
0: जी।
1: तो उसमें गाना था वो के ने गाया था वो, ऐ बेखबर ऐ बेखबर
0: जी जी, हाँ।
1: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा
0: जी,
1: तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके, और बड़ी कामयाब

0: शिव कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में।
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: शिव कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया

0: तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
1: जी,
0: तो वो गजल सिंगर होते थे
1: जी जी,
0: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
1: जी, बिल्कुल
0: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
1: नाम शोहरत
0: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों
1: जी, जी, जी।
0: संदेशे आते हैं, या वीर जारा का गाना है ना। इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गजलें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गजलों को कंपोज करते थे। लेकिन वो गजल का टाइम भी जा रहा था। जब मैं आया हूँ उससे पहले गजल का एक बड़ा दौर आया था, जिसमें जगजीत जी की गजलें और पंकज उदास साहब की गजलें, हरिहरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गजल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे
1: जी जी।
0: लेकिन जब मैं आया हूँ तो ये दौर खत्म हो रहा था
1: जी जी,
0: गजल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था। तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आजमी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गजलें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नामी नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोजर हैं, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को, तो जो गाने गवा रहे वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे, और मैं उनके अंदर वो म्यूजिक कंपोजर को, जो फिल्म का म्यूजिक कंपोजर होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
1: जी जी,
0: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
1: जी जी,
0: वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए, और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़ साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
1: दर्ज है।
0: हाँ, और 400-500 गाने होंगे।
1: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आ रहा है।
0: हाँ, हाँ, हाँ,
1: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
0: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगा ने
1: जी
0: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिखें। तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया
1: जी जी,
0: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921 जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे बहुत अच्छे गाने।
1: थोड़ा सा हम पीछे क्यों चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको, पहली फिल्म तक आप कैसे गए? वो तेरा नाम था,
0: वो तेरा नाम था बिल्कुल।
1: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हम तो एंटर कर चुके हैं, लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी?
0: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात है।
1: अच्छा,
0: तब मैं सूरत में रहता था
1: जी जी,
0: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था।
1: अच्छा,
0: फिर पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन समीर सेन से हुई।
1: हाँ,
0: दिलीप सेन से हुई, और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी फिल्म थी, अक्षय कुमार
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना,
1: वहाँ तनवीर खान भी के।
0: हाँ। तो मैं वहीं आ रहा हूँ, तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो किताब।

0: तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया
1: जी।
0: और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए, तो तनवीर खान साहब की नजर उस किताब पर पड़ी
1: जी।
0: और उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे और वो किताब जो थी उसका इंतसाब माँ के नाम था।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है,
1: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
0: सर के नीचे तेरी हथेली है।
1: ओ, क्या बात है।
0: ठीक है, तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊंगा, आपको भेज दूंगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानते थे, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे, इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
1: क्या बात है,
0: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, कैसे सरवाइव करूंगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे
1: जी जी,
0: तो एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में
1: जी।
0: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी जमाने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी
1: जी।
0: तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता था भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूं ना प्रोड्यूसर हूं। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे, बाद में डायरेक्टर भी बने। तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली जी, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर, अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था, फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुकू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे वो, मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे, तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊंगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक उस फिल्म के कई गाने दिलीप सेन, समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर लिए थे और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी सेटिंग शुरू हुई, तो उनके पास एक गजल थी कतील शिफाई साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था वो तेरा नाम था।
1: क्या बात है।
0: तो वो तेरा नाम था इसी गजल से लिया गया था।
1: ओ, अच्छा, क्या बात है भाई।
0: अच्छी हाँ, मतलब पहले से कुछ नाम भरे रहा हो पिक्चर का, लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ ये गजल, तो वो तेरा नाम था कतील शिफाई साहब की गजल से लिया गया, ये नहीं कि गजल बाद में, गाना बाद में बना
1: जी,
0: पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी उसका नाम मुमकिन था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मदोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदोशी, तो इंदर कुमार साहब थे उसके प्रोड्यूसर, उनकी वाइफ थी और उनके साले, तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदहोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था, बाद में वो मुमकिन हटा के मदहोशी किया गया। तो इस तरह से वो टाइटल आया वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए, और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई।

0: फिल्म में, उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आजाद हुआ है और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है। ये उस टाइम की कहानी थी और समद खान कोई वहां के बड़े क्लासिकल सिंगर थे, तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कहीं वादियों में गा रही है, तो ये सिचुएशन थी
1: जी।
0: और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है, तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो जो राइटिंग है और वो गाना इतना, मतलब अलका जी ने गाया उसको और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना दीदी मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने, तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से
1: कि मुझे,
0: अरे ये गाना तो मेरा था तूने मुझसे क्यों नहीं गवाया।
1: बड़ा कॉम्प्लीमेंट था।
0: हाँ तो ये गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं के पूरे साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको
1: जी।
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है।
1: क्या बात है,
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है।
1: वाह बहुत।
0: आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर ये सुबह इसी गाने से होती है, डेली ये गाना बजता है।
1: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए,
0: मदहोशी का टाइटल सॉन्ग सुना दे, मदहोशी है मदहोशी है।

0: शकील साहब, एक बहुत जरूरी सी बात है और आपके करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, खास बात है, अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर है, आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज़्में हैं जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं
0: जी।
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा, मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी जिंदगी में आया। उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी है, उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसके कुर्बानी ने,
0: कि वनवास होता है लक्ष्मण को 14।
1: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बेचैन किया मुझे। और उसी जमाने में जब मैं अहिल्या के दर्द से दो चार था, उसको जी रहा था, और जब ये नज्म हुई उर्मिला, जब ये नज्म मैं लिख चुका, तो मुझे लगा कि यार जो रामायण है
0: जी,
1: वो पूरी घटना जो है वो जंगल में है, वनवास जो राम जी का है 14 बरस का, तो क्यों ना रामायण के किरदारों पर नज़में लिखी जाएं। तो मेरी जो रामायण है वो वाल्मीकि जी से लेके अब तक जितनी भी रामायण लिखी गई है, तुलसीदास की जी, हाँ, तो और भी हमारे दूसरे लोगों ने लिखी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का काम है इस उर्मिला पे,
0: उर्मिला सखी वे मुझसे जाते,
1: हाँ हाँ,
0: बहुत बढ़िया।
1: तो सभी ने मतलब कहानी के माध्यम से कहानी कही है, मैंने एक नया रास्ता निकाला पात्रों के जरिए से, किरदारों के जरिए से मैंने रामायण कही है मैंने कहानी। तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी, एक के बाद एक जीता गया और लिखता गया, इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, उस किताब का, क्योंकि जंगल पे काम कर रहा था, तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा जंगल भी है, रामायण और जंगल दोनों है उसमें, तो वो मेरे लेखन क्षेत्र में आता था, मेरा जो टॉपिक था जंगल उसमें वो वनवास आता था वो। तो जब ये रामायण उसमें शामिल हो गया, तब मुझे मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम वनवास रख दिया जाए, उससे बेहतर क्या नाम हो सकता है, अगर जंगल पर किताब है, रामायण पर किताब है, तो वो जो है इस तरह से उसका नाम वनवास रखा गया। और वो किताब इतनी

0: कही गई है उर्दू में उसको कई अवार्ड मिले, और उर्दू के जितने भी बड़े क्रिटिक्स और पोएट हैं उर्दू साहित्य में तकरीबन सभी ने उस किताब पर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं, मजामीन लिखे हैं। तो किताब पर किताब का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उस किताब पर इतने आर्टिकल लिखे गए कि वो अलग से एक किताब आई है। उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं जो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इम्प्रेस किया। वहां पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे, जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब है, गुलजार साहब है, इस तरह का वो नाम थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अभी इंतकाल हुआ उनका। उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है, और किस तरह से मतलब हिंदू मैथा

0: है उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इम्प्रेस किया।
1: जी जी।
0: वहां पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे, जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब है, गुलजार साहब है, इस तरह का वो नाम थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अभी इंतकाल हुआ उनका। उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है और किस तरह से मतलब हिंदू माइथोलॉजी और रामायण को लेके जो उनकी मालूमात थी वो भी कमाल है, वो जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। ये किताब हिंदी में जब आई तो पिछले 3 सालों से बेस्ट सेलर है, कविता की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में एक है ये।
1: क्या बात है।
0: पिछले 3 साल से लगातार, और अभी को दैनिक जागरण ने बेस्ट सेलर अवार्ड दिया गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे।
1: क्या बात है।
0: तो हाँ, बहुत शुक्रिया
1: और बहुत बढ़िया बात कही है। और आपके मुशायरों का जिक्र तो हुआ, शुरुआती मुशायरों का, लेकिन बाद के मुशायरों में हमने खुद देखा है, मेरी खुशनसीबी कि हमने आपको खुद देखा है और कलिंगा फेस्टिवल में देखा, प्रयागराज में हमने आंखों से देखा था जहां अनुभव सिन्हा जी भी उपस्थित थे, और आपकी जो शायरी थी वो आपके खजाने से निकल रही थी और पूरा हॉल खचाखच भरा था। ऐसे तमाम अनुभव है, तमाम वाक्यात हैं जिनकी बातें हम आपसे और फिर कभी करेंगे। आज तो बस इतना हम कहना चाहते हैं, धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, आपके ही अल्फाज हैं। आप क्या कहेंगे, आप विविध भारती के श्रोताओं को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे चलते चलते?
0: मैं यही कहूंगा कि अभी आपने जो सुनाया है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, तो प्यार बहुत जरूरी है, और दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत कीजिए।
1: कुछ शायर अंदाज में एक शायर से हम उम्मीद करते हैं, शायरी में ही कुछ बोले शेर के साथ
0: जी,
1: कोई अशार।
0: मैं अभी इधर एक नई गजल कही है मैंने, उसके 2-3 शेर सुना देता हूँ, और उसमें एक शेर है खास तौर से उसके लिए मैं ये शेर सुना रहा हूँ, कि उसमें ये भी एक शेर है, सीख है कि भाई ठीक है ऊंच नीच होती है, कुछ हमारे अलग अलग सोच होती है, लेकिन उस सब को हटा के आगे की तरफ बढ़ते रहो।
1: क्या बात है।
0: मोहब्बत करते रहो। कि आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ। वो शेर ये है जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है वो आप आगे बढ़े। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर।
1: क्या बात है।
0: सांपों को मैंने रहने दिया
1: उनके हाल पर।
0: उनके हाल पर मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह।
0: ठीक है, मैंने उसे बदला नहीं लिया, मैंने मंत्र आता था मुझे, लेकिन ठीक है यार, तुम तुम्हारे रास्ते मैं अपने रास्ते। इसका एक शेर आखिरी खास तौर से, कि देखिए ज्ञान जो है ना
1: जी,
0: शायरी में ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ज्ञान भी होता है अलग अलग, तो वो शेर में आता है रचना के तौर पर, रचनात्मक तौर पर आता है, तखलीकी तौर पर, तो बहुत असर करता है। तो एक महाभारत का एक इल्म है, एक ज्ञान है जो इस शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है।
1: क्या बात है। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है। वाह।
0: ये सीख है हम सब के लिए। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है
1: जी।
0: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है। वाह वाह। तो अब अपने श्रोताओं से, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाजत लें, और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगू जारी रहे, और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब।
0: आप भी नमस्कार। शुक्रिया ममता जी।
2: जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये आकाशवाणी कोटाबूंदी का चंबल चैनल है, FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

0: हेलो नमस्ते गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी की शुरुआत में। और आज आपसे रूबरू हो रही है आपकी दो रेडियो दोस्त। मैं आपकी रेडियो दोस्त लक्षिता और मेरे साथ है
1: और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त निकिता।
0: तो बताओ निकिता, कैसी हो तुम? काफी दिनों बाद मुलाकात हुई है हमारी।
1: बिल्कुल लक्षिता, मुलाकात तो हमारी बहुत दिन बाद हुई है, लेकिन फिलहाल जो है इस मुलाकात में थोड़ी सी जो है कह सकते हैं हम थोड़ी दिक्कत हुई है।
0: कैसे?
1: जैसे कि तुम मेरी आवाज से सुन पा रही हो, थोड़ा सा समझ भी पा रही हो, और मुझे लगता है कि हमारे सभी दोस्त भी समझ पा रहे होंगे
0: कि तुम्हारी तबीयत

0: खराब है।
1: हाँ तबीयत खराब कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो हमारी मौसम की वजह से जो होती है ना वो।
0: एक्चुअली मौसम ही कुछ ऐसा हो रहा है कि आजकल सभी लोगों की तबीयत खराब है।
1: और मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं हर तीसरे व्यक्ति से जिससे मिल रही हूँ ना, सबकी मुझे कुछ मिलती जुलती कंडीशन सी दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी हमारी जो लापरवाही है मौसम की,
0: ये उसका भी नतीजा है।
1: जैसे कि हम गर्मी में से आते हैं और फटाक से ठंडा पानी पी लेते हैं,
0: एसी में बैठ जाते हैं, बिल्कुल। तो यही सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं अंदर से, हमारा जो जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर भी चेंज होता है, और इसीलिए फिर हमारी बॉडी उस चीज़ को एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है।
1: ऐसे लगता है, मुझे लगता है ना कि अब ये जो तबीयत मौसम इन सबको ना थोड़ा सा साइड में रख के हमें अपने मूड को भी अच्छा करना चाहिए और हमारे सभी दोस्तों के मूड को भी।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे निकिता, आजकल तुम देख रही होंगी जैसे कि दिन में जो है बहुत धूप रहती है
1: और शाम पड़ती,
0: बिल्कुल वही
1: ठंडी हवाएं चल रही
0: वही है। बिल्कुल, और इसी की वजह से मुझे लगता है कि लोगों की तबीयत बिगड़ रही है, खास तौर पर खांसी जुकाम, जो कि आपको भी हो रहा है और मुझे भी हो रहा है, और गले में थोड़ा बहुत दर्द, जिसकी वजह से हम थोड़े से चिड़चिड़े से हो गए हैं। हम चाहते हैं बारिश हो, लेकिन बारिश हो नहीं रही है।
1: हम इंतजार करते हैं जो बादल है उनका, जो कहीं ना कहीं हम कहें कि वो आते तो हैं, लेकिन अपनी बारिश जो है हम तक पहुंचाना भूल जाते हैं।
0: और इसी वजह से पसीना आता है, रैशेस होते हैं, और मन में एक अजीब सी उलझन हो जाती है कि कहीं नहीं जाना, तैयार नहीं, कुछ करने का मन नहीं होता है ना,
1: समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या
0: है। एग्जैक्टली।
1: और कहीं बाहर कहीं काम से भी निकलना हो ना, तो उससे निकलने से पहले 10 बार सोचना होता है कि क्या करें, जाएं या नहीं जाएं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। तो हमारी बातें तो ऐसे ही चलती रहेगी निकिता, लेकिन फिलहाल हमें हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है और हमारे ट्रैक पर ले जाना है। तो क्या कहती हो, क्या करना चाहिए अब?
1: फिलहाल मुझे तो ऐसा लगता है कि इस गाड़ी को ट्रैक पे लाने के लिए हमें खूबसूरत सा गाना सुन ही लेना चाहिए।
0: ठीक है, तो फिर तुम्हारी फरमाइश पर सुन लेते हैं खूबसूरत सा गाना, जिससे हमारे दोस्तों का मन भी खिल उठेगा।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: तो दोस्तों, इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में, जहां आज आपका साथ दे रही हैं आपकी दो रेडियो दोस्त, मैं लक्षिता
1: और मैं निकिता।

0: दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत की जो हम में से लगभग हर किसी के पास होती है, जैसे कि छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने की आदत, और कहीं ना कहीं यही कहलाती है ओवरथिंकिंग।
1: बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी किसी दोस्त का मैसेज

0: देर से आता है तो हम हमेशा सोचने लगते हैं कि शायद कहीं वो हमसे नाराज तो नहीं, हमारी किसी बात से उसे बुरा तो नहीं लगा, या फिर क्या हमारी दोस्ती खत्म तो नहीं हो गई। और ऐसे ही बात का जवाब जो है हम सोचते हैं कि थोड़ा अलग हो गया, तो मन में ऐसा होता है कि पूरे सवालों की लाइन सी खड़ी हो जाती है।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशंस काफी सारी आती हैं, है ना। और फिर हमारा दिमाग एक कहानी खुद लिखना शुरू करता है, राइटर बन जाता है, है ना, जिसमें टेंशन भी होती है, डर भी होता है, कई बार ऐसी बातें भी होती हैं जिनका हकीकत से कोई नाता ही नहीं होता, लेकिन फिर भी हम खुद ही अपनी सोच में खुद को इतना परेशान कर लेते हैं कि फिर हमें स्ट्रेस होता है और हम परेशान होकर डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं।
0: और इसी बीच में जो है ना, ये ओवर थिंकिंग हमारे माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है, और यही कंट्रोल एक ऐसे झूले की तरह होता है ना, जो हमें लगातार चलाता ही रहता है लेकिन कहीं पहुंचाता बिल्कुल भी नहीं है।
1: बहुत सुंदर बात कही तुमने निकिता। कई बार हम हमारे फ्यूचर की इतनी टेंशन करने लग जाते हैं कि हमारा जो आज है, यानी जो हमारा प्रेजेंट है, जिसे हम प्रेजेंट बोलते हैं, जो हमारा गिफ्ट होता है, तो हमारा प्रेजेंट भी तो वो गिफ्ट है हमारे लिए, लेकिन हम उसके बारे में कहीं ना कहीं नहीं सोचते और आज का सुकून खो बैठते हैं। हम सोचते रहते हैं अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं कामयाब नहीं हो पाया या नहीं हो पाई तो, अगर लोगों ने मेरे बारे में कुछ गलत सोचा तो, और यही सोच हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक देती है।
0: लेकिन जिंदगी का एक खूबसूरत सा नियम भी है लक्षिता, और वो ये है कि जो हर बात होती है ना जीवन में, कुछ भी हो, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और कुछ चीजों को हमें लगता है कि टाइम पे या समय पे छोड़ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम समय पे चीजों को छोड़ते हैं ना, तो चीजें खुद ब खुद कहीं ना कहीं सही होने लगती
1: हैं। और कह सकते हैं कि जब हम समय पर चीजों को जाने देते हैं या छोड़ देते हैं, तभी समय पर हमें अपनी सही चीजें मिल पाती है।
0: बिल्कुल,
1: जो लौट कर आती है, है ना। तो दोस्तों, अगर इसी का एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, तो वो ये होगा कि एक पौधा रोज अगर ये सोचे कि मैं कब बड़ा होऊंगा, मैं कब उस पेड़ की तरह बनूंगा, मेरी हाइट कब इतनी बड़ी होगी, तो क्या उससे वो पौधा जल्दी बड़ा हो जाएगा? तुम बताओ निकिता।
0: बिल्कुल नहीं।
1: तो बस यही सारी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है, इसीलिए हमें थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। हर चीज की जल्दबाजी आपको बस रोके रखती है।
0: और लक्षिता, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, जैसे हम अभी पेड़ की बात कर रहे थे कि वो बार बार ये अगर सोचे कि क्या मैं बड़ा हो जाऊंगा, जल्दी हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक वैसा ही हम भी करते हैं हमारी लाइफ में, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आई है जिसे हमें फेस करना है, या फिर कोई ऐसी मुसीबत है या कोई काम है जो हमें करना है, हम अक्सर यही माइंड में सोचने लग जाते हैं, क्या मैं इसे कर पाऊंगा, जल्दी कर लूंगा, लेट कर पाऊंगा, कितना मुझे समय लगेगा, हो तो जाएगा ना, या फिर मुझसे होगा ही नहीं, और अगर मैंने कर लिया तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना,
1: लोग क्या
0: हाँ, और गड़बड़ हो गई तो मुझसे कोई डांटेगा तो नहीं, मुझे कोई सुनाएगा तो नहीं। उसके बाद में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कंटिन्यू सवालों की कतार सी जो हम बात करें ना, वो लगती ही रहती
1: और
0: है।
1: और इसकी प्रॉब्लम ये है कि हमारे माइंड पर तब हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता, और तब जरूरत होती है किसी के साथ की, कि कोई आपके पास हो, आपकी बात सुने और आपको थोड़ा समझाए कि नहीं तुम गलत ट्रैक पर जा रहे हो, तुम अपनी सोच को इतना आगे मत ले जाओ, अभी प्रेजेंट है, उसको जियो, खुशी से सोचो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी खुशी किसमें है।
0: और हमें करना भी यही होता है, हमें हर पल हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करनी होती है, क्योंकि कभी कभी अगर हम खुद पे भरोसा रखते हैं, समय देते हैं चीजों को, और समय को समझते हैं, अपने आप को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि चीजें बखूबी तरीके से और अच्छे से सही होती है।
1: और दोस्तों, अगर मेरे मायनों में मैं आपको बताऊं कि अगर आपका मूड खराब है या बहुत देर से एक ही बात आपके दिमाग पर चलती जा रही है, तो देखिए बेस्ट चीज़ ये है कि बाहर कहीं घूमने निकल जाओ।
0: बिल्कुल,
1: जब ठंडी हवा आपके मुंह को छुएगी, आपके दिमाग पर, आपके बालों में लगेगी, तो आपको फील होगा कि सुकून मिल रहा है।
0: और इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूं, क्योंकि मैं बहुत सहमत हूं, क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में जो है सवाल के एक झुंड सा बन गया है, तो मैं बिल्कुल यही पसंद करती हूँ, या तो तो मैं अपनी छत पे जाना पसंद करती हूँ, खुली हवा में जो है आसमान को, तारों को, पेड़ पौधों को इन्हें देखना पसंद करती हूँ, खुद को मैं शांत करने की कोशिश करती हूँ, या फिर मैं कहीं मैं भी ऐसे ही घूमने निकल पड़ती हूँ रोडों पे।
1: कहते हैं ना निकिता, मी टाइम होना जरूरी होता है।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि खुद को समझने के लिए, खुद को जानने के लिए अकेले एक बार निकलना, अकेले रहना और खुद के बारे में सोचना बहुत जरूरी होता है।

0: बिल्कुल सही बात कही तुमने। और दोस्तों अगर ये काम ना करे, कहीं ना कुछ लोगों के लिए नहीं कर सकता, तो आप यार अपने कानों में ईयरफोन्स लगाइए
1: और गाने सुनिए
0: और सबसे प्यारा गाना सुनिए जो आपको अच्छा लगता हो।
1: और मुझे लगता है ना लक्षिता, जब ऐसी सिचुएशन में हम हमारा फेवरेट गाना सुनते हैं ना, तो मूड तो एकदम से मूड सही हो जाता है और कहीं ना कहीं जो हमारी सभी मुश्किलों का हल हमें वहां मिलता है।
0: और आपको पता है म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो आपके मूड को फॉलो करवाती है। लाइक अगर गाना फनी बज रहा है तो आप भी खुश हो जाएंगे, आप यू नो मस्ती करने लग जाएंगे। सैड बज जाएगा तो आप सैड हो जाएंगे,
1: मूड उसी हिसाब से चेंज
0: चल रहा है तो आपका मन बिल्कुल खुश है, आप मजे ले रहे हो
1: आराम से।
0: तो दोस्तों यही सारी चीजें हैं, खुद पर ध्यान देना
1: और
0: शुरू
1: मुझे
0: करिए।
1: कुछ चीजें ऐसी भी लगती है कि जब भी हम ओवरथिंकिंग करते हैं ना, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें हेल्प भी करती है। और वो हेल्प कैसे, कि जब भी मान लीजिए हमारे सवाल चल रहे हैं, ये ऐसे वैसे कुछ ऐसा वैसा कुछ भी चल रहा है दिमाग में, और अगर हम उन्हें लिख लेते हैं ना लक्षिता, तो आधी चीजें मुझे लगता है वही हमारी सॉल्व हो जाती है।
0: ये भी एक अलग तरीका है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक यूनिक तरीका है जो ज्यादातर लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, है ना।
1: जैसे
0: कि तुम कह रही हो लिख लेना चाहिए, उससे हमें हमारे सवाल याद रहते हैं, हमारी बातें याद रहती हैं, और कहीं ना कहीं जब हमें जरूरत पड़ती है उनको सामने रखने की तो हम भूलते नहीं है।
1: और मैंने एक चीज यहाँ पे ये भी नोटिस की है कि जब हम हमारे दिमाग में चीजों को बढ़ाते जाते हैं और उसका एक रीजन ये होता है कि कुछ चीजें हमारी ऐसी पीछे छूट जाती हैं, हमारे ऐसे काम छूट जाते हैं, हमारी कुछ फीलिंग्स, हमारी कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ मुलाकातें, ये सब जब पीछे छूट जाती है ना, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में इकट्ठी होती रहती है जो ओवर थिंकिंग का कारण बनती है।
0: और
1: तो मुझे लगता
0: रिग्रेट
1: रह जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी चीजें हैं हम लिख लेते हैं और बारी बारी करके जब इन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं ना, तो काफी दिल को बड़ा अच्छा सुकून मिलता है।
0: और सबसे बेस्ट चीज ये है कि अगर ये सारी चीजें आप सॉर्ट करने के रास्ते पे निकले हो और आपके पास एक अच्छा पार्टनर है या कोई
1: तो
0: आपका एक अच्छा दोस्त जो आपकी सारी बातें सुन रहा है और आप बिना किसी यू नो सेकंड थॉट के उसे बता रहे हो बाय जस्ट नॉट बीइंग जजमेंटल, आपको पता है कि ये जज नहीं करेगा या नहीं करेगी, हमारी दोस्त अच्छी है या मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, तो आप दिल खोलकर बता दीजिए। मैं तो कहती हूँ क्योंकि अपने भावों को, अपने मन के थॉट्स को बता देना काफी अच्छा होता
1: है। बिल्कुल, क्योंकि उलझने दिमाग में इकट्ठा करने से अच्छा है आप किसी के साथ बैठकर उन्हें सुलझा लीजिए।
0: और निकिता मैं तो ये कहती हूँ कि बात करने से
1: बात
0: सॉर्ट होती है,
1: ये मैं मानती हूँ,
0: और कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल जाता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि मुझे ना एक बार किसी ने कहा था कि बातें जो होती है ना बहुत गहरी होती है, अगर हम कर लें तो काम की और नहीं कर लें तो वो बेकार सी हमारे दिमाग को एकदम ब्लॉक सा कर देती।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते,
1: नहीं
0: ना?
1: कर पाते
0: और मुझे बुरा लगता है उनके लिए, क्योंकि यार एक्सप्रेस करना तो आना चाहिए ना, कि अगर आप खुश हो तो आपके फेस पर दिखे कि हाँ आप खुश हो, और अगर दुखी हो तो भी
1: दिखा देना चाहिए
0: क्योंकि वो बहुत बुरा होता है कि अपन मन में भरते जा रहे हैं कुछ चीज और कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे और किसी को बताने में भी अपन को
1: शर्म आ रही है। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी ने कुछ कह दिया, हम वहाँ चुप हो गए, मतलब जहाँ हमें लगता है कि कुछ कह देना चाहिए था हम चुप हो जाते हैं, बाद में वो चीजें याद आती है।
0: मेरे वर्ड्स में तो साफ सीधा फंडा है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया, कुछ आपको कहना है तो वहीं के वहीं कह दो,
1: वो मन में मत रखो, क्योंकि मन में रखने से वो ओवरथिंकिंग ही बनती है।
0: बाद में समझौते होते हैं यार, अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ कहना है उस वक्त कहना है तो कह दो, बाद में रिग्रेट करने से क्या होगा।
1: और वही तो ओवरथिंकिंग का कारण बन रही है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, तो वही चीजें तो दिमाग में हमारे बढ़ा रही हैं चीजों को।
0: देखो मैं तो यही कहती हूँ दोस्तों कि हमेशा सोचने से किसी भी चीज का सोल्यूशन निकलता है, मतलब निकलता है ना सोचने से तो
1: सोल्यूशन।
0: तुम बिल्कुल बातों में खो गई हो।
1: बिल्कुल लक्षिता, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक है ना हमारा, इतना मतलब गहराई से अगर हम इसे सोचने समझने और बात करने बैठे
0: तो मुझे लगता है कि पूरा प्रोग्राम भी निकल जाएगा।
1: हाँ, पूरा दिन
0: हमारी बातें खत्म नहीं होंगी, है ना, क्योंकि टॉपिक ही इतना प्यारा है। और एक्चुअली ये सभी की प्रॉब्लम है ओवर थिंक करना। मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्तों को भी टाइम देना चाहिए। अगर कहीं कुछ उलझन आ गई है, नोकझोंक हो गई है, तो ठीक है, समझिए, मौका दीजिए, बात सुनिए, क्योंकि मुझे लगता है सुनने से, समझने से, बात करने से हर एक चीज सॉर्ट हो जाती है।
1: बिल्कुल, और अगर हम कहें ना कि एक तरीके से जैसे हम अपने आप को बिजी रखते हैं, पूरा दिन हमारा प्लांड होता है, तब भी हम लोग कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग से बच जाते हैं, क्योंकि जब हमारे पास सोचने के लिए ही ज्यादा वक्त नहीं होगा तो हम कहाँ इतना कुछ सोच पाएंगे जो हमारे दिमाग को फालतू के सवालों से भर देगा।
0: आई अग्री। देखिए दोस्तों, ये जीवन चलता ही रहेगा।
1: बिल्कुल,
0: और हर सुबह आपको एक मौका देगा आपकी लाइफ को अच्छे से जीने का, आपकी लाइफ को और खुशहाल बनाने का, आपको मुस्कुराने

0: सिखाने का और आगे बढ़ते जाने का।
1: और मुझे लगता है ना लक्षिता कि अगर ये चीज मुझे फील होती है तो मुझे लगता है मुझे सबको कहनी चाहिए, सबको ये अपनाना चाहिए अपने जीवन में कि अगर आज का दिन हमारा बेकार सा गया है और कुछ अच्छा नहीं हुआ, उलझने भरी पड़ी हैं आज के दिन में हमारे लिए, कुछ बहुत बेकार सी चीजें हमारे साथ हो गई हैं पूरे दिन भर में, तो मुझे लगता है उदास कभी नहीं होना चाहिए, चीजों को इकट्ठा कभी नहीं करना चाहिए। आराम से सुकून से अपनी नींद लीजिए, सुबह फ्रेश मूड के साथ आप उठिए और फिर से पूरी एनर्जी के साथ अपने आप को, अपने दिन को और अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगा दीजिए।
0: बिल्कुल अच्छा कहा तुमने, क्योंकि मैं यही कहूंगी कि डोंट लूज योर होप।
1: बिल्कुल,
0: अपने अगर लगे ना कभी भी कि दुनिया पूरी आपकी यू नो आपके सामने हो गई है और अब कोई अपना नहीं दिख रहा और मेरे साथ ही ऐसा होता है, और ये नहीं यार, एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, एक बार अपने भाई बहन की तरफ देखो या अपने पार्टनर की तरफ देखो, कितना प्यार करते हैं वो आपसे यार, और उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कोई आपके लिए, तो प्लीज एटलीस्ट उनकी खुशी के लिए खुश रहना सीख लो, हो सकता है कि आपकी खुशी से कोई और खुश होता हो, कितनी बड़ी बात है ना।
1: और इस ओवरथिंकिंग को जो है कम करने के लिए दोस्तों एक ही चीज आपसे कहेंगे कि जितना कम हो सके कम सोचिए, अच्छा अच्छा सोचिए, नेगेटिव वे की तरफ मत जाइए, पॉजिटिव वे की तरफ जाइए, पॉजिटिव सोचिए और खुश रहना सबसे बड़ी चीज है, तो खुश रहने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, बस इतना ही कहेंगे।
0: बाकी आपके सामने है और बातें तो इतनी सारी है कि मन तो नहीं कर रहा चुप होने का, लेकिन चुप हमें होना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें आगे बढ़ना है कार्यक्रम में, और अब टाइम थोड़ा हो चुका है कि थोड़ा मस्ती मजाक वाला माहौल आ जाए, क्योंकि थोड़ी प्यारी प्यारी सीरियस बातें तो हमने कर ली हैं, तो क्या कहती हो निकिता, प्ले कर दें एक प्यारा सा गाना हमारे दोस्तों के लिए?
1: मेरी तरफ से तो पूरी पूरी हाँ है।
0: चलिए फिर दोस्तों सुना देते हैं आपको एक और मस्ती भरा गाना और जो आपके मूड को बिल्कुल कर देगा तरोताजा,
1: तो एंजॉय कीजिए आपके रेडियो सेट तक ये खूबसूरत सा और चटपटा सा गाना।

0: दोस्तों, ये वाणी के सफर में अब आगे ले चलते हैं आपको और बढ़ चलते हैं हमारे एक सेगमेंट मेरी प्रेरणा की ओर, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके बारे में जानकर मुझे लगता है कि हमें ही नहीं आपको भी बहुत खुशी होगी।
1: दोस्तों, जिन्होंने अपनी जिंदगी विज्ञान को समर्पित कर दी, उनका नाम है भारत रत्न डॉक्टर CNR राव।
0: दोस्तों, गौर कीजिए, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, सोलर पैनल है और जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनके पीछे कितने वैज्ञानिकों की मेहनत होती होगी। और अगर हम बात करें इन्हीं में से एक वैज्ञानिक की, तो वो है डॉक्टर CNR राव।
1: दोस्तों, डॉक्टर CNR राव का पूरा नाम है चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव। उनका जन्म 30 जून 1934 को बेंगलुरु में हुआ था। बचपन से ही उन्हें पढ़ने और नई चीजें जानने का बहुत शौक था।
0: कहते हैं कि जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब वे किताबों और विज्ञान की दुनिया में खोए रहते थे।
1: क्या बात?
0: और उनकी जिज्ञासा ही उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाने की पहली सीढ़ी बनी।
1: दोस्तों, उन्होंने रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में अद्भुत काम किया, खासतौर पर पदार्थों की संरचना, नैनो मटेरियल और सॉलिड स्टेट के केमिस्ट्री पर उनका शोध पूरी दुनिया में सराहा गया। उन्होंने हजारों शोध पत्र और कई किताबें भी लिखी हैं।
0: और सबसे प्रेरणादायक बात ये है कि उन्होंने कभी सीखना और सिखाना नहीं छोड़ा। वो हमेशा कहते थे कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे देश और समाज की प्रगति का आधार भी है।
1: उनके असाधारण योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और फिर देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
0: और दोस्तों, ये जो डॉक्टर CNR राव हैं, इनकी कहानी जो है हमें ये सिखाती है कि जो आपकी सफलता है वो किसी जादू से नहीं मिलती, किसी शॉर्टकट से नहीं मिलती, वो मिलती है आपकी जिज्ञासा से, आपकी कड़ी मेहनत से, आपके अनुशासन

0: पैशन से और सबसे बड़ी बात
1: बिल्कुल सही कहा
0: सपनों पे विश्वास करने से।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने निकिता। अगर आपके पास भी कोई ऐसा सपना है, चाहे फिर वो वैज्ञानिक बनने का हो, शिक्षक बनने का हो या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का हो, तो याद रखिए हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से सवाल और सीखने की इच्छा से होती है।
0: तो मुझे लगता है ना लक्षिता कि आज हमें भी ये संकल्प ले लेना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे और जो ज्ञान की शक्ति है ना उसे भी पहचानेंगे।
1: तो दोस्तों इसी प्रेरणादायक टॉपिक के साथ हम आपको फिर लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं एक और मस्ती भरा गाना, क्योंकि आज हम दोनों का मूड है काफी अच्छा। तो हम प्ले करने वाले हैं मस्ती भरे गाने सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे दोस्तों के लिए।

0: दोस्तों आज है 30 जून और आज हम याद कर रहे हैं भारत के एक ऐसे महान सपूत को जिन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन यानी भारत के वृद्ध पितामह के नाम से भी जाना जाता है, जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने निकिता। दादा भाई नौरोजी केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि एक महान विचारक थे, शिक्षक थे, समाज सुधारक और सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने उस समय देश की आवाज उठाई जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था।
0: इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई में हुआ था। वो पहले ऐसे भारतीय बने जिन्हें ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ और उस दौर में ये किसी भारतीय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी।
1: और दोस्तों सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने अंग्रेजों के सामने बड़े साहस के साथ ये बताया कि भारत की गरीबी का सबसे बड़ा कारण अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां हैं। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध ड्रेन थ्योरी के माध्यम से समझाया कि किस तरह भारत की संपत्ति धीरे धीरे विदेशों में जा रही है।
0: सोचिए दोस्तों, उस समय जब अपनी बात कहना भी आसान नहीं था, तब दादा भाई नौरोजी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ भारत के लोगों के हक की आवाज उठाई। और उनका जीवन अगर हम देखें तो वो हमें सिखाता है कि बदलाव लाने के लिए केवल शक्ति की जरूरत नहीं है बल्कि ज्ञान, धैर्य और सच्ची निष्ठा भी जरूरी होती है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने देश के युवाओं को शिक्षा, जागरूकता और एकता का संदेश दिया। उनका मानना था कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो लोगों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना ही होगा।
0: और दोस्तों आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं और मुझे लगता है संकल्प ले लेते हैं कि हम भी अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लक्षिता, जब महान लोग इतिहास की किताबों में रहते हैं ना, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ हमें वो हमेशा सिखाते रहते हैं, चाहे कितनी ही सदियां बीत जाए, पीढ़ियां बीत जाए, लेकिन हम उनसे सीखते रहते ही हैं।
1: और फिर हमें ऐसा लगता है कि कैसे कैसे लोग थे ना, जो कितना कुछ कर गए हैं और कितनी जरूरत है हमें उनसे कुछ सीखने की। क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल के जो लोग हैं वो अपनी लाइफ एक अलग ही लेवल पे जी रहे हैं, जिसका कोई ना तो मतलब अप एंड डाउन, मतलब कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है ना लोगों का। कैसे कैसे लोग हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो यू नो पहले वाली जो जनरेशन थी, वो हमेशा हमें ये प्रेरित करती हैं कि हमें कैसे यू नो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, है ना, अपने अंदर अपनी जिज्ञासा को किस तरह सामने रखना चाहिए, निडर कैसे होना चाहिए,
0: कैसे खड़े रहना है,
1: देश प्रेम के बारे में। हाँ, बिल्कुल,
0: वो बिल्कुल सबसे बड़ी बात है सीखने की।
1: और आजकल के बच्चों को ये सीखने की बहुत जरूरत है, युवाओं को, और मैं तो कह रही हूँ सबको बहुत जरूरत है ये सारी चीजें सीखने की। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम सीखेंगे तभी हम चीजों को समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से हमारे जो साथ और लोग हैं उन्हें समझा पाएंगे। तो दादा भाई नौरोजी का जीवन हमें यही सिखाता है दोस्तों कि सच्ची देशभक्ति केवल बड़े बड़े शब्दों में नहीं बल्कि अपने देश और समाज के लिए ईमानदारी से किए गए कार्यों में दिखाई देती है।
0: तो दोस्तों उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन और उनके विचार, जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं कि हमें देश के लिए बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो हमें भी अपने व्यवहार में देश सेवा दिखानी है, ईमानदारी रखनी है और जागरूक रहना
1: की राह पर आगे बढ़ते रहना है। और यही एक लेसन जो है आज हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त भी इसे ग्रास्प करें और समझे कि हम क्या बताना

0: चलिए दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जहां विज्ञान धारा में आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष के ऐसे रहस्यों की जिसका नाम सुनते ही लगता है कि शायद ये कोई छोटा सा ग्रह होगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स की।
1: दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर क्षुद्र ग्रह होते क्या हैं। देखिए, आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष में मौजूद चट्टानों, धातुओं और खनिजों से बने छोटे बड़े पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये ग्रहों की तरह बड़े और पूरी तरह गोल नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें क्षुद्र यानी छोटे ग्रह कहा जाता है।
0: लेकिन दोस्तों, इनकी कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले, जो कि मुझे लगता है काफी लंबा समय है, जब हमारा सौर मंडल बन रहा था, तब गैस, धूल और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े आपस में जुड़कर ग्रह बनाने लगे। लेकिन कुछ टुकड़े किसी ग्रह का हिस्सा नहीं बन पाए और अंतरिक्ष में ही रह गए, और वही टुकड़े आज क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं।
1: यानी अगर हम कहें कि क्षुद्र ग्रह हमारे सौर मंडल यानी कि हमारे सोलर सिस्टम के बचपन की बची हुई निशानियां हैं, तो गलत नहीं होगा।
0: और यही कारण है कि वैज्ञानिक इनका अध्ययन बड़े ध्यान से करते हैं, क्योंकि इनके अंदर अरबों साल पुरानी जानकारी छिपी हुई है जो हमें बताती है कि पृथ्वी और दूसरे ग्रह आखिरकार कैसे बने हैं।
1: तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में लाखों क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं? इनमें से अधिकांश मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित हैं और एक क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है।
0: और इस बेल्ट में छोटे कंकड़ जैसे क्षुद्र ग्रह भी हैं, और कुछ तो इतने बड़े हैं कि उनका अपना नाम है और अपनी पहचान है। इनमें सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस। वो इतना बड़ा है कि उसे अब एक बौना ग्रह भी माना जाता है।
1: और कुछ क्षुद्र ग्रह ऐसे भी होते हैं जिनकी कक्षा उन्हें पृथ्वी से काफी करीब ले आती है, और इन्हें पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह यानी नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स कहा जाता है।
0: अब अगर कोई ये सोचे कि क्या ये हमारी धरती के लिए खतरा बन सकते हैं, तो जवाब होगा कभी कभी हाँ और कभी कभी नहीं भी, क्योंकि वैज्ञानिक जो है लगातार इन पर नजर रखते हैं और आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से अंतरिक्ष एजेंसियां जो है ऐसे ही क्षुद्र ग्रहों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखती है।
1: और इतिहास में भी ऐसी घटना मानी जाती है जिसने पूरी पृथ्वी को बदल कर रख दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था, जिसके बाद डायनासोर्स का अस्तित्व समाप्त हो गया था।
0: दोस्तों, सोचिए, अंतरिक्ष में घूमने वाला एक पिंड हमारी धरती के इतिहास को बदल सकता है। इसीलिए क्षुद्र ग्रह सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए बेहद दिलचस्प विषय है।
1: वैसे दोस्तों, ये डरने की बात नहीं है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह हमसे बहुत दूर हैं, बल्कि आज तो कई अंतरिक्ष मिशन इन पर जाकर इनके नमूने इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों को और बेहतर और विस्तार से हम जान पाएं।
0: और लक्षिता, मुझे तो ये सोचकर ही बहुत अच्छा फील होता है, बहुत आश्चर्य होता है कि अंतरिक्ष में मौजूद ये छोटे छोटे पिंड जो है अरबों साल से अपनी यात्रा पर है और चुपचाप हमारे सौर मंडल की कहानी अपने भीतर रखे हुए हैं, संजोए हुए हैं।
1: कभी कभी जो चीजें छोटी दिखाई देती हैं, उनकी कहानी बहुत बड़ी होती है ना? क्षुद्र ग्रह हमें यही सिखाते हैं दोस्तों, कि ब्रह्मांड का हर छोटा हिस्सा भी अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए हैं।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात के आसमान की ओर देखें, छत पे जाएं, आसमान को निहारें, तो याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में ये प्राचीन यात्री क्षुद्र ग्रह अब भी अपनी अनंत यात्रा पर निकले

0: हुए हैं और वहां से आपको निहार रहे हैं।
1: आवाजें जो बरसों से हमारे जीवन के हर रंग में रच बस गई हैं।

0: होगा।
1: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: वैसे दोस्तों इतना कार्यक्रम का सफर जो है हमने तय कर लिया, लेकिन मुझे यहाँ पर लक्षिता एक ऐसी बात याद आई जो मुझे लगता है हमें दोस्तों से कर ही लेनी चाहिए।
1: तो फिर मुझसे भी करो, मुझे भी
0: हाँ, मुझे तुमसे भी करनी है, दोस्तों से भी करनी है। और करनी ये है कि हम अक्सर ये सोच लेते हैं ना कि लाइफ में कुछ बड़ा होगा, कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ तो अच्छा अचीव करेंगे तो हम खुश होंगे। बहुत सही कैच किया, लेकिन मेरा फंडा थोड़ा सा अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी चीजों के लिए खुशियों का इंतजार करना और छोटी छोटी खुशियों में खुशियां ढूंढना बहुत अलग चीजें होती हैं, और मुझे छोटी छोटी खुशियों से बड़ी खुशी मिलती है।
1: वैसे ये थॉट तुम्हारा बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है मैं कह सकती हूँ, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों से तभी खुश हो सकते हैं जब आप पॉजिटिव हो और आपके मन में पॉजिटिविटी हो।
0: और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए किसी अपने का फोन आ जाए, मैसेज आ जाए, उसमें भी काफी अच्छी खुशी है।
1: पर ये तो होता है ना, हम
0: खुश हो जाते हैं
1: जब भी हम किसी अपने का वेट कर रहे हो और जिससे हमें बेहद लगाव है, प्यार है, तो कॉल आ जाए तो हम वाकई में काफी खुश हो जाते हैं।
0: और फूलों मतलब कह सकते ना कि

0: पौधों पर फूल खिल जाए तो उसमें भी खुशियां है, कितनी खुशी मिलती है।
1: कोई स्टोरी भी लगा देना, कोई अच्छा गाना लगा के मैं उसमें भी खुश हो जाती हूँ।
0: बिल्कुल, किसी अच्छे दोस्त से मुलाकात हो जाए उसमें भी अलग खुशी है।
1: यार आज तो वो दोस्त मिला, वो स्कूल वाले सेम क्लास में थे।
0: कुछ अच्छी किताब हम पढ़े उसमें भी अलग खुशी है।
1: कुछ नई बात हम सीखे तो उसमें भी अलग खुशी।
0: और एक कप चाय की प्याली के साथ बालकनी या छत में से आज के मौसम को निहारना उसमें भी अलग खुशी है।
1: तो खुशियां तो आपको कहीं भी
0: मिल जाएगी दोस्तों।
1: ढूंढने वाला होना चाहिए,
0: बिल्कुल आपका नजरिया ऐसा होना चाहिए कि आप उन खुशियों को झट से ढूंढे और फट से अपना मूड चेंज करें।
1: बस नजरिए का खेल है।
0: बिल्कुल, जैसे कि मुझे अभी खुशी मिल रही है लक्षिता का खूबसूरत सा और हंसता हुआ सा चेहरा देखकर,
1: और मुझे खुशी मिल रही है तुमसे ढेर सारी बातें करके, क्योंकि सच्ची में मुझे इतना अच्छा लग रहा है निकिता आज तुमसे बातें करके, क्योंकि इतने दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है और कहीं ना कहीं बातें रह जाती है।
0: इन्हीं बातों में ये मत भूलो कि हमारे इतने सारे दोस्त भी हैं, श्रोता भी हैं, उनके लिए भी हमें खुश होना है, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप आपस में खुश होते रहेंगे ना तो कहीं वो नाराज ना हो जाए।
1: एग्जैक्टली, और अभी हमारी जो स्टूडियो की घड़ी है वो भी इशारा कर रही है कि हमें ज्यादा खुश नहीं होते रहना, ध्यान भी देना है
0: जो है विदा भी लेनी है।
1: वही तो समय हो चला है हमारे दोस्तों से विदा लेने का। मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें
0: और जीवन में छोटी छोटी खुशियां ढूंढते रहें। इसी के साथ आपकी रेडियो दोस्त को आज के लिए इस कार्यक्रम से इजाजत दीजिए।
1: मैं आपकी रेडियो दोस्त लक्षिता
0: और मैं आपकी रेडियो दोस्त निकिता।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब 4 दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब

मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारत के समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। एफएम 102, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

मुस्तफा जाहिद की आवाज में सुनिए आवारापन फिल्म का ये गीत, शब्द सईद कादरी के, संगीत प्रीतम का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। गानों का सिलसिला रहेगा जारी, लेकिन उससे पहले हम आपको दे देते हैं चौपाल का

कार्यक्रम संबंधी एक जरूरी सूचना। श्रोताओं, बुधवार दिनांक 1 जुलाई 2026 को साय 7 बजे से 7:30 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा, बीज उपचार में जैव उर्वरकों का महत्व। हमारे विशेषज्ञ होंगे श्री लालालाम चौधरी, क्षेत्र प्रबंधक इफको कोटा। आप इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में प्रसारण के दौरान विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 07442941142। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 07442941142। प्रसारण समय बुधवार दिनांक 1 जुलाई शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक। सूचना समाप्त हुई।

अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाजों में फिल्म टू स्टेट्स का गीत अभी आपने सुना, शब्द अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत शंकर एहसान लोय का। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक और सूचना हम आपको सुनवा देते हैं। आरोग्यवाणी कार्यक्रम में बुधवार दिनांक 1 जुलाई को प्रातः 8:15 बजे फोन इन कार्यक्रम का विषय है पहला सुख निरोगी काया। जो श्रोता इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं वे टेलीफोन करके सीधे डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल से बात कर सकते हैं। समय एक बार फिर से सुन लीजिए, बुधवार दिनांक 1 जुलाई को प्रातः 8:15 बजे से 9 बजे तक। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 0744-294-1142। सूचना समाप्त हुई। और आइए जावेद अली की आवाज में सुनते हैं जोधा अकबर फिल्म का गीत, शब्द जावेद अख्तर के, संगीत ए आर रहमान का।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। उसके बाद 6:43 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और 6:48 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने को कहा। सड़क हादसों के घायलों की मदद करने और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने की अपील की। वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से देशभर में लागू होगा, ये मनरेगा का स्थान लेगा। जनरल धीरज सेठ ने देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा की गहनता से जांच की जाएगी और प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के प्रवेश के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। देशभर में दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की लागत से इनके सुधार का काम शुरू किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उचित साइनेज, लेन मार्किंग और अंडरपास के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्री गडकरी ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से सड़क हादसे के घायलों की मदद करने और उन्हें सही समय पर अस्पताल पहुंचाने को कहा।
1: हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं तो हम तुरंत उनको अगर अस्पताल लेके जाएंगे तो हम 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं, और इसलिए हमने एक योजना शुरू की है कि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट होने के बाद, पहले लोगों के मन में गलत फहमी है कि पुलिस पीछे लग जाएंगे, तकलीफ होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया, डिपार्टमेंट ने भी निर्णय किया है कि कोई तकलीफ नहीं होगी, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। आप तुरंत उसको उठाइए, किसी भी अस्पताल में पहुंचाइए, उसको मदद करने वाले व्यक्ति को हम राहगीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार मिट्टी और उसके लिए जरूरी उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप विकसित कर रही है। केंद्रीय कृषि

0: मुख्यमंत्री आज हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने किसानों से मिट्टी में उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करने का आग्रह किया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार अल नीनो प्रभाव से कम वर्षा की आशंका के मद्देनजर बचाव के तरीकों पर विचार कर रही है।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी देशभर में कल से लागू होने जा रहा है। ये देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समावेशी और मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। वीबीजी रामजी पर पेश है न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी मनरेगा का स्थान लेगा। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिन से बढ़ाकर अब एक साल में 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार मिलेगा। पहले श्रमिकों को 15 दिन में भुगतान किया जाता था, अब इसमें साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान किया गया है। ये राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। वहीं निर्धारित समय में रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति का वैधानिक प्रावधान रहेगा। कृषि मौसम में बुआई और कटाई के लिए मजदूरों की कमी नहीं हो, इसके लिए 60 दिन की राहत दी गई है। ये योजना ग्रामीण आय में बढ़ोतरी और आजीविका सुरक्षा को सशक्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
0: वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 की प्रावधानों के अनुसार कल से काम का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक विश्राम काल रहेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज सेवानिवृत्त हो गए। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं और व्यावसायिकता को कायम रखते हुए ऊंचाइयां छुएगी। सेना की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सैन्य बलों को उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से शक्ति मिलती है।
3: भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: सेना की दक्षिण पश्चिम कमान सप्तशक्ति के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह भी आज सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने जयपुर सैन्य स्टेशन के प्रेरणा स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि लगभग 4 दशकों की सैन्य सेवा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने जम्मू कश्मीर और पश्चिमी सीमा पर कई अहम और चुनौतीपूर्ण कमान और स्टाफ जिम्मेदारियां निभाई। इसके अलावा उन्होंने इन्फेंट्री डिवीजन और डेजर्ट स्ट्राइक कोर की जिम्मेदारी भी कामयाबी के साथ पूरी की। नई दिल्ली में कल हुए ऐतिहासिक यमुना जल समझौते के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर आगमन पर आज उनका शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस समझौते से प्रदेश में जल सुरक्षा और समग्र विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शेखावाटी क्षेत्र के लाखों परिवारों के जीवन में यह समझौता खुशहाली का नया अध्याय लिखेगा, साथ ही विकसित राजस्थान की मजबूत नींव बनेगा। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार जनता से किए हर वादे को पूरा करने की कोशिश कर रही है।
4: जनता के जो काम है वो हम कार्यकर्ता और हमारी सरकार की सबकी प्राथमिकता है। हमें उनको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए, तो हमें यह विचार भी करना चाहिए क्योंकि आपने देखा है पड़ोसी राज्यों में विकास की गति हमसे ज्यादा है। विकास की रेस में आगे चलते हुए हमारे राजस्थान को हमें कैसे आगे बढ़ाना है, और मेरे भाइयों उस विश्वास को हमें कायम रखते हुए हमें जनता के बीच में जाना है। सामाजिक सरोकार के कार्य हों, सार्वजनिक कार्य हो, उनको बताना है और बताना ही नहीं उनको करवाना है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा और मरम्मत कार्यों को लेकर आज जयपुर में समीक्षा बैठक हुई। प्रारंभिक शिक्षा

0: विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने बैठक में विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी स्थिति में जर्जर और असुरक्षित भवनों का उपयोग नहीं किया जाए। श्री यादव ने सभी स्कूल भवनों की गहनता से जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में 2000 से ज्यादा विद्यालयों से संबंधित विकास और निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। वहीं चालू वित्त वर्ष में करीब 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण और विकास के काम करवाए जाएंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में होगा। 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। ये सम्मेलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है। नेस्कॉम और MNIT जयपुर इसके नॉलेज पार्टनर है। सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI एनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर NCEG प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न नवाचारों की लॉन्चिंग होगी। सम्मेलन के दूसरे दिन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए नवाचारों और डिजिटल सेवाओं को साझा करने में ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा।
1: राजस्थान सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास है कि ई गवर्नेंस राज्य में प्रमोट हो। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने प्रेजेंट किए जाएंगे, इनको रेप्लिकेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आम आदमी को किस प्रकार से सरकार और आम आदमी के बीच में जो नजदीक टू टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, इस प्रयास करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पॉलिसी है, अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, इसका मतलब है कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसको रियलाइज करने में ये कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: सम्मेलन के बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: प्रदेश में अगले 3-4 दिनों में मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 से 4 जुलाई के बीच राजस्थान में मॉनसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इस दौरान राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं। कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बरसात भी हो सकती है। हालांकि फिलहाल कई स्थानों पर भीषण गर्मी और उमस का असर है। बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हुआ। बीकानेर, चूरू, बाड़मेर और फलौदी में भी दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। उधर बाड़मेर में आज धूल भरी आंधी चली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने को कहा। सड़क हादसों के घायलों की मदद करने और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने की अपील की। VVG रामजी अधिनियम 2025 कल से देशभर में लागू होगा। ये मनरेगा का स्थान लेगा। जनरल धीरज सेठ ने देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा की गहनता से जांच की जाएगी। और प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के प्रवेश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख गौरव शर्मा ने तैयार किया है। जिले में जून माह के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, कृषि और जनकल्याण से जुड़ी अनेक गतिविधियां आयोजित की गई। प्रशासनिक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा और क्रियान्वयन जारी रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर

0: में सामूहिक योगाभ्यास के आयोजन हुए। मुख्य समारोह मचकुंड रोड स्थित परशुराम धर्मशाला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया। योगाभ्यास का संचालन पतंजलि योग पीठ से जुड़े योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर योग के महत्व और नियमित योगाभ्यास के लाभों की जानकारी दी गई। जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और न्यायालय परिसरों में भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष योग दिवस कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। धौलपुर जिले से गुजरने वाले आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे को लेकर चल रहा विवाद सुलझ गया है। जिला प्रशासन, NHAI और निर्माण कंपनी के बीच सहमति बनने के बाद किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। इससे परियोजना का रास्ता साफ हो गया है और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की संभावना है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले भर में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले में 2 लाख से अधिक बच्चों को अभियान के तहत शामिल किया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विशेष बूथ लगाए गए। इसके बाद स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व क्षेत्र में इन दिनों वन्य जीवों की गतिविधियां बढ़ी हैं। विभिन्न वन क्षेत्रों से बाघों का मूवमेंट लगातार दर्ज किया जा रहा है। हाल ही में एक मादा बाघ ने वन क्षेत्र में गश्त कर रहे एक वनकर्मी पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। वन विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में हॉकी मैत्री मैच आयोजित किया गया। मैच का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना और खेलों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना था। खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रतियोगिता में भाग लिया। रीनीट परीक्षा जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 2000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के दौरान सुरक्षा और निगरानी के विशेष प्रबंध किए गए। प्रशासन और परीक्षा एजेंसी के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से व्यवस्थाओं की निगरानी की। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस सप्ताह के अवसर पर जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान रैलियां, शपथ कार्यक्रम, संगोष्ठियां और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गयी। जिला प्रशासन ने आमजन से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की। जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत पहले चरण के दौरान मकान सूचीकरण और आवास गणना काम में धौलपुर जिले ने राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। जिला प्रशासन ने इसे टीम वर्क और बेहतर समन्वय का परिणाम बताया। जिले की युवा क्रिकेट खिलाड़ी रजत बघेल का भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। विकेट कीपर के रूप में उनका चयन होने पर जिले में खुशी का माहौल है। भारतीय टीम इन दिनों श्रीलंका दौरे पर है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में पौधरोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान के तहत सरकारी और निजी संस्थानों में पौधे लगाए गए। विभिन्न सामाजिक संगठनों और विद्यार्थियों ने इसमें भागीदारी की। जिले में मुहर्रम का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों से ताजिए निकाले गए और निर्धारित मार्गों से होते हुए करबला तक पहुंचाए गए। तीजा जुलूस के दौरान युवाओं ने पारंपरिक कर्तव्यों का प्रदर्शन किया। वहीं जिला मुख्यालय पर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। धौलपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनताओं सड़का माथे हिफाजत ने बधावन सारू कहो। सड़क हादसा में जख्मी लोगों की मदद करण अरवाना टेम सर अस्पताल पुगावन री अपील कीनी। VBG रामजी कानून 2025 कालों देश भर में लागू भेजा वेला। मनरेगा री ठोड़ लेवेला। जनरल धीरज सेठ देश रा 31वां सेना अध्यक्ष रा ओहदारो कामकाज संभाल्यो। राज्य री सगली सरकारी स्कूलों रा भवनारी हिफाजत रा लिहाज।

0: गहरी जांच करी जावेला और प्रदेश में आवता 2-3 दिन में चौमासारी बिरखा स्वरूफे बनरा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरबे समाचार विगतवार। देश में हादसा भेवन और जमीन धंस जावन रे शंका वाली सड़का ने पिछाण करी ची है। केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपया खर्चों आरा सुधार रो काम शुरू कीनो है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नई दिल्ली में सड़का माथे हिफाजत रे बारे में राखी जाए कार्यक्रम में आ जानकारी दीनी। गडकरी कहो के उचित निशान लेन मार्किंग और अंडरपास बनावन सागे अंतर्राष्ट्रीय मानकान मुजब सड़क इंजीनियरिंग काम लेवन री कोशिश करी जा रही है। श्री गडकरी सड़का माथे हिफाजत ने बढ़ावो देवन माय जनतारी भागीदारी बढ़ावन और मोटर गाड़ियां चलावन वालाओं यातायात नियमों री पालना करण री अरज कीनी। वह लोगों सड़क हादसा माय जख्मी वेवन वाला री मदद करण और वाने सही भगत बना अस्पताल पुगावन री अरज कीनी।
1: हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं तो हम तुरंत उनको अगर अस्पताल लेके जाएंगे तो हम 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। और इसलिए हमने एक योजना शुरू की है कि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट होने के बाद पहले लोगों के मन में गलत फहमी है कि पुलिस पीछे लग जाएंगे, तकलीफ होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया, डिपार्टमेंट ने भी निर्णय किया है कि कोई तकलीफ नहीं होगी, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। आप तुरंत उसको उठाइए, किसी भी अस्पताल में पहुंचाइए, उसको मदद करने वाले व्यक्ति को हम राहगीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे।
0: सरकार मिट्टी और वहां सारू जरूरी खाद री मात्रा री जानकारी देवन बाबत मोबाइल ऐप विकसित कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा रा हिसार माय खेत बचाओ अभियान रा समापन समारोह माय आ जानकारी दीनी। वह किसानों मिट्टी री उत्पादकता बनाई रखन सारू खाद और कीड़ा मारन री दवाइयां जरूरत रा आधार काम लेवन री अरज कीनी। कृषि मंत्री कहो के सरकार अल नीनो रा असरों कम बिरखा भेवन री शंका न ध्यान राखता थका जरूरी इंतजाम कर रही है।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: देश में काल 1 जुलाई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBG राम जी लागू है जावेला। देश का गांवई हलका माय माली व्यवस्था ने समावेशी और मजबूत बनावन सारू मील रो पत्थर साबित फैला। VBG राम जी रबारा माय पेश है न्यूज डेस्क सालेहा गाजी री रपट।
3: VBG रामजी मनरेगा री ठोड़ लेवेला इरा तहत गांवाई हलका माए लोगा ने 100 री बजाय 125 दिन रा काम री गारंटी मिलेला। VBG रामजी रा तहत मजूरा ने हर हफ्ता मजीरू रो चुकारो सीधो खाता माए करियो जावेला। तय मियाद माए काम मुहैया नी करावन री सूरत माए बेरोजगारी भत्ता मजूरी रा चुकारा माए मोड़ो वेवन परा क्षतिपूर्ति रो वैधानिक प्रावधान करियो जावे है। खेती बाड़ी री रुत माए बुवाई कटाई सारू मजूरा री कमी रोकण सारू 60 दिन री राहत दिरी जी है। VBG रामजी गावाई हलका माए आमदनी बढ़ावन और काम धंधा री हिफाजत मजबूत बनावन री दिशा माए खास जतन है।
0: VBG रामजी 2025 रा प्रावधान रा मुजब कालू काम रो बगत समारे 9:05 बजे ताई रहवेला। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज सेना प्रमुख रा ओहदा रिटायर वे गया। इस मौके वे कहो के फौज ने फौजियां कमांडरां पहले वाला फौजियां वारा परिवारां और देश री जनता रा अटूट भरोसा ताकत मिले है। जनरल द्विवेदी कहो के भारतीय सेना लारला 2 साल माए हर मोर्चा माथे तुरंत काम करण रा बूता संतुलन और सावचेती लगातार बनाई रखी।
4: भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों कमांडरों पूर्व सैनिकों परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति

0: प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूं।
1: जनरल द्विवेदी नुआ सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने जिम्मेदारी सौंपता थका। जनरल सेठ री अगुवाई में भारतीय सेना री माथो ऊंचो करण वाली परंपरावां बनाई राखता थका। व्यावसायिकता और पक्का इरादाओं नुवी ऊंचाइयां हासिल करण रो भरोसो जतायो। सेना री दक्षिण पश्चिम कमान रा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ही आज रिटायर भेक्या। ई मौके वह जयपुर सैन्य स्टेशन रा प्रेरणा स्थल माथे शहीदा ने सिरदा भाव सागर याद कीना। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन बतायो कि करीब 40 साल री सेवा रे दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह जम्मू कश्मीर और आतुणी सरहद माथे कई खास कमान और स्टाफ री जिम्मेदारियां निभाई। वह इन्फेंट्री डिवीजन और डेजर्ट स्ट्राइक कोर री जिम्मेदारी कामयाबी सागे पूरी कीनी। नई दिल्ली में काल भया ऐतिहासिक यमुना जल समझौता पाछे जयपुर आवण पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रो

0: कमान और स्टाफ री जिम्मेदारियां निभाई। वह इन्फेंट्री डिवीजन और डेजर्ट स्ट्राइक कोर री जिम्मेदारी कामयाबी सागे पूरी कीनी। नई दिल्ली में काल भया ऐतिहासिक यमुना जल समझौता पाछे जयपुर आवण पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रो शहर में न्यारी न्यारी ठोड़ा स्वागत करी चियो। मुख्यमंत्री राज्य में जल सुरक्षा और पूरा विकास माथे पड़वा वाला सकारात्मक असर रे बारा में विचार बताया। वो कहो के ओ करार विकसित राजस्थान री मजबूत नींव बनेला। श्री शर्मा कहो के सरकार जनताओं करी चे हर वायदा न पूरो करण री कोशिश कर रही है।
1: जनता के जो काम है वो हम कार्यकर्ता और हमारी सरकार की सबकी प्राथमिकता है, हमें उनको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमें यह विचार भी करना चाहिए क्योंकि आपने देखा है पड़ोसी राज्यों में विकास की गति हमसे ज्यादा है, विकास की रेस में आगे चलते हुए हमारे राजस्थान को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। और मेरे भाइयों, उस विश्वास को हमें कायम रखते हुए हमें जनता के बीच में जाना है। सामाजिक सरोकार के कार्य हों, सार्वजनिक कार्य हों, उनको बताना है और बताना ही नहीं उनको करवाना है।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मना एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक मत है AIR News Rajasthan पर आई सुन सको हो। इस आगे आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in मत ही समाचार सुन सको हो और वहां जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। राज्य सरकारी स्कूलां सारू किणी हालात में हर जर्जर और असुरक्षित भवन काम नहीं लेवन रा हुकम दिया चिया है। स्कूल भवना री हिफाजत और मरम्मत रा कामा रो जायजो लेवन सारू आज जयपुर में राखी जी मीटिंग में प्रारंभिक शिक्षा विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव आज जानकारी दीनी। यादव सगली स्कूलां रा भवन री गहराई जांच करावन रा हुकम दीना। वे बतायो कि लारला माली साल में 2032 स्कूलों जुड़िया विकास और बनाई चुनाई रा काम करी जिया, जबकि चालू माली साल में करीब 550 करोड़ रुपया रा खर्च वाला काम कराया जावेला। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन काल जयपुर में शुरू भेला। विकसित भारत 2047 AI एनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस मुद्दा माथा वेवन वाला ई सम्मेलन रो उद्घाटन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेला। ई मौके NCEG प्रदर्शनी लगाई जावेला और राज्य सरकार रा न्यारा न्यारा नुआ कामारी शुरुआत फैला। सम्मेलन रा दूजा दिन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया जावेला। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रोई ई कार्यक्रम में शिरकत करण रो कार्यक्रम है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में खबर नवीसा सागे बातचीत रे दौरान आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि सरकारी सेवा बेहतर तरीका पुगावण नुआ कामा और डिजिटल सेवा री पहुंच जनता ताई बधावण माए ओ सम्मेलन खास साबित फैला।
2: राजस्थान सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास है कि ई गवर्नेंस राज्य में प्रमोट हो, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने प्रेजेंट किए जाएंगे इनको रेप्लिकेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आम आदमी को किस प्रकार से सरकार और आम आदमी के बीच में जो नजदीक टू टेक्नोलॉजी ला सकते हैं इस प्रयास करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पॉलिसी है अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, इसका मतलब है कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसको रियलाइज करने में ये कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: सम्मेलन रे बारा में और ब्यूरो माना खबर नवीसों।
3: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: प्रदेश में आवता तीन चार दिन में चौमासा री बिरखा सरूभ एवं रात चोखा हालात बनी उड़ा है।

0: भारत मौसम विज्ञान केंद्र 2-4 जुलाई बिच राज्य में चौमासा री बिरखा सरूफे वन रा आसार जताया है। इन दौरान प्रदेश रा लंकाऊ और लंकाऊ उगनी हिलका माए आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए बढ़ोतरी री संभावना है। कोटा और उदयपुर संभाग माए कठे कठे भारी बरसात रा आसार है। फिलहाल कई थोड़ा जबरदस्त गर्मी और उमस रो असर बनी उड़ो है। लाडला 24 घंटा माए श्री गंगानगर माए पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। बाड़मेर माए आज आंधी चाली। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनताओं सड़का माथे हिफाजत ने बधा बन सारू कहो। सड़क हादसा माए जख्मी लोगों ने मदद करण अरवाना टेम सर अस्पताल पुगावन री अपील कीनी। वीबीजी रामजी कानून 2025 काल देश भर में लागू भेजा वेला। जनरल धीरज सेठ देश रा 31वां सेना अध्यक्ष रा होदारो कामकाज संभालियो। कजरी सगली सरकारी स्कूलां रा भवनारी हिफाजत रा लिहाज गहरी जांच करी जावेला। और प्रदेश में आवता 2-3 दिन में चौमासारी बिरखा सरूफे वन रा आसार। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल समारे 9 बजे हिंदी माय प्रसारित करियो चावेला। नमस्कार।
1: FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य द किया ओवल क्रिकेट स्टेडियम लंदन में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच की कमेंट्री का प्रसारण।

जय माला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णामूर्ति और साथियों की आवाजों में है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है कर्मा।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: ओ चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

इल्जाम। इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं अनजान, संगीत है बप्पी लहरी का।

जवानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन।

साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में, नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीत है राहुल देवबर्मन का, फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: हर जाई इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है निदा फाजली, धुन है राहुल देव बर्मन की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान।

1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय माला।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत आज पॉप एक्सप्रेस में सुनिए कुछ पॉप गीत। आइए सुनते हैं के और महालक्ष्मी की आवाजों में विशाल ददलानी का लिखा गीत। संगीत है विशाल शेखर का। फिल्म का नाम है पॉपकॉर्न खाओ।

0: पर तो हेवन की चाबी है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस में कुछ पॉप गीत।

0: आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं नाटिका उनके महबूब। लेखिका हैं बिमला रैना, निर्देशक लोचन बख्शी।
1: मंजू, ओ मंजू, अरे मंजू कहाँ हो भाई, जल्दी आओ।
2: क्या है शील, बस जब आती है तो आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है। आखिर ऐसी क्या बात हुई जो आज तेरी आंखों में बिजलियाँ कौंध रही है?
1: अरे बिजली बिजली कहाँ कौंधी, मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि बहुत मजा आया।
2: तू इतना ही जान कर रुक जा, नहीं तो
1: नहीं तो मजे में दर्द भर जाएगा। अब तेरी शादी हो जाएगी। शादी वादी बच्चे बच्चे मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि लाइफ इज वंडरफुल फॉर मी। बात सुनो, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है लेकिन मैं तो अभी इंडिपेंडेंट हूँ। तुम दोनों को बारी बारी एक दूसरे का हुक्म मानना पड़ता है, फिर मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता। हाँ मेरा हुक्म मेरा राजा जरूर मानता है।
2: राजा? कौन राजा?
1: है एक राजा। हाय काश तुम भी चलती मेरे साथ टेनिस मैच में, इतना मजा आया कि।
2: मैं तो चाहती हूँ तू अब जल्दी से जल्दी अपना मैच बना ले। कितने रिश्ते आए पर तू अभी अकेली ही घूमती है। मैं पूछती हूँ आखिर तुझे कैसा लड़का चाहिए?
1: ओह लड़का, कैसा लड़का? जैसा मेरा राजा है।
2: अरे रे रे, ये किस राजा महाराजा के सपने देख रही है तू?
1: अपने राजा के। ओ मंजू हाउ ही लव्स मी।
2: हु? कौन? हु लव्स यू? कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करता है, किसका बोटा है, किसका पोता है?
1: ओफो, तुम्हारे सवालों की तो बढ़ बढ़ती ही जा रही है, मेरे दिमाग में फ्लड आ गया। तो पहले किस बात का जवाब दूं? मुझे बताओ नहीं तो डूब जाऊंगी।
2: ओहो उसके खानदान का भी कुछ पता है?
1: अरे मंजू जी उसका खानदान पानदान पीकदान सबका पता है। मेरा राजा ऐसा वैसा नहीं है, भगवान कसम वो तो अकेला कमरे में दरवाजे पर टकटकी लगाए मेरे इंतजार में बैठा होगा।
2: टकटकी लगाए? उसे अपने साथ नहीं ले गई थी? किसका मैच देखने गई थी?
1: दीपक का। बहुत अच्छा खेला, वो यूनिवर्सिटी का चैंपियन बन गए हैं।
2: दीपक? कौन दीपक?
1: हाँ वो कौन सा दीपक या किसका दीपक है ये मैं क्या जानू, वहाँ सब बकअप दीपक, वेल डन दीपक, लवली शॉट दीपक कह रहे थे तो मैं जान गई उसका नाम दीपक है बस।
2: सुन कहीं हमारा दीपक तो नहीं है?
1: ये तो मैं नहीं जानती कि वो किसका दीपक है, पर आपका घर रोशन करते कभी नहीं देखा उसे?
2: नहीं देखा तो क्या हुआ? सुन वो कुछ गोरा गोरा सा, कुछ लंबा सा, हसोड़ सा था।
1: अब मैंने गोरा बोरा लंबा उम्बा हसोड़ सोड़ की बात तो ठीक से देखी नहीं, पर हाँ टेनिस बहुत अच्छा खेलता है।
2: तो क्या आंखें बंद करके टेनिस मैच देख रही
1: थी? नहीं आंखें तो खुली थी पर उसके खेल पर लगी थी। अभी याद करती हूँ, हाँ कुछ गोरा गोरा लंबा सा ही है, पर आपके घर तो शायद मैंने कभी नहीं देखा उसे।
2: तुझे मेरे पास आए अभी कौन ज्यादा दिन हुए हैं, और फिर तुझे अपने राजा से फुर्सत कहाँ है, आता है तीज त्योहार पर।
1: अच्छा मुझे क्या मालूम, जहाँ भी जाऊँ दिखते तो रहते हैं पर ठीक से कभी बात नहीं हुई, नहीं तो ये तो पता चल ही जाता कि वो आपके दीपक हैं। अच्छा मंजू राजा बेचारा इंतजार करता होगा, बाय बाय। कर दिया।
3: भाभी भाभी भाभी वो मतलब भाभी हाँ। वो आपकी बहन।

0: है ना, उससे मिलना चाहता हूँ।
1: क्यों, टेली चैंपियन हो गया है इसलिए?
0: अरे तुम्हें कैसे मालूम भाभी?
1: अरे वही बता रही थी, तुम्हारे खेल की बहुत तारीफ कर रही थी।
0: कौन? वो मेरे खेल की तारीफ?
1: हाँ हाँ, कह रही थी दीपक बहुत अच्छा खेला।
0: वो मेरा नाम जानती है?
1: क्या तुम उसका नाम नहीं जानते?
0: नहीं, मतलब हाँ, मतलब मैं उनका नाम जानता हूँ। दरअसल मंजू भाभी, बात यह है भाभी कि मैं उनके करीब से जब भी गुजरा बहुत चाह कि एक बार शील जी कहकर उन्हें पुकारूं, पर जाने क्या हो जाता है भाभी, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, जुबान को जैसे लकवा मार जाता है। और फिर भाभी, अगर सबके सामने वो मेरी तरफ अजनबी निगाहों से देखकर मुंह मोड़ लेती है तो मेरा कलेजा फ्लैट हो जाता है। और भाभी, फिर पता चला वो तुम्हारे पास रहने लगी है तो
1: के बच्चे, तो तुझे भाभी की याद आई। चल कुछ कहेगा भी?
0: जरूर कहूंगा।
1: तो कहना।
0: कहूं? कह तू भाभी। भाभी असल में बात यह है भाभी, भाभी मैं उनसे मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। लो कह दिया, कह दिया भाभी,
1: कह दिया। अब जब अपने राजा के गुनगाया करती है।
0: राजा के? कहाँ के राजा के?
1: अब ये तो तुम उसी से पूछो, और अगर पूछने की हिम्मत ना हो तो दुम दबा के चले जाओ। डरपोक कहेंगे, कब से मैंने सोच रखा था कि एक दिन शील और दीपक की सगाई करवाऊंगी, मगर वो निर्लज्ज शील चाचा ने कहाँ से एक राजा नाम के लड़के को पकड़ लाई है और उसे अपने ही पास ठहराया हुआ है। निर्लज्ज कहेंगे, छोड़ उसका ख्याल।
0: भाभी ये सब तुम किसके लिए कह रही हो? भाभी वो तो देवी है, देवी, कभी उसे किसी लड़के से हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा। इतनी कोमल गंभीरता, इतने आत्म गौरव से आती जाती है, तभी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बात करने।
1: अब मैं क्या करूं, जिसकी हिम्मत पड़ी वो आ गया, अब शील से मिलकर कौन सी पहलवानी दिखाओगे?
0: पर भाभी ये राजा है कौन, कब से उसके साथ रहता है?
1: मैं क्या जानू कौन राजा है निगोड़ा, ये बात तो अभी मालूम हुई जब वो तुम्हारा टेनिस मैच देख के लौटी।
0: ओ भाभी, शील जी मुझसे कभी नहीं बोली तो क्या, बरसों साथ एक ही कॉलेज में पढ़ी है, एक बार तुम मुझे मिलवा दो। प्लीज भाभी एक बार मिलवा दो मुझे, मैं अकेले में कुछ बातें कर लूं। भाभी आखिर मैं इंसान हूँ, कोई उल्लू तो नहीं हूँ, उन्हें मालूम तो हो जाए कि मैं भी उन्हें चाहता हूँ, फिर देखूं उनका राजा मेरे सामने कैसा लगता है।
1: अच्छा सुन दीपक, सुन मुझे ख्याल आया।
0: क्या? हा?
1: मैं शील को बुलाती हूँ, और सुन उसे शेर शायरी का बहुत शौक है, जब वो आए तो तू उसे बेखबर सा बनकर कोई गजल वजल सुना ले।
0: तुम फिक्र ना करो भाभी, एक से एक बढ़िया शेर मुझे याद है, देखो तो सही उनका राजा मेरे आगे कैसे ठहरता है। भाभी ये राजा का नाम सुनकर तो मुझ में बजरंग बली का बल आ गया है। पर भाभी शील जी से मिलने से पहले मुझे एक झलक उनके महबूब की दिखा तो दो, आखिर मुझे मालूम तो हो जाए मुझे मुकाबला किससे करना है।
1: उस दरवाजे के पीछे शील का कमरा है। हाँ हाँ। अरे उधर कहाँ जा रहा है? इधर आ। देख मैं नौकर को भेजकर उसे अभी बुलवाती हूँ।
0: अच्छा।
1: तू शेर शायरी का ध्यान रखना। हाँ, हाँ, हाँ। अरे नंदू, ओ नंदू जा, शील से कह मैंने बुलाया है, जरूरी काम है, जल्दी आए। अच्छा सुन इधर आ।
0: हाँ।
1: उधर पीठ कर ऐसे खड़े होकर कोई फड़कती हुई गजल गुनगुनाना शुरू कर दे।
0: अच्छा।
1: जैसे तुझे मालूम ही नहीं कि वो आ रही है।
0: छुपे जा भाभी।

0: क्या हुआ?
1: शॉक लग गया बिजली का।
0: माफ करिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप आ रही हैं।
1: वरना आप मेन स्विच शायद ऑफ कर देते।
0: जी
1: नहीं तो आ जाती।
0: जी, जी मैं आपका मतलब समझा नहीं। शील जी,
1: शील सुन तो, ये वही हमारा दीपक है कि वो कोई दूसरा दीपक था? मैं क्या जानूं, पर हाँ शायद यही थे। ये मेरी बहन शील है दीपक।
0: जी जानता हूँ। जी, जी, जी, मतलब ये जानता तो नहीं था, पर भाभी अब जान गया।
1: मैं अभी कॉफी को कहा।
0: हाँ भाभी तुम कॉफी लेने जाओ। मंजू भाभी से सुना आपको टेनिस मैच बहुत पसंद आया।
1: जी
0: हजार हजार धन्यवाद शील जी।
1: हजार हजार किस बात के?
0: अरे हजार हजार बातों के।
1: पर मैंने तो आपसे पहले कभी बात नहीं की।
0: ओ शील जी, पर मैंने तो आपसे हजारों बातें की हैं, बहुत ख्वाब देखे हैं जिनमें आप शरीक थी।
1: ओ
0: न जाने क्या क्या कहा मैंने, न जाने आपने मुझसे क्या क्या कहा, हजारों बातें।
1: हो सकता है

0: ख्वाबों का क्या?
1: एक शेर कहा है, सुना दूं?
0: जरूर।
1: हमें गिला न होता हकीकत से, ख्वाबों का अगर जरिया होता, वो सामने होते साहिल पर, जज्बातों का मैं दरिया होता। कभी मेरी तमन्ना भी सज कर मुस्कुराती, लजाती दुल्हन सी उनके नजदीक ठहर जाती, तो खुदा बंद तेरा क्या होता।
0: वाह वाह,
1: पसंद आया?
0: आहा, क्या शेर है जी, बहुत अच्छा।
1: आपको मेरा खेल पसंद आया? मेरे शेर पसंद है, बस मैं ही पसंद नहीं आया। सुना है कोई राजा साहब है जिन पर आपकी बड़ी इनायत है, क्या ये सच है शील जी?
0: जी जी हाँ, सच तो है।
1: सच है? तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ?
0: उनसे मिलकर क्या करेंगे, आप तो शायद मुझसे मिलना चाहते
1: हैं। शील जी प्लीज मजाक मत करिए, असल में बात ये है कि मैं आपसे।
0: जी जी जी, क्या?
1: देखिए शील जी, अगर आप बीच में यूं ही टोकते रहीं तो मैं आपसे जो आज कहने का फैसला करके आया हूँ कह ना पाऊंगा। मुझे यूं ही ये बात कहने की हिम्मत बटोरने में इतने दिन लग गए, साए के समान आपका पीछा करता रहा पर आपसे भूल न सका। अब आप प्लीज उधर को मुंह कर लीजिए ना, जिससे मैं एक बार आपसे कहकर अपना जी तो हल्का कर लूं।
0: जी बहुत भारी है क्या?
1: शील जी प्लीज आप उधर देखिए ना। खैर कोई बात नहीं, आप नहीं देखती तो मैं ही इधर देख लेता हूँ और कहता हूँ। शील जी मैं आई लव यू।
0: लेकिन क्यों?
1: क्यों क्यों क्या? राजा आपको क्यों लव करता है जी?
0: पता नहीं
1: तो आप उसे क्यों लव करती है जी?
0: क्योंकि वो मुझे बहुत लव करता है।
1: तो मैं भी तो आपको बहुत बहुत मतलब वेरी वेरी मच लव करता हूँ।
0: वो बहुत बहादुर है।
1: आपको मेरी बहादुरी पे शक है क्या?
0: पर वो बहुत वफादार, बहुत लॉयल है।
1: और मैं वफादार नहीं, मेरी लॉयल्टी पे शक है? आपको तो इम्तिहान ले लीजिए, अपने राजा से एक बार मिलवा तो दीजिए, जरा मैं भी तो देखूं मैं उससे किस बात में कम हूँ।
0: वो मेरा हर हुक्म मानता है।
1: आप मुझे भी कोई हुक्म देकर देखिए।
0: देखो।
1: देखिए।
0: अच्छा देखूंगी।
1: शील जी आपके महबूब आपके कमरे में है क्या, मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ?
0: शौक से जाइए, मगर जरा संभल के जाइएगा, बड़े बड़े पहलवान भी उनसे डरते हैं।
1: आप फिक्र न करिए शील जी, वो कट लगाऊंगा कि मेरी गेंद उठाए ना उठेगी। और फिर शील जी अगर मैं मर भी जाऊं तो क्या, कम से कम आपको मेरी बहादुरी का यकीन तो आ जाएगा।
0: तो जाइए, कमरा खुला है।
1: कमरा खुला है लेकिन लेकिन आप साथ नहीं चलेंगी क्या?
0: हाय राम, आपको मेरे साथ उसने देख लिया तो आपकी जान पर बन आएगी। वो बहुत जेलस है। अच्छा। वैसे मेरी जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगी।
1: कोई बात नहीं बहुत अच्छा, तो मैं ही जाता हूँ। आपके कमरे में जाने की इजाजत तो है ना?
0: मेरे कमरे में जाने की इजाजत तो राजा ही दे सकता है।
1: ये बात है, तो हो जाए आज फैसला। मेरी महबूबा के महबूब ने ललकारा है, मौत बेहतर है जिसे जिंदगी ने मारा है। अरे शील जी मैं जाता हूँ।
0: जाइए।
1: ओह माय गॉड, ये राजा, इनका महबूब। सच में शील जी, ये कुत्ता तो बहुत हैंडसम है, बहुत बहुत ही हैंडसम, मुझसे भी ज्यादा, बहुत बहादुर है, बहुत वफादार है। शील जी आपने एक काम बड़ा अच्छा किया जो इसे चेन में बांध रखा था, नहीं तो ये तो सचमुच मेरे फाड़ गया।
0: राजा राजा बी क्वाइट, चुप हो जा मेरे राजा। हाँ तो आपने देख लिया मेरे राजा को?
1: देख तो आया आपके राजा को, पर शील जी मतलब आप मतलब समझ गई ना?
0: समझ तो गई, पर आप मेरे राजा को मुझसे अलग तो नहीं करते?
1: कभी नहीं, कभी नहीं, तुम मेरी महबूबा हो, वो तुम्हारा महबूब सही। खुशी महबूबा की अपनी खुशी बना दूंगा,

0: कबूतर यानी कुत्ते के कदमों पे सर झुका दूंगा।
1: उनके महबूब, अभी आपने विमला रैना की लिखी ये नाटिका सुनी। निर्देशक थे लोचन बख्शी। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए सलमान खान श्रेया घोषाल की आवाजों में उस गीत को जिसे लिखा है कुमार ने। संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का और फिल्म का नाम है किक।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
1: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान, तरन्नुम मलिक और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है कौसर मुनीर, संगीत है सोहिल सेन का और फिल्म का नाम है एक था टाइगर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था।

0: और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आइए सुने शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत है शांतनु मोइत्रा का, फिल्म का नाम है पीके।

कार्यक्रम में आइए सुनिए अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत है A.M. तुरास का, संगीत है संजय लीला भंसाली का, फिल्म का नाम है पद्मावत। नाम एक बार फिर सुनिए, इस गीत को लिखा है A.M. तुरास ने।

साथियों चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाजों में। गीत को लिखा है समीर अंजान ने और फिल्म का नाम है धूम 3।

0: धरती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है।

0: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। अब आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारम्भ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
2: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब

0: 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची

0: 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
2: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।

0: जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
1: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिद्धो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 11

0: करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। आयुष श्रोताओं, आपको पुनः सुनवाते हैं दिल्ली केंद्र से। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के मध्य द किया ओवल क्रिकेट स्टेडियम लंदन में खेले जा रहे क्रिकेट मैच की कमेंट्री का प्रसारण
2: आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है शैलेंद्र, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है राजकुमार।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत। गीत है नीरज का, संगीत सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है गैम्बलर।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।

0: रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

अगला गीत है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, नगमा निगार है राजा मेहंदी अली खां, संगीत है मदन मोहन का, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, संगीत है रोशन का और फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल स्वर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी

0: सारी हमको भी तुमसे है प्यार, रुमाल हमें देके जाना।
1: सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहां से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं

कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदियो जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उसको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मना डी जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिनेमा डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या होगा हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूंगी कि आपके मुंह से ये गाना सुनूं। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पे बुला लिया तो एक दफे सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफे इन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफे जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत।

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता हमों से कर लो जिंदगी में,
2: समझौता हमों से कर लो जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। मतलब गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को आप करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफी उलझने कम हो जाती है।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं है लेकिन आनंद जी हैं, और है इस जोड़ी का अनूठा संग।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा। और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।

चलो एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आंखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

जरा सी बात कहनी थी कि प्यार है तुमसे, पर सदी बीत गई, जुबान से शब्द नहीं फूटे, नहीं कह पाए प्यार है तुम्ही से। पलकों की पंखड़ी में ही बंद रही प्यार की पोटली, शायद सच्चे प्यार की यही है परिभाषा। वो प्यार ही क्या जिसका बार बार बखान किया जाए, वो याद ही क्या जिससे प्यार ना हो, वो याद ही क्या जो हर वक्त दिल के करीब ना हो।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

ढलते हुए रात से गुफ्तगू, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो साथ, तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए।

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हमसफर बनाकर उसी के

गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं, आंसू और मुस्कान से बने जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।

0: रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साड़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position

0: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित

संबल चैनल है एफएम 102 एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 और 50 सेकंड हो रहे हैं। अब हमारी यह प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।